मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की नवी तिथि, तदनुसार 30 मई सन 2026, 5:56 और 41 सेकंड हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को ही समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में

0: सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एजआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेलों में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। शुरुआत कर रही हैं मातृवंदना से।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी भीष्म सिंह चौहान की देशभक्तिपूर्ण रचना। लीजिए अब सुनिए सीताराम सिंह के स्वर में संत कबीर का ये भक्ति पद।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी आपने सुना भजन। लीजिए अब सुनिए गीतांजलि के स्वर में ये भक्ति रचना।

0: अनुराधा पौडवाल के स्वर में अभी आपने सुना भजन। इस भजन के साथ ही आज की वंदना संपन्न हुई। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन। आलेख श्रीमती अलका राठी का है।
1: एक पहेली है, एक खींची हुई रेखा को छोटा कैसे करोगे। इसके हल में हम जल्दी से उस रेखा की लंबाई थोड़ी मिटाकर उसे छोटा कर देते हैं, लेकिन यदि दूर दृष्टि और सकारात्मक दृष्टिकोण से विचार करें तो उस रेखा के नीचे उससे बड़ी रेखा खींचकर उसे छोटा करना अधिक तर्कसंगत होगा। इस पहेली के हल में एक तत्व निहित है कि यदि दूसरों से आगे बढ़ना है तो स्वयं के व्यक्तित्व का विकास सद्गुणों को अपनाकर करना ही है। यह रास्ता लंबा लेकिन उचित रास्ता है। दूसरों की आलोचना कर उससे स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास छोटा रास्ता अवश्य प्रतीत होता है, लेकिन इस पर चलकर मंजिल प्राप्त नहीं की जा सकती। अपने अवगुणों पर नजर न डालकर दूसरों के अवगुणों को खोजना या न होने पर भी उन पर आरोपित करना अपने व्यक्तित्व को उज्ज्वल बताने की व्यर्थ चेष्टा है। आलोचक ये सिद्ध करना चाहते हैं कि उनके कार्यों और व्यक्तित्व में दोष दर्शन ही मुश्किल है। ऐसे स्वयं को गुणी बताने वाले व्यक्ति से दो चार मुलाकात में ही सभी ताड़ जाते हैं कि उनका

0: बुद्ध का वैचारिक धरातल किस पर टिका है। बात अभी नहीं तो कालांतर में सभी समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति आपके साथ बैठकर दूसरों की बुराई को ही वार्तालाप का मुख्य विषय बनाते हैं, वे निश्चित रूप से दूसरों के सामने आपकी आलोचना में मशगूल रहते होंगे। अतः आलोचक का व्यक्तित्व इससे धूमिल होता ही है, साथ ही वो स्वयं में सुधार भी नहीं ला पाते। कुछ व्यक्ति स्वभाव से निंदा रस प्रिय होते हैं, क्योंकि इससे उनके अहम की तुष्टि होती है। यदि आप सम्मानित और प्रशंसित होना चाहते हैं तो अपने संपर्क में आए अन्य व्यक्तियों के अवगुणों पर ही नजर न रखें, बल्कि उनके गुणों को भी उजागर करें। दूसरों की आलोचना कर स्वयं प्रशंसा के पात्र आप कभी नहीं बन सकते, चाहे आप कितने ही विद्वान और सक्षम क्यों न हो। एक गुणग्राही सेठ जी थे, उन्होंने दो विद्वानों की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी। अतः सानिध्य लाभ की दृष्टि से उन्हें अपने घर भोजन हेतु आमंत्रित किया। पहले आए विद्वान का यथोचित सम्मान कर उन्होंने कहा, सुना है आपके साथी बड़े विद्वान हैं। इस पर मुंह बनाकर उन्होंने कहा, विद्वान? अरे वो तो निरा गधा है गधा। सेठ जी स्तब्ध रह गए। दूसरे विद्वान के आगमन पर उनका हाथ पैर धुलवाने आंगन में ले गए तो वहां उनसे भी यही पूछा, आपके साथी बेहद विद्वान प्रतीत हो रहे हैं। नाक भौं सिकोड़कर उन्होंने तुरंत आगे कहा, यह आपसे किसने कह दिया? अरे ये तो बैल है बैल। दोनों जब भोजन करने बैठे तो सामने थाली में पैरा भूसा दाना देखकर वे क्रोधित हो उठे। कहने लगे, ये क्या सेठ जी, आपने हमें अपमान करने बुलाया था? विनम्रता पूर्वक सेठ जी ने कहा, नहीं महानुभाव, आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में जो कहा उसी के अनुसार भोजन की व्यवस्था की है। वे दोनों लज्जित होकर रह गए। अतः प्रशंसित होना चाहते हैं तो स्वयं के अवगुणों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि छिद्रान्वेषी होकर दूसरों की बुराइयां ही ढूंढते रहें।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आलेख था श्रीमती अलका राठी का। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस कांड।

ननिहाल से अयोध्या लौटते हुए भरत को चारों ओर अपशकुन दिखाई देते हैं। नगरवासी मिलते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, मात्र अभिवादन कर चल देते हैं। महल में पहुंचकर भरत को माता कैकेयी अति प्रसन्न दिखाई पड़ी। पिता, भाइयों तथा अन्य माताओं का कुशल पूछने पर बोली, हे तात, मैंने मंथरा की सहायता से सारी बात बना ली थी, किंतु विधाता ने बीच में ही बात बिगाड़ दी। राजा देवलोक को सिधार गए। भरत के कानों और हृदय में माता के वचन शूल की भांति चुभे। करुणा करते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। पिता के स्वर्गवास के क्षणों में वे उनके पास नहीं थे, शोक मग्न पुत्र को अपना सिर धुनने के लिए इतना ही कारण पर्याप्त था। माता से संपूर्ण घटनाक्रम का विवरण सुनकर भरत क्षण भर को पिता का मरण भूल गए। जो अनर्थ हो गया था उसका कारण उन्होंने स्वयं अपने आप को मान लिया। माता ने जो सांत्वना भरे वचन कहे वो उन्हें अपने घाव पर नमक के समान लगे, मानो रिश्ते घावों को अंगार छू गया हो। पापिनी, तूने सारे कुल का सर्वनाश कर दिया। यदि तेरी यही नियत थी तो जन्म लेते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया? जब तूने मन में ये ठाना तो तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए?

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, कलाकार थे वाणी जयराम और श्रीकांत पारगांवकर। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बीजों की श्रेणियां और पहचान, इस विषय पर जानकारी देते हुए संगीता टेटवार।
1: नमस्कार किसान भाइयों, हम हमेशा बात करते हैं कि प्रमाणित बीज लेना चाहिए और ये आधार बीज है, प्रमाणित बीज है, तो हम क्या चीज है, कैसे इसकी पहचान करें और वास्तविकता में क्या होता है बीजों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अगर जब तक इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप जो भी बीज लगाते हैं आपको ये पता नहीं होता है कि हम किस श्रेणी का बीज प्रयोग कर रहे हैं, किसे लगा रहे हैं, उसे हमें कितने वर्ष तक लगातार लगा सकते हैं। तो इन सब के बारे में आज को मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहला चीज है कि बीज किस तरीके से शुरुआत होती है। बीज की शुरुआत होती है न्यूक्लियर सीड, न्यूक्लियर सीड या बोल सकते हैं हम उसको, न्यूक्लियर सीड मतलब जो वैज्ञानिक क्या करते हैं, एक एक बीज को लगा करके पौध का निर्माण करते हैं और न्यूक्लियर सीड उसमें से एक एक पौध से जो बालियां निकलती है उसको अलग अलग उसको संधारित करके फिर बीज का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं न्यूक्लियर सीड। उन्हीं न्यूक्लियर सीड से जब ब्रीडर या प्रजनक जो यूनिवर्सिटीज में कार्यरत हैं या फिर बोल सकते हैं बीज कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में कार्यरत हैं, तो वो ब्रीडर अपने निर्माण किए गए बीजों का या किस्मों का, जो उन्होंने किस्मों को निकाला है, उन किस्मों का प्रजनक बीज का उत्पादन करते हैं, तो ये कहलाता है प्रजनक बीज या ब्रीडर सीड। अब ब्रीडर सीड का भी परीक्षण होता है। ब्रीडर सीड का जो टैग है वो पीले रंग का टैग होता है, गोल्डन येलो रंग का टैग। तो अगर आप कहीं भी किसी भी पैकेट में गोल्डन येलो रंग का टैग देखें तो आपको ये समझना है कि वह है प्रजनक बीज का टैग। आज जो टैग बन रहे हैं वो टैग कागजों के नहीं होते, वो फाइबर्स के बन रहे हैं जो कि जल्दी फटते नहीं हैं और उसमें सारी जानकारी अंकित होती है, QR कोड अंकित होता है। तो यदि आप उस QR कोड को अपने फोन से स्कैन करते हैं तो आपको पूरा सोर्स, उसकी पूरी जानकारी पता चल जाती है कि वह बीज उत्पादन कहाँ पे हुआ है, किस ब्रीडर के माध्यम से किया गया, ये सारी जानकारी आपको ब्रीडर सीड के टैग में, पीले रंग के टैग में मिल जाएगी। अब उन्हीं पीले रंग के टैग वाले बीजों का, यानी कह सकते हैं कि प्रजनक बीजों को जब किसान भाई लगाते हैं उसकी जो प्रजाति आती है, जो नेक्स्ट आती है, जनरेशन आती है, वह कहलाती है आधार बीज। किसान भाई हमारे यहाँ प्रजनक बीज को ले जाते हैं जिनके पास सारी भौतिक सुविधाएं उपलब्ध है, खेत सही है और पानी की सुविधा है, वो सब जब बीज उत्पादन करते हैं तो आधार बीज का निर्माण करते हैं। आधार बीज प्रजनक बीज की नई जनरेशन है। आधार बीज का रंग जो होता है, आधार बीज के टैग का रंग होता है सफेद। सफेद रंग का टैग अगर आपको दिखता है, हम देखें कि जब हम सोसाइटी से कहीं से बीज खरीदते हैं तो हमको उस बोरे में एक सीला हुआ एक कागज या स्लिप मिलता है, वही होता है टैग। अगर वो पीला है तो प्रजनक बीज का टैग है, अगर वो सफेद है तो वो आधार बीज का टैग है। उसमें भी वही स्थिति है कि आपको कैसे पता करना है कि ये टैग सही है कि नहीं है, उसमें QR कोड बना होगा। QR कोड को आप स्कैन करेंगे, आपको वो आधार बीज कहाँ उत्पादन हुआ है, उसका सोर्स क्या था, किस कृषक ने किया है, ये सारी जानकारी, उसका अंकुरण क्षमता, उसके परीक्षण की सारी जानकारी, सब कुछ उस टैग के QR कोड स्कैन करने से आपको मिल जाएगी। तो आप इससे बिल्कुल

0: अश्योर हो जाएंगे या आप बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मैं जो बीज या पैकेट या बोरी ले रहा हूँ वो बीज बिल्कुल सही है। अब आधार बीज भी हमारे छत्तीसगढ़ बीज प्रमाणीकरण संस्था में आज की स्थिति में आधार एक की नई जनरेशन आधार दो उत्पादन किया जा रहा है। कम से कम हम तीन जनरेशन का ही उत्पादन करते हैं, पहला प्रजनक से आधार एक, आधार एक से आधार दो, आधार दो से प्रमाणित एक, या फिर आधार एक से प्रमाणित एक और या प्रमाणित एक से प्रमाणित दो, इस प्रकार तीन जनरेशन का ही उत्पादन किया जाता है। तो मैंने आपको बताया पीला रंग है अपना प्रजनक बीज, सफेद रंग है आधार बीज। उसके बाद अगर जब हम आधार बीज को लगाते हैं उसकी नई जो जनरेशन आती है वो कहलाता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज का जो रंग के टैग का रंग होता है वो एजर ब्लू नीले रंग का, आज की कंडीशन में या स्थिति में वो सेटिन ब्लू कलर का नीले रंग का टैग होता है। उसमें भी हम कैसे पता, बिल्कुल QR कोड सारी सुविधाएं हैं, आप उससे उसके सोर्स का सबका पता कर सकते हैं। हम आज ये सीख रहे हैं कि रंगों से हम कैसे पहचाने कि कौन सा बीज किस श्रेणी का है। तो हम नीले रंग के टैग के बारे में हमने जान लिया। अब हम नीले रंग के टैग के बाद में जब हम आगे जाते हैं तो हमारे पास यहीं पर एक क्लासेस जो है जो कि प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत बीज उत्पादन कार्यक्रम में आती है यहीं पे समाप्त हो जाती है। चूंकि आज हम जब स्थिति मार्केट में या फिर हम बाजार में देखते हैं आपको हरे रंग का टैग मिल रहा है लगा हुआ बोरियों में, तो जो हरे रंग का टैग है वो है TL सीड टैग या फिर ट्रूथफुल लेबल टैग या फिर सत्यरूप टैग। ये प्रमाणीकरण संस्था के अंतर्गत इसका निरीक्षण या परीक्षण नहीं किया जाता। यह कोई भी निजी संस्था अपने बीज को उत्पादन करके उनको अपनी प्रयोगशालाओं में ही परीक्षण करके उसमें हरे रंग का टैग लगाती है।
1: कृषि चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बीजों की श्रेणियां और पहचान इस विषय पर जानकारी दे रही थी संगीता टेटवार। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्कैन आप सुनेंगे रात 8:30 पर, राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती सुनिएगा रात 9:30 पर, संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। इसमें आप सुनेंगे स्मिता मुकाशी का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 7:05 पर सुनिएगा सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। इसमें सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय इंटीरियर डिजाइन दिवस पर इंटीरियर डिजाइनिंग की बारीकियों और संभावनाओं पर इंटीरियर डिजाइनर श्री निकेतन कुमार से खास बातचीत। साथ ही सुनिएगा हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हिंदी पत्रकारिता कल आज और कल पर वरिष्ठ पत्रकार श्री राजेश जॉन पॉल से विशेष बातचीत। और आप सुनेंगे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित इंटीग्रेटेड MSc प्रोग्राम प्रवेश परीक्षा के विषय में सेंटर फॉर बेसिक साइंस के प्रोफेसर डॉक्टर केशव कांत साहू से बातचीत। प्रस्तुत करता होंगी श्रेया श्रीवास्तव। समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। इसमें सुनिएगा विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के कारण लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर रश्मि राय ओरल कैंसर विशेषज्ञ बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे रमाशंकर। बातों बातों में ये कार्यक्रम प्रसारित होगा सुबह 9:00। इसमें आप सुनेंगे ग्रीष्म लहर और मानसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वीणा से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की होगी। लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर कलाकार होंगे सीताराम साहू और साथी। इसी कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे पीताम्बर यादव और साथी। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सरला भिड़े का गाया राग भैरवी में दादरा आप सुनेंगे सुबह 11:40 पर। आकाशवाणी संग्रहालय से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:00। इसमें गाथा झरोकों से का पहला भाग प्रसारित होगा। इसमें सुनिएगा विलुप्त होती लोक गाथा कुंवर रसाल। प्रस्तुत करता होंगे मोहन सी रामानी। आपके मित ये गीत फिल्मी गीतों का ये फरमाइशी कार्यक्रम प्रसारित होगा दोपहर 12:30 पर। कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे दोपहर 1:30 पर। इसमें आज की कोर्ट में सुनिएगा नारी कौरव। इसमें देवी अहिल्याबाई होलकर पर चर्चा होगी और होगा गीतले भरी कहानी। इसमें सुनिएगा मोंगरा फिर महा

के आलेख और वाचन आशा शर्मा का होगा, संपादन होगा बीरबान साहू का, प्रस्तुति होगी रमाशंकर की। साथ ही चर्चा होगी विश्व परिवार दिवस पर। शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर कोट। शाम 5:10 पर युववाणी कार्यक्रम के आकर्षण होंगे अपन गोट, इसमें मोर गांव के सुरता, इस पर चर्चा होगी। और होगा क्रम आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 7:21 पर कार्यक्रम चौपाल में आज की बात का विषय होगा बैकयार्ड मुर्गी पालन खेती, कड़कनाथ संग अतिरिक्त आय के साधन। किसानवाणी में आज की सलाह में पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के लिए आवश्यक तैयारियां, इस विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक की सलाह आप सुनेंगे। नई फिल्मों से ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे। सदाबहार नखमे आप सुनेंगे सुबह 11:05 पर। चित्रपट संगीत सुनिएगा सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2 बजे, 2:30, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: पारदर्शकं तथा परिणाम अभिमुखीकरणम् आसीत्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीप्रधानः अवदत् यत् समग्र शिक्षाभियानं पीएम पोषणम् उल्लासः पीएम श्री इत्यादीनां प्रमुखयोजनानां एकीकृतपद्धत्याः प्रसारणम् अस्मिन्नेव वर्षे आरभ्यते। सः अवदत् यत् एतेन विद्यालयीयशिक्षाव्यवस्थायां बृहत्तरः समन्वयः प्रभावश्च सुनिश्चितः भविष्यति। केन्द्रीय कृषिमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अवदत् यत् कृषकाणां कृते बीजानाम् उपलब्धता सुनिश्चेतुं चतुःसप्ततिसहस्राधिकैकलक्षक्विण्टल परिमितस्य राष्ट्रियबीजसंरक्षणस्य स्थापना कृतास्ति। सः ह्यः नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य खरीफ अभियानस्य कृते कृषिविषयकस्य राष्ट्रियसम्मेलनस्य द्वितीयदिने प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् आसीत्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतसायं महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे न्यू चंडीगढ़ नगरे महत्वपूर्णे क्वालिफायर द्वितीय स्पर्धायां गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं सप्तस्तोभैः पराजितम्। अधुना गुजरात टाइटन्स दलं श्वः रविवासरे अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृहमंत्री ने ड्रोन रडार निगरानी टावर अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कल कहा कि तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एज एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान

0: जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। आईपीएल क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुत करता है श्रेया श्रीवास्तव।

नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। हर सुबह हमारे जीवन में एक नई दस्तक होती है, जहां सूरज अपनी लालिमा बिखेरे हमें नए आगाज का संदेश देता है। हर खूबसूरत सवेरा और सुबह की रोशनी हमसे कहती है कि ये जीवन के अंधेरों से लड़ने का समय है, पूरी शिद्दत से मेहनत कर लगन से आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि हर नया दिन अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आता है। तो आइए साथ मिलकर इसे अपनाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। क्या पता जीवन किस पल करवट ले और सफलता हमारे कदम चूम जाए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायपुर, मैं हूं आपकी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव और पूरे दिल से स्वागत करती हूं आप सभी प्यारे श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में, ये कहते हुए कि नमस्कार रायपुर।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
0: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: हम जीवन में हमारे सामने सही रास्ते के आने का इंतजार करते हुए अपने दिन खर्च कर देते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि रास्ते इंतजार करने के लिए नहीं बल्कि चलने के लिए बने हैं। श्रोताओं, ये प्रेरणादायक सुविचार है भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, जिनके जीवन का उद्देश्य ही स्वतंत्रता रहा और जो जीवन भर इस सिद्धांत पर चले कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ऐसी विचारधारा वाले श्री बाल गंगाधर तिलक का, जिन्हें देश ने लोकमान्य तिलक की उपाधि से नवाजा। अपने इस सुविचार के जरिए वो हमें सरल शब्दों में गहरी बातें समझा रहे हैं। जिस तरह किसी भी रास्ते के बारे में सोच लेने बस से मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता, बल्कि मंजिल पर पहुंचने के लिए उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक उसी तरह जीवन में भी केवल अवसरवादी बनकर चुपचाप सही समय के आने और सही रास्ते के मिलने का इंतजार करते बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि बात तो तब है जब हम अपने जीवन में स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए मेहनत करें। किसी रास्ते के सामने आने का इंतजार न करें, बल्कि खुद अपना रास्ता बनाएं और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। बेशक ऐसे रास्तों पर चलते हुए हमें बहुत सी चुनौतियों, कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना होगा, क्योंकि किसी भी मंजिल तक पहुंचने से पहले हमें परीक्षाएं देनी पड़ती हैं जो हमें हर कसौटी पर परखती हैं, और यही वो समय है जब हम खुद को साबित कर सकते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जब हम बिना डगमगाए पूरी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के साथ सकारात्मक सोच लिए हर रास्ते को पार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो वो सिर्फ जीत नहीं होती बल्कि एक ऐसा मकाम है जो हमने अपने दम पर हासिल किया है, एक ऐसी सफलता जिसे हमने जायज हकदारी से बनाया है, क्योंकि

वो हमने खुद कमाई है और एक ऐसी सफलता जिसमें शांति भी है और संतोष भी। इसीलिए बिना डरे अपने सच्चे कर्मों को करते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि जो डरते हैं वो कभी कुछ नहीं कर पाते और मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं।

0: श्रोताओं, हर दिन में कुछ न कुछ खास होता है। हर दिन की कोई ना कोई कहानी होती है। आज 30 मई है, यानी साल के पांचवें महीने का 30वां दिन। एक ऐसी तारीख जो भारतवर्ष के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की साक्षी रही है। आइए हम भी झांके इतिहास के पन्नों में और देखें कि इस दिन में क्या कुछ खास है। साथियों, हर साल मई महीने के आखिरी शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय इंटीरियर डिजाइनर्स डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंटीरियर डिजाइनर्स के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य इंटीरियर डिजाइनिंग को व्यावसायिक तौर पर मान्यता दिलाना, जनसामान्य तक इससे जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाना था। साथ ही साथ ये दिन दुनिया भर के इंटीरियर डिजाइनर्स और उनके काम को सम्मानित करने का बेहतरीन अवसर भी है। तो आज यानी 30 मई 2026 को हम अंतर्राष्ट्रीय इंटीरियर डिजाइनर दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे में इंटीरियर डिजाइनिंग की बारीकियों और संभावनाओं पर हमने बात की इंटीरियर डिजाइनर निकेतन कुमार से, जो पिछले 8 सालों से इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो आइए इस विषय पर आपको सुनवाएं इंटीरियर डिजाइनर निकेतन कुमार से विशेष चर्चा। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
1: नमस्कार श्रेया जी।
0: सर, आज हम अंतर्राष्ट्रीय इंटीरियर डिजाइनर दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे में हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में इंटीरियर डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनर की समाज में क्या भूमिका है।
1: आज के टाइम में इंटीरियर डिजाइनर को सिर्फ घर को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि एक कंफर्टेबल फंक्शनल स्पेस क्रिएट करना है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, कैफेटेरिया हो। क्लाइंट के लाइफस्टाइल को समझकर उनके हिसाब से उनका घर या स्पेस प्लान करना होता है। डिजाइन किसी भी स्पेस को इमोशंस और पहचान देती है।
0: सर, ऐसे में बतौर इंटीरियर डिजाइनर इस फील्ड में काम करते हुए आमतौर पर किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: इंटीरियर डिजाइनिंग एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, बट इसमें बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हर क्लाइंट के पसंद नापसंद और अपने घर को लेकर उम्मीद और बजट अलग होता है। उसको समझना और सभी क्राइटेरिया को देखते हुए बेस्ट आउटपुट देना एक बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा साइट देखना, लेबर मैनेज करना, हर दिन नए मटेरियल मार्केट में इंट्रोड्यूस होना और उससे खुद को अपडेट रखना भी बहुत जरूरी है। पेपर में डिजाइन की हुई चीजें प्रैक्टिकल मुमकिन कैसे हो सकती है उसको समझना भी एक चैलेंज है, बट काम और अनुभव के साथ आप इसे अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं।
0: सर, ऐसे में जो युवा इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सही समय और प्रक्रिया क्या है।
1: 12th के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, डिग्री या डिप्लोमा कर सकते हैं। साथ साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और सॉफ्टवेयर की नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी को कलर, स्पेस, डिजाइन और क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो उनके लिए ये फील्ड बहुत अच्छा है। इसमें ऑटोकैड, स्केचअप, फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर आपके लिए एक अहम भूमिका निभाती है।
0: सर, इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में भविष्य में किस तरह की संभावनाएं हैं।
1: इंटीरियर डिजाइन में फ्यूचर काफी ब्राइट है। आजकल हर कोई अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स पे ध्यान देते हैं और अपने स्पेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, साथ ही उसे एक पर्सनलाइज्ड टच देना चाहते हैं। रेसिडेंट्स के साथ ऑफिसेज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, शोरूम जैसे स्पेस में भी इंटीरियर डिजाइन की बहुत जरूरत बढ़ रही है। इस फील्ड में क्रिएटिविटी के साथ अपॉर्चुनिटी, बिजनेस और फ्रीलांसिंग के काफी स्कोप है।
0: सर, ऐसे में आज अंतर्राष्ट्रीय इंटीरियर डिजाइनर दिवस के अवसर पर जाते जाते आप हमारे सभी श्रोताओं से और खासकर युवा श्रोता साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे।
1: सबसे पहले तो मैं सारे डिजाइनर्स को बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा इस इंटरनेशनल इंटीरियर डिजाइनर्स डे पे। मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप क्रिएटिव हो और हर दिन कुछ नया करना चाहते हो तो इस फील्ड को जरूर एक्सप्लोर करिए। हर सफल और यूनिक डिजाइन के पीछे कई दिनों की मेहनत, पेशेंस और सीख होती है। बदलते ट्रेंड के साथ सीखना, खुद को अप टू डेट रखना, अपना पैशन को फॉलो करना और गिव अप नहीं करना, आपको सफलता जरूर मिलेगी।
0: सर, आज हमें अपना समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड से जुड़ी ये सारी बारीकियों के बारे में हमारे श्रोताओं तक बातें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, जो न सिर्फ भाषा और पत्रकारिता की विरासत का उत्सव है, बल्कि ये दिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की अहमियत को भी रेखांकित करता है। इस दिन की ऐतिहासिक जड़ें सन 1826 में छुपी हैं, जब 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया, जो पत्रकारिता, जनजागरण और सामाजिक चेतना की दिशा में हिंदी भाषियों के पहले कदम की याद दिलाता है। हिंदी पत्रकारिता ने उन लोगों को आवाज दी जो अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में सहज नहीं थे, साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में जागरूकता और एकता बढ़ाने का कार्य भी किया और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। हिंदी पत्रकारिता दिवस न केवल अतीत को याद करने का अवसर है, बल्कि भविष्य के लिए मार्गदर्शन भी करता है। इसका उद्देश्य नीडर और निष्पक्ष पत्रकारों का सम्मान करना और नई पीढ़ी को पत्रकारिता की नैतिकता और जिम्मेदारियों से जोड़ना भी है। साथियों, आज यानी 30 मई 2026 को हिंदी पत्रकारिता अपने गौरवशाली 200 वर्ष पूरे कर रही है, तो इस अवसर पर हिंदी पत्रकारिता की यात्रा और इसके कल, आज और कल पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार श्री जॉन राजेश पॉल से, जिन्हें पत्रकारिता जगत में 2 दशकों से भी अधिक का अनुभव है। तो आइए आपको सुनवाएं इस विषय पर श्री राजेश पॉल से विशेष संवाद।
1: नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नमस्कार रायपुर में।
2: नमस्कार
1: सर, सबसे पहले आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर हम आपसे वर्तमान में हिंदी पत्रकारिता की स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे।
2: मैं आकाशवाणी रायपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने पत्रकारों को याद किया है और इस बड़े अवसर पर

0: आपको और श्रोताओं को हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने की शुभकामनाएं देता हूँ। वर्तमान में थे मैं जब हिंदी पत्रकारिता एक बहुत ही दिलचस्प और क्रांतिकारी और साथ ही चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रहा है, जहाँ एक और इंटरनेट ने उसका दायरा अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है, वहीं दूसरी तरफ की विश्वसनीयता आत्मनिर्भरता को लेकर भी काफी गहरे संकट सामने हमको दिखते हैं। आज की हिंदी पत्रकारिता की अगर हम लोग बात करें तो हिंदी पत्रकारिता का उदय भारत में 30 मई 1826 को हुआ, जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से साप्ताहिक पत्र दंड मारतंड का हिंदी में अगर हम लोग अनुवाद करें तो समाचार सूर्य का प्रकाशन शुरू किया। यही कारण है कि हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है।
1: सर, हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए मुख्य रूप से किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना जरूरी हो जाता है?
0: देखिए, चुनौतियां तो हर दौर में रही हैं पत्रकारिता में, और अब चूंकि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक हो गया है, डिजिटल क्रांति भी आ गई है, मोबाइल से भी जर्नलिज्म होने लगा है, तो हिंदी पत्रकारिता केवल प्रिंट मीडिया यानी केवल अखबारों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि टीवी चैनलों ने भी इसमें बड़ी पैठ बना ली। अब रीडिंग से ज्यादा इसमें व्यूइंग की बातें की जाती है, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी देश में वीडियो फर्स्ट और मोबाइल फर्स्ट कंजम्पशन और अब डिफॉल्ट बन चुका है। लोग खबरें पढ़ने से ज्यादा वीडियो फॉर्मेट या शॉर्ट रील या यूट्यूब को देखना पसंद कर रहे हैं। हाइपर लोकल रिपोर्टिंग की बात करें तो डिजिटल मीडिया ने स्थानीय या कस्बाई स्तर की पत्रकारिता को आर्थिक रूप से और व्यावहारिक बना दिया है। जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, AI आ गया है जिसे हम कहते हैं, वो हिंदी न्यूज रूम में एक AI को बड़े टूल्स के रूप में तेजी से उपयोग में लाया जा रहा है, और लंबे सरकारी दस्तावेजों को अनुवाद करना और उसकी सुर्खियों के ड्राफ्ट तैयार करना, डेटा का विश्लेषण करना, इससे पत्रकारों को बड़ी मदद मिल रही है। चुनौतियां भी हैं, हालांकि पत्रकारिता का विस्तार बड़ा है, इसके आंतरिक मूल्य और ढांचे भी काफी दबाव में रहते हैं। जैसे हम विश्वसनीयता और फेक न्यूज की बात करें तो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर भ्रामक खबरें भी प्रसारित हो जाती हैं, और डीप फेक की जैसे बाढ़ सी आ गई है अब कई जगह हम देखते हैं, और इसके कारण सच्ची जो पत्रकारिता होती है कि सामने खुद को भरोसेमंद साबित करना एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। और अखबार पढ़ने की घटी आदत के कारण जो पारंपरिक हिंदी अखबार हैं उनके सर्कुलेशन और रेवेन्यू मॉडल पर भी भारी दबाव है। सूचना के विस्फोट के दौर में है, सूचनाएं तो बहुत हैं लेकिन भरोसा कम हुआ है। भविष्य उसी हिंदी पत्रकारिता या पत्रकार का है जो इस डिजिटल भीड़ में तकनीक जैसे AI सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर अपनी साख, निष्पक्षता और जन सरोकार को बचाए रखे।
1: सर, हिंदी पत्रकारिता जगत में किस तरह की संभावनाएं हैं और जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या सुझाव है?
0: हिंदी पत्रकारिता जगत में तो बहुत ही संभावनाएं हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहता है वो इसे अपने फ्यूचर के रूप में, प्रोफेशन के रूप में अपना सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी हैं और कॉलेजों में भी इसके कोर्स पढ़ाए जा रहे हैं। 12वीं के बाद या डिग्री लेने के बाद या डिप्लोमा लेने के बाद भी लोग इस कोर्स को अपना सकते हैं और चंद समय में अपने आप को उसके लिए खड़ा कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें बहुत ही लेकिन लगन से, तन्मयता से, निष्पक्षता से काम करना होगा, तभी वो इस फील्ड में सफल हो पाएंगे।
1: सर, अगर हम हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के इस गौरवशाली यात्रा को देखें तो संक्षिप्त टिप्पणी किस प्रकार होगी?
0: हमारा जो इतिहास है बहुत ही गौरवशाली रहा है, और अब तक जो सफर तय किया है उसमें भी हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। और अगर हम इतिहास पर टिप्पणी करें तो आपको एक बहुत मैं बड़ी खुशखबरी ये देना चाह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मारतंड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो पत्रकारिता गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और प्रेस क्लब रायपुर ने इसका आयोजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके मुख्य अतिथि हैं और राम मंदिर में इसका आयोजन है, और इसके कई सेशन होंगे और देश के कई नामी पत्रकार भी आकर मीडिया के ऊपर अपनी बातें रखेंगे। पूरे प्रदेश भर के पत्रकार इसमें शामिल होंगे और आप लोग भी इसमें शामिल होंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें जानने को मिलेंगी।
1: सर, अंत में आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप हमारे सभी श्रोताओं से क्या कुछ खास कहना चाहेंगे?
0: खास तो श्रोताओं और पाठकों के लिए और खुद पत्रकारों के लिए भी है, क्योंकि ये जो पत्रकारिता है ये दोनों एक पत्रकार, पत्रकारिता, पाठक, ये एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों की जिम्मेदारी होती है जब वो अखबार पढ़ते हैं और पत्रकार जब खबर लिखते हैं, तो एक खबर से कोई दुखी होता है, कोई खुश होता है, किसी के लाभ की होती है तो कोई खबर किसी के विरोध में जाती है। पर हमें इस बात का उस समय ध्यान रखना चाहिए जो पत्रकार हैं उनको, कि वो बहुत ही निष्पक्षता से उस खबर को लिखें, और अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ खबर लिख रहे हैं तो उसका पक्ष जरूर उसमें डालें। और साथ ही मैं पाठकों से ये भी कहना चाहूंगा कि वे अभी जब डिजिटल मीडिया का दौर है

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मो प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चर ले सवलग सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: श्रोताओं, आइए अब आपको छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी मुख्य परीक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दें। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा गत वर्ष से साल में 3 बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इस साल की पहली मुख्य परीक्षा मार्च के महीने में आयोजित की जा चुकी है और अब छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने 10वीं और 12वीं की दूसरी मुख्य अवसर परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये परीक्षा अगस्त से सितंबर महीने में होना प्रस्तावित है और ओपन स्कूल द्वारा दी गई अधिकृत जानकारी के अनुसार विद्यार्थी सामान्य शुल्क के साथ 25 मई से लेकर 30 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद किसी कारणवश फॉर्म भरने में वंचित विद्यार्थी 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ 3 जुलाई से 8 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। विद्यार्थी प्रवेश से संबंधित जानकारी के लिए समीपस्थ अध्ययन केंद्र में संपर्क करें और साथ ही साथ परीक्षा फॉर्म ओपन स्कूल की वेबसाइट से डाउनलोड कर समीप के अध्ययन केंद्र में ऑफलाइन भी फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगर आप भी अपने ओपन स्कूल की 10वीं और 12वीं कक्षा की दूसरी मुख्य परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो इन सभी जानकारियों पर विशेष ध्यान जरूर दें, जिससे कि आप बिना किसी रुकावट आसानी से अपनी परीक्षाएं दिला सकें।

0: श्रोताओं, प्यारे श्रोताओं, कुछ रिश्तों का एहसास बेहद खास होता है। वो हवा की तरह हमारे संग होते हैं, दूर होकर भी पास होने का एहसास दिलाते हैं और जीवन में नए रंग पिरोते हैं। एक ऐसा ही अनोखा रिश्ता है आपका और आकाशवाणी रायपुर का। तो इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखें और हमें अपना प्यार देते रहें। साथियों, आज के लिए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम का ये सुहाना सफर यहीं पूरा होता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको हमारी प्रस्तुतियाँ कैसी लग रही हैं, हमें अपने पत्रों के माध्यम से ज़रूर लिख भेजें। हमें आपके पत्रों का इंतज़ार रहेगा। बहुत जल्द एक नए अंदाज में, नई बातों, नई गीतों और नई रोचक जानकारियों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज के लिए अपनी रेडियो साथी श्रेया श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर। प्रस्तुतकर्ता थी श्रेया श्रीवास्तव। यह आकाशवाणी का रायपुर और सराइपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमा के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
5: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
4: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
6: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
4: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारी पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने तीव्र प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं के डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग

0: करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमा और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमा के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमा के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमा के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुजीय सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी ही रहे। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के 2 सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर 3rd स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है।

0: 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
1: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों की उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज के समारोह में कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारेक्काल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद कनक। नीट UG पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी आज के अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने सर्वोच्च न्यायालय का बयान दिया है, जवाबदेही तय होने तक नहीं रुकेंगे पेपर लीक मामले। देशबंधु और नवभारत टाइम्स ने CBSE की 12वीं की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखता है, यहीं से करा सकेंगे रिवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, समय सीमा 1 साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 हुए हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के लक्षण और उपचार पर डॉक्टर रश्मि राय, ओरल कैंसर विशेषज्ञ, बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता है रमाशंकर।

0: श्रोताओं नमस्कार, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने का तात्पर्य मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से चुस्त और स्थिर रहना है। श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें उन दिनचर्याओं का पालन करना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन कुछ आदतें होती हैं कि जिससे स्वास्थ्य पर उसका बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। इन गलत प्रभावों के कारण हम कई बार कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और शुरुआती तौर पर इन बीमारियों का पता लगे तो हम इसका बेहतर उपचार करवा सकते हैं और इन्हीं बीमारियों को जब हम नज़रअंदाज करते हैं तो इसके गंभीर परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं भारत की तो यहाँ युवा जो है काफ़ी नशे की गिरफ्त में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो, लेकिन उस नशे के आदि होने के बाद नशे के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं और ये नशा ही है जो हमारे युवाओं को भटकाता भी है। तो श्रोताओं, 31 मई को हम नो टोबैको डे मनाते हैं, विश्व स्तर पर मनाते हैं और इसका उद्देश्य यही है कि तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हम लोगों को जागरूक करें। और तंबाकू जो हमारे भारत में कई गंभीर बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता है, इसी के बारे में 31 मई को नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। तंबाकू से होने वाले नुकसान और इससे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं और तंबाकू का हमारे जीवन में कौन कौन से दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इस बारे में जानकारी के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर रश्मि राय जी को, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट और मैक्सिलोफेशियल सर्जन है बालको मेडिकल सेंटर रायपुर में। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया है कि हम इतने बड़े पॉपुलेशन जो छत्तीसगढ़ के आसपास के सारे केंद्रों में हम इस बारे में बात कर पाएं कि टोबैको कितना हानिकारक हो सकता है, तंबाकू कितना हानिकारक हो सकता है हमारे शरीर के लिए और मुँह के कैंसर के लिए तो एक वो नोन कॉज है
0: जी।
1: तो जितना ही उसके बारे में बात करेंगे उतना ही हम उसको समझ पाएंगे और इस तरह से हम अवेयरनेस जितना बढ़ाएंगे हम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको बचा सकते हैं तंबाकू के दुष्प्रभावों से।
0: जी जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रश्मि जी, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को, तो इस दिन का क्या महत्व है और खासकर हम देखें छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में?
1: जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो अवेयरनेस के लिए है, ये अवेयरनेस हर तरह के लेवल पे पहुँचे, हर जगह पे। जिस तरह से तंबाकू का सेवन बहुत प्रचलित है छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे फॉर्म्स में हो तरीके से सेवन किया जा सकता है, बीड़ी और बीड़ी हो गया, सिगरेट हो गया, जो कॉमनली यहाँ तो बीड़ी का सेवन ज़्यादा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ मुख्य रूप से यूज़ करने वाला जो तत्व जिस फॉर्म में करते हैं वो है गुटखा या गुड़ाखू। सुबह शाम दांत में जैसे टूथपेस्ट किया जाता है वैसे उसका यूज़ होता है। और एक मिथ है, एक भ्रांति है कि ये तंबाकू नहीं है और इससे हमें तंबाकू से जो दुष्प्रभाव होते हैं वो इससे नहीं होते हैं। ये हमारे मोस्ट कॉमनली जो जब हम हॉस्पिटल में बैठे होते हैं तब इस तरह की चीज़ें जब हम उनको बोलते हैं कि आप और किस फॉर्म में खाते हैं तो वो कभी भी गुड़ाखू का नाम नहीं लेते। तो पहले तो ये समझना है कि ये जो गुटखा है, गुड़ाखू है, ये सब तंबाकू के ही प्रकार हैं। तंबाकू इट्सेल्फ उसमें इतने कंटेंट्स होते हैं, जैसे कि उसमें कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोसामिन होता है, बेंजीनाल्डिहाइड है, इस तरह के जो केमिकल कंपाउंड से बड़े नाम हैं उसी तरह से वो हमारे शरीर के कणों को ख़राब करते हैं। और तंबाकू से जुड़े कम से कम 20 से ज़्यादा कैंसर में तंबाकू का रोल है और बहुत सारी और बीमारियाँ जैसे कि सांस लेने में तो तकलीफ वाली जो

0: हमारी फेफड़े की बीमारियां होती हैं, हमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होते हैं, ये भी तंबाकू द्वारा होता है जो कि हम जनरली नहीं सोच पाते हैं। हमारा जो कर्तव्य है, जो नो टोबैको डे का पर्पस है, कि हम इस बारे में अवेयर कराएं और इस चीज को अपनी युवा से दूर रखें।
1: जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने। तो डॉक्टर रश्मि जी, जब कोई व्यक्ति तंबाकू को सेवन कर रहा है, नशीले पदार्थों को सेवन करता है, तो उसमें ओरल कैंसर होने की संभावना काफ़ी हो जाती है, तो वो कौन से जो है प्राइमरी सिम्टम्स हैं जिसे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं?
0: कई बार क्या होता है कि गुटखा और तंबाकू वो गाल में रखते हैं साइड में, तो वहाँ पे सफ़ेद पैच या जबान में भी सफ़ेद पैच या लाल पैचेस जैसे बनते हैं, मतलब एक छाला जैसा बनेगा
1: जी
0: जो सतह में बहुत खुरदुरा कलर, रेड कलर हो सकता है, लाल कलर हो सकता है, सफ़ेद कलर हो सकता है, तो हम लोग उसको ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं। तो ये इनमें इस तरह के जो छाले होते हैं, और कोई गांठ है आपके गले में, गांठ है आपकी आवाज़ में, कोई बदलाव आ रहा है, तो ये जो और जैसे अचानक से आपकी हड्डी मसूड़े जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, तो कई बार क्या होता है कि घरों में लोग सोचते हैं कि ये हमारी दांत की तकलीफ़ है, ना कि कोई बीमारी है। तो हमारा जो बेसिकली सभी को कम से कम 3 महीने में एक बार जाके कोई डेंटल क्लिनिक हो गया या आसपास के कोई भी ENT सर्जन को जाके अगर मुंह में इस तरह की कोई छाला गांठ है तो दिखाना चाहिए। फिर निगलने में तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सब तंबाकू द्वारा हुए कैंसर। जैसे आपकी स्वर पेटी में अगर कैंसर हो जाता है तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, जैसे गांठें हो गई, अल्सर हो गया, जो लंबे समय से उसको इग्नोर ना करें तो बेहतर रहता है।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो और तंबाकू के कारणों की बात करते हैं, तो यदि कोई व्यक्ति तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के नशीले पदार्थों को सेवन करता है, तो उसके मुंह से संबंधित किन किन स्थानों पर कैंसर होने की संभावनाएं होती हैं?
0: देखिए, मुंह में जनरली 2 तरीके से तंबाकू का असर होता है। एक तो वो आपका पूरे मुंह में जो उसका रस रहता है और उसमें केमिकल होता है, पूरे मुंह को अफेक्ट करते हैं।
1: जी
0: उसके अलावा जिस जगह पे रहता है वहाँ पे डायरेक्ट ट्रॉमा भी होता है, तो जनरली होठ के पीछे रखने की आदत होती है, गालों में पीछे दबाने की आदत होती है और वो लगा के सो जाते हैं, तो वो एरिया तो बहुत कॉमन है। इसके अलावा मसूड़ों में हो सकता है, जबान में हो सकता है, जबान के नीचे सतह में हो सकता है, आपके तालू पे हो सकता है, फिर इस और इवन जबान के पीछे के एरिया में, जो कि कई बार दिखाई नहीं देता, आपको वो तकलीफ देगा, दर्द होगा, आवाज़ में थोड़ा सा लगेगा कि मोटी हो गई है, तो ये जबान का पीछे का एरिया होता है, तो और उस वजह से कई बार गले में गांठें होती हैं, तो ये एरियाज मेनली जो है कैंसर से ग्रसित होते हैं, जो अगर मुंह का कैंसर हम सिर्फ देखें तो।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, आपने बताया कि जो छाले होते हैं उनसे जो है मुंह के छाले जो हो जाते हैं तो उनमें कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ नॉर्मल छाले भी होते हैं जो मुंह में अक्सर होते रहते हैं, तो एक नॉर्मल माउथ अल्सर और कैंसरस अल्सर को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते
0: हैं? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि एक छोटे अल्सर को देख के हम डर भी सकते हैं, लेकिन कोई छाला जो कि 3 हफ्ते से ज़्यादा है और उससे आसपास की जो सतह है वो थोड़ी खुरदुरी मोटी हो गई है और वो जगह आजू बाजू लाल है और उभर जाता है और बीच में छाला जो है वो गड्ढे जैसा, आपको क्रेटर जैसा दिख रहा है, तो ये सारे ना छाले जो होते हैं उनको हमको दिखाना है। 3 हफ्ते से ज़्यादा कोई भी छाला है उसे हम इवेल्युएट कराएं, उसी में भलाई होती है। कई बार ये कैंसर का प्री कैंसर कंडीशंस भी होते हैं, तो अगर हम उसको उस लेवल पे ट्रीट करते हैं तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और हम उनको फॉलोअप पे कुछ दवाइयाँ देके और ठीक भी कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर रश्मि जी, अभी जो वर्ल्ड टोबैको डे के विषय में हमने तंबाकू से संबंधित जानकारी दी, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के जो समय में तंबाकू का सेवन जो है काफ़ी बढ़ गया है और इस तरह की समस्याएं काफ़ी देखने को मिल रही हैं, तो कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे कि आपकी पसंद का एक कोई गीत हम सुने।
0: पल पल दिल के पास।

श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राजी से, जो एक ओरल कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और साथ ही मैक्सिलोफेशियल सर्जन भी हैं, और बात कर रहे हैं हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के बारे में और तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में। तो डॉक्टर रश्मि जी, ओरल कैंसर की बात करते हैं, तो जब किसी मरीज को ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं कि उसे ओरल कैंसर हो सकता है, इसके लिए कौन

0: तकनीकों से जो है आधुनिक जांचें जो अभी हमको जो है अवश्य रूप से जो है करवानी चाहिए और अभी के समय में वो उपलब्ध है?
1: देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको लग रहा है कि आपको लक्षण है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है कि एग्जामिनेशन। आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है और अपनी जांच करवानी है। ये पहला स्टेप होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मतलब हम अपनी आंखों से पहले समझते हैं कि ये किस प्रकार की बीमारी है। ये क्यों समझना ज़रूरी है? मान लीजिए मुंह में ना, जैसे हड्डी के पास की कोई जगह है, तो हम अगर उसका कुछ उसको समझना चाहते हैं कि इसका फैलाव कैसा है, तो हम हड्डी के लिए सीटी स्कैन बेटर होता है। और अगर हम जबान को देखें तो वो मसल का बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए एमआरआई बेटर होता है। तो इसीलिए पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है। तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, पहले समझिए कि हमें कौन सा स्कैन कराना है। स्कैन का काम है पहले ये समझना कि ये, क्योंकि ये कैंसर क्या है कि वो लोकल एरिया में भी फैलता है और शरीर में भी फैलता है। तो पहला स्टेप होगा कि हम पहले ये समझें कि इसका फैलाव कैसा है, लोकल एरिया में कितना फैला है। तो उसके लिए अगर बोन के पास है तो हम सीटी स्कैन कराते हैं, एमआरआई करा लेते हैं। फिर है ये कण की बीमारी, सेल में चेंजेस आते हैं। तो जब तक हम इसको प्रूफ ना कर लें तो वो हम कर पाते हैं, हम वहाँ से एक सैम्पल टिश्यू लेते हैं जिसे बायोप्सी की प्रक्रिया कहते हैं, और उसको फिर हम माइक्रोस्कोपिकली समझते हैं कि ये बीमारी किस प्रकार की। मुंह में भी अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। ये तो मुंह का कैंसर जो आप तंबाकू से रिलेटेड है वो तो होता ही है, साथ में हमारी जो थूक की ग्रंथि और इसके आसपास के स्ट्रक्चर्स में भी कैंसर हो सकता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारा एक बायोप्सी जब आता है वो हमको बताता है कि इसको हमको ट्रीटमेंट कैसे देना है। तो मेन इम्पॉर्टेंट है इमेजिंग और दूसरा है बायोप्सी। तो सीटी स्कैन, एमआरआई और बायोप्सी जो रिक्वायर्ड है। अगर बीमारी बहुत बड़ी है तो पेट सीटी करके, होल बॉडी पेट सीटी होता है, या दोबारा बीमारी हुई है, उन सब केसेस में पेट सीटी का योगदान बहुत है। वो हमें बीमारी के फैलाव को समझने में बेटर तरीके से हेल्प करता है।
0: तो डॉक्टर रश्मि जी, जब हम मुंह के हेल्थ की बात करते हैं तो हम इसे घर में रहके स्वयं ही कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अपना मुंह के हेल्थ को एग्जामिन कर सकते हैं घर पे रहते हुए?
1: ये बहुत ही ज़रूरी है, जो क्योंकि हम हमेशा अस्पताल के करीब तो नहीं होते, तो और आप अपने शरीर से बेहतर कोई दूसरा आदमी हमें नहीं पहचान सकता। तो हमें सेल्फ चेकिंग के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक प्रॉपर लाइट ए वाला एरिया चाहिए, एक मिरर चाहिए, और आपको या तो कई हमारे पास टंग ब्लेड्स होते हैं, या तो आप नॉर्मली आप फिंगर से भी कर सकते हैं। आप अच्छे से हाथ धोइए, आईने के अंदर आपके होंठ के पीछे का एरिया, सबसे पहले हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, तो होंठ के पीछे का एरिया, गालों का एरिया और मसूड़ों को, जबान के नीचे, जबान के ऊपर, तालू, इन सब चीज़ों को हमको प्रॉपर लाइट में और मिरर के सामने देखना है। हमें क्या देखना है? कोई भी लाल सफ़ेद छाला, कोई भी दांत अचानक से हिल रहा है, कोई ऐसी जड़ों और उसके आजू बाजू सूजन है जो पहले नहीं था, और ये जो चीज़ है अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गई है तो हमें ज़रूरी करके अपने आप को अस्पताल में जाके दिखाना चाहिए।
0: जी जी, डॉक्टर रश्मि जी, एक जो सबसे बड़ी भ्रांति हम देखते हैं कि कई लोगों को कैंसर की संभावना देखी जाती है, छाले होते हैं, तो उन्हें बायोप्सी के लिए बोला जाता है तो लोग बायोप्सी से बचने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बायोप्सी के बाद कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है?
1: जैसे कि आपने खुद ही कहा कि ये भ्रांति है, तो इसमें सच्चाई तथ्य नहीं है।
0: जी
1: देखिए, अब एक होता है कि कोई भी चीज़ को तथ्य मानने के लिए उसका पीछे एक साइंटिफिक आधार होना चाहिए। हम यहाँ पे हेयर से में रहते हैं, उसने कहा और मैंने सुना,
0: जी जी,
1: है ना। तो जब हम इस तरह की सोच में फंस जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है हमें डर लगता है, उस डर को हमें कोई बोल दे कि हाँ तुम ये नहीं कराओगे, क्योंकि कोई भी आपके शरीर का कुछ भी कटता है आपको दर्द देता है। तो आपसे अगर हम बोलें कि हम एक सैंपल देने जा रहे हैं, तो पहले तो आप उस प्रोसीजर से डर रहे हो, फिर आपको कोई बोल देता है कि हाँ इससे तुम्हारा कैंसर बढ़ जाएगा, तो ये आपके उस डर को हेल्प करता है कि मैं इस वजह से नहीं करा रहा हूँ। तो ये एक होता है डिनायल जो चीज़ है, उसमें हम उसका हेल्प लेते हैं। कभी हुआ कि 100 में से जो है एक पेशेंट आए थे, उनको हमने बायोप्सी किया, क्योंकि बीमारी अपने आप ही बढ़ने के फेज में चल रही है, और बायोप्सी ली और उसके बाद वो बढ़ गया। अब ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब भी बायोप्सी की जाएगी तो बीमारी बढ़ जाएगी। किसी और से बात किया, उसको भी यही बताया, इस तरह से मास में ये बात फैल जाती है। हम बिना बायोप्सी के ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। हमारी दुविधा ये है, जब तक कण को हम डिफाइन नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट देना गलत होगा। तो बेहतर है कि हम बायोप्सी से डरे ना, वो बहुत ज़रूरी स्टेप है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए।
0: जी,

0: डॉक्टर रश्मि जी, अब पता चल जाता है कि किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, तो इसके कितने स्टेजेस होते हैं और किन किन स्टेजेस में कितने जो है रिकवरी और बचने के चांस हो सकते हैं, और इनके लिए कौन कौन से अभी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं?
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें जब डायग्नोसिस मिलता है कि हमें कैंसर है तो सबसे पहले तो हम डर जाते हैं, क्योंकि कैंसर को माना जाता है कि ये आपका एंड ऑफ लाइफ का स्टार्ट हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुंह के कैंसर में अगर हम जल्दी अर्ली डिटेक्शन होता है तो हम अच्छा रिजल्ट मिलता है, हम अच्छे से चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। मेरे खुद के इतने पेशेंट हैं जो 10 से ज़्यादा साल जी चुके हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें इलाज कराना है। अब इसके जो स्टेजेस होते हैं वो, अब मैंने कहा कि अर्ली स्टेज में स्टेज 1 स्टेज 2, हम जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है 3 और 4 मेनली चार स्टेजेस में इस बीमारी को क्लासिफाई किया गया। क्योंकि मुंह का कैंसर, मुंह में जो हमारे सारे मेन जैसे हड्डी और स्किन वगैरह सब पास में है, तो कोई अगर थोड़ा भी लेट होता है तो हम स्टेज 4 में पहुंच जाते हैं।

0: होते हैं वो, अब मैंने कहा कि अर्ली स्टेज, अर्ली स्टेज में स्टेज वन स्टेज टू, हम जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है थ्री एंड फोर, मेनली स्टेज चार स्टेजेस में इस बीमारी को क्लासिफाई किया गया, क्योंकि मुंह का कैंसर, मुंह में जो हमारे सारे मेन जैसे हड्डी और स्किन वगैरह सब पास में है, तो कोई अगर थोड़ा भी लेट होता है तो हम स्टेज फोर में पहुंच जाते हैं। जो एक्चुअली स्टेजेस में डिफाइन करने का मतलब ये रहता है कि बीमारी जो है हम उसको कैसे ट्रीट, मतलब ट्रीट करने के बाद दोबारा होने की क्षमता, ये जो होता है, तो वो साइज़ के हिसाब से हम लोग जनरली मानते हैं। अगर छोटी बीमारी है लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो हम स्टेज वन में मानते हैं, और उसको हम सिर्फ सर्जरी करके, मतलब हम जिन जो बीमारी हमें दिख रही है उसके आसपास का 1 सेंटीमीटर भाग हम निकालते हैं और हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब जो हमने निकाला है उसको हम लोग जनरली टेस्ट करते हैं। तो स्टेजिंग जो बेसिकली होती है वो हमारी जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आती है उस बेसिस पे होती है। अब मान लीजिए कई बार जो स्टेज वन लग रहा है वो हमारे बेस्ड ऑन बायोप्सी रिपोर्ट स्टेज टू भी हो जाता है, तो वो केसेस में कभी कभी हमको मेन सर्जरी से साथ साथ एक और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है, मोस्टली रेडिएशन करते हैं। उसके बाद 3-4 जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, दोनों ही कंडीशन, मतलब जैसे जो लेटर स्टेजेस होते हैं उसमें सर्जरी प्लस रेडिएशन का प्रावधान है, और जब तक हम ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब तक हम बीमारी से आगे नहीं निकल सकते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेजेस हैं, और स्टेज फोर में भी अगर आपकी बीमारी डिटेक्ट हो रही है तो भी 50-60% लोग उसमें ठीक होते हैं। तो हमें ये सोचना है हम उस 50-60 के लिए हैं जिन्हें ट्रीटमेंट पूरा अगर हम करेंगे तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं।
1: जी जी जी। और डॉक्टर रश्मि जी, किसी व्यक्ति को कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसका विपरीत प्रभाव तो स्वास्थ्य पर पड़ता ही है, लेकिन उस व्यक्ति की जो इकोनॉमिकली और सोशली जो कंडीशन होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है?
0: ये बहुत ही एक्चुअली होलिस्टिक वे में अगर हम सोचें तो ये एक आदमी को कैंसर होता है जो एक मोस्टली वो ब्रेड अर्नर रहता है अपने परिवार का, दूसरा आदमी उसे लेके आता है। कई बार यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है कि मोस्टली मैंने देखा है कि परिवार बहुत आपस में बंधे रहते हैं, लेकिन होता क्या है वो भी अपना परिवार अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। तो भले ही एक आदमी को कैंसर हुआ है वो तो काम नहीं कर पा रहा है 3-4 महीने के लिए जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन एक आदमी दूसरा भी है जो अपना काम छोड़ के आ रहा है, तो ये दो फैमिली एक तरह से अफेक्ट हो रही है। हमारे पास सुविधा है, सरकार ने बहुत अच्छी आयुष्मान योजना इस तरह की सुविधाएं दी हुई है जिससे कि हम मदद कर पाते हैं, और बहुत सारे फंड्स भी होते हैं बड़े, कुछ अस्पतालों में फ़ंड की अवेलेबिलिटी भी रहती है। जैसे हमारे अरुण कुरकुरे फंड है जो कि इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है, अगर हम उन योजनाओं का हेल्प लें तो हमें खर्चा वहाँ पे कम हो जाता है, लेकिन जनरली एक मोटा मोटी 12,000 से 15,000 रुपये का खर्च एक आदमी को लगता है जब हम जांच कराने जाते हैं, प्लस आना जाना, और ये 3 महीने का जो समय रहता है, सर्जरी हुई है, रेडिएशन हुआ है, 1.5 महीने के करीब रेडिएशन चलता है, तो आप काम छोड़ के जब बैठे हो तो फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी जो हम कहते हैं कि वो बढ़ती जाती है, काम नहीं हो रहा है प्लस खर्चा हो रहा है। तो मैंने ये देखा है कि है ना, इसीलिए हमें तंबाकू से दूर रहना है, ये एक ऐसा चीज है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंटेबल है अगर हम तंबाकू से दूर रहें। भले ही कुछ बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि तंबाकू हम नहीं खाते थे लेकिन हमें हो गया, लेकिन वो परसेंटेज कम है। तंबाकू अगर आप सेवन कर रहे हो तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो तंबाकू आपको, आप पहले जीवन भर तंबाकू पे खर्च करते हो, फिर उसकी इलाज के लिए खर्च करते हो, आपने जितना कमाया रहता है आप अपने ऊपर खर्च करके चले जाते हो, तो जो डिपेंडेंट फैमिली है उसके पास कुछ नहीं बचता है।
1: जी। और डॉक्टर रश्मि जी, कई ऐसे भी हमने देखा है व्यक्ति होते हैं जो तंबाकू को छोड़ना चाहते हैं, और चूंकि उनकी हैबिट हो जाती है तो उसे छोड़ पाना उनके लिए कठिन होता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए चिकित्सा में इनको जो है एडिक्शन से मुक्त करा सके?
0: चिकित्सा में एक्चुअली टोबैको सिजेशन एक बहुत बड़ा मुहिम है जो कि सरकार चला रही है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम्स चलते हैं, और ये अगर किसी में इच्छा शक्ति आ गई है तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि आप इस तरह के जो क्लिनिक्स होते हैं टोबैको सिजेशन क्लिनिक्स, ये मोस्टली हर सरकारी अस्पताल में आपको, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ आपको गाइडेड वे में सिखाया जाता है, जिसमें कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के अलावा आपको कब, आपका डिपेंडिंग कि आपको कितनी आदत है, पहले वो असेस किया जाता है, बेस्ड ऑन दैट फिर हमें आपको क्या दवाई की आवश्यकता है, या आप सिर्फ ट्रेनिंग से, मतलब आपके विचारों की ट्रेनिंग से, आपकी फिजिकल ट्रेनिंग,

0: से क्या हम इसको कम कर सकते हैं। ये असेसमेंट उस क्लिनिक में होता है जिन केसेस में हमें लगता है कि ये नहीं हो पा रहा है, आप भी चाह रहे हो हम भी चाह रहे हैं लेकिन डिपेंडेंसी इतनी है। उन केसेस में कभी कभी निकोटीन के पैचेस होते हैं, निकोटीन के च्युइंगम्स आते हैं, बट ये ऑफ द लेबल नहीं लेना है, मतलब बिना डॉक्टर की सलाह के आपको इनको नहीं लेना है। पूरा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के थ्रू अगर हम जाते हैं टोबैको सीजेशन के, तो हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। मैंने कई लोगों को स्वयं अपने क्लिनिक में बैठ के काउंसलिंग करके हमने टोबैको की जो आदत है उससे मुक्ति दिलाई है। तो हमें इन योजनाओं का हेल्प लेना चाहिए और उसके बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम मान लीजिए क्लिनिक तक नहीं जाते हैं तो नेशनल क्विटलाइन नंबर बोलते हैं, टोबैको क्विटलाइन नंबर है 1800112356। तो वो एक नंबर है जिसपे आप खुद फ़ोन करके उनसे आप ले सकते हैं। प्लस आजकल जो नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मोबाइल में भी आपको ऐप्स मिल गए हैं जो कि रिवॉर्ड और इस तरह की चीज़ें, छोटे गेमिंग फॉर्म जैसा रहता है, अगर आप उनका यूज़ करें तो आपको इसमें मदद हो सकती है।
1: जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी थी डॉक्टर रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में चले उससे पहले आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे?
0: मेरा आप सभी श्रोताओं से सिर्फ यही निवेदन है कि तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसकी लत आपको जीवन में सक्सेस की तरफ नहीं ले जा सकती, उसके दुष्प्रभाव आपको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, आप मेंटली उसके गुलाम एक तो हो जाते हैं, तो आपका जो डिपेंडेंसी है वो आपको आपके 100% परफॉर्मेंस में हेल्प नहीं करता। हमारी जो यंग जनता है जिसका जो हम देश निर्माण में हेल्प कर सकती है वो फंस जाती है तंबाकू के इस जाल में, फिर हम बीमार पड़ते हैं, जो हमारा प्रोडक्टिव ईयर है वो हम अपने इलाज में बिता देते हैं, हम जो अपने परिवार के ग्रोथ और अपने स्वयं के ग्रोथ को जो टाइम देना चाहिए, या अपने जो भी आपका के जो पैसे हैं आप जो भी कमा रहे हो वो इन सारी चीज़ों में ख़त्म हो जाता है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि हम सब मिल के एक दूसरे की मदद करके इससे हम दूर होने की कोशिश करें, और जहाँ भी ज़रूरत हो इतने सारे सेंटर्स है, सरकार भी रेडी है हेल्प करने के लिए, आप लोग आइए। और अगर आप किसी नशे की आदत में हैं तो उसको छोड़ा जा सकता है, बस एक विल पावर चाहिए।
1: ये बहुत अच्छी बात है। और श्रोताओं, वर्ल्ड नो टोबैको डे पर आज डॉक्टर रश्मि राय जी ने जो भी बातें बताई हैं इनका अनुसरण करना काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि धीरे धीरे भारत में तंबाकू से होने वाले कैंसर की संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। और जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हों और वो तंबाकू या कोई भी नशीले पदार्थों का एडिक्शन हो, वो आज ही तंबाकू छोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि तंबाकू से होने वाली बीमारी सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं पूरे परिवार के लिए नुकसानदेह होती है। और श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर रश्मि राय जी से, जिन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे और साथ ही तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों, उनके लक्षण और इलाज के बारे में बातें बताई। तो डॉक्टर रश्मि जी, कार्यक्रम में आ पाएं और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रही थी विश्व तंबाकू निषेध दिवस और तंबाकू से संबंधित रोगों के लक्षण और उपचार पर डॉक्टर रश्मि राय, ओरल कैंसर विशेषज्ञ, बालको मेडिकल सेंटर रायपुर से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता थे रमा शंकर। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9 बजे हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। प्रस्तुत है कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें सुनिए ग्रीष्म लहर और मानसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की है।
1: श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला।

0: इन दिनों छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। ग्रीष्म लहर भी अनेक स्थानों पर चल रही है। इस बीच राहत की बात यह है कि मानसून के करीब 1 जून के आसपास केरल में दस्तक देने की संभावना है। श्रोताओं, ग्रीष्म लहर और मानसून जैसे विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री वाणी। डॉक्टर गायत्री मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर गायत्री, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: नमस्कार
0: मैडम। हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस समय छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक हिस्सों में ग्रीष्म लहर चल रही है, तो हमारे श्रोताओं को ये बताइए आसान भाषा में कि ये जो ग्रीष्म लहर है वो किन स्थितियों में बनती है, चलती है, और किसी स्थान पर कितना तापमान होना चाहिए जब ग्रीष्म लहर बनने की स्थितियां पैदा होती हैं?
1: कोई भी स्थान पे अधिकतम तापमान अगर 45 से ऊपर है
0: जी,
1: अथवा 40 डिग्री से ऊपर होने के बाद
0: जी,
1: सामान्य से अगर 4.5 डिग्री से अधिक है
0: जी,
1: तब ग्रीष्म लहर का स्थिति हम डिक्लेयर करते हैं
0: जी। इसमें जैसे जो है वो आप बताते हैं, पूर्वानुमान देते हैं मौसम विभाग का, हर रोज मिलता है मीडिया को, तो वो पूर्वानुमान किस आधार पर आप देते हैं कि हाँ भाई इन इन स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी जाती है?
1: अभी ये पूर्वानुमान जो है
0: जी,
1: ऑब्जर्वेशंस के साथ न्यूमेरिकल मॉडल्स में इनपुट देके हमको एक पूर्वानुमान आता है कि अभी आगामी दिनों में तापमान जो है सामान्य से अधिक होने वाला है और कितना अधिक होने वाला है। जब भी हम 2 दिन से ज्यादा अगर तापमान जो है 45 से ज्यादा नहीं है तो 40 डिग्री से अधिक होके सामान्य से भी 4.5 डिग्री से अधिक है
0: जी,
1: तब हम ये स्टेशन को हीट वेव डिक्लेयर करते हैं
0: जी। जैसे मौसम विभाग हम देखते हैं कि येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करता है, तो ये जो अलर्ट्स होते हैं इनका आधार क्या होता है और ये तीनों अलर्ट्स के बीच में क्या अंतर है, क्या परिस्थितियां होती हैं जब येलो को या फिर ऑरेंज को या फिर रेड अलर्ट को जारी किया जाता है?
1: कोई भी मौसम का फिनोमिना हो, ग्रीष्म लहर हो या मेघगर्जन का एक्टिविटी हो या बाढ़ का स्थिति पे हो, कुछ भी स्थिति पे भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर से येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी करता है
0: जी।
1: येलो अलर्ट का मतलब ये होता है कि निगरानी रखे, मतलब जागरूक रहे
0: जी।
1: इसका मतलब है आपका आसपास एरिया में ये आने का चांसेस है, ये थोड़ा लो इंटेंसिटी का फिनोमिना हो सकता है। अभी ग्रीष्म लहर के ही बात किया तो आपका जिलों में अगर येलो अलर्ट जारी किया इसका मतलब होता है 1-2 स्थानों पर आपको तापमान जो है सामान्य से अधिक होने का संभावना है
0: जी।
1: यदि ऑरेंज अलर्ट जारी किया मतलब चेतावनी ऑलरेडी जारी कर चुका है तो कोई भी कार्यवाही लेने के लिए आप तैयार रहिए, इसका मतलब ऑरेंज अलर्ट का वो होता है। जब रेड अलर्ट जारी करता है इसका मतलब होता है कि बहुत सतर्क रहे और कार्यवाही तुरंत कराए।
0: ये कार्रवाई से आपका आशय क्या है कि मतलब कार्रवाई क्या करें?
1: अभी ये अलर्ट जो है वो किस फिनोमिना के लिए हमने दिया गया है इसका ऊपर है। अभी ग्रीष्म लहर है, ग्रीष्म लहर के अलग अलग ये होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 12 बजे से 4 बजे हम बोलते हैं कि बाहर ना निकले। अगर रेड अलर्ट जारी किया है आपको 100% ये फॉलो करना ये होता है। अदरवाइज
0: अच्छा।
1: अगर मेघ गर्जन का एक्टिविटी और लाइटनिंग का एक्टिविटी दिया आपको इंडोर्स जाना पड़ता है, नहीं है तो खुला मैदान पर है तो उकड़ू बैठना पड़ता है। अदरवाइज फ्लड कंडीशन है, भारी वर्ष का चेतावनी है, रेड अलर्ट है, तो आपको थोड़ा सुरक्षित जगह पे जाना होता है। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर फिनोमिना के लिए आपको अलग अलग कार्यवाही लेना पड़ता है
0: जी। मैडम, जो ग्रीष्म लहर जो चलती है या जिसे हम आम भाषा में लू भी कहते हैं, तो इस दौरान लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए आमतौर पर, और साथ ही प्रशासन को भी कभी कभी आप कहती हैं कि ये उपाय या इंतजाम या व्यवस्था की जाए, ये इसके बारे में बताएं।
1: सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ग्रीष्म लहर का चेतावनी इश्यू करता है, येलो अलर्ट हो या ऑरेंज अलर्ट हो या रेड अलर्ट हो
0: जी,
1: जितना हो सके 12 बजे से लेके 4 बजे के बीच में अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, और काफी ज्यादा पानी या तरल पदार्थ जो है वो लेना चाहिए ताकि बॉडी डिहाइड्रेटेड ना रहे
0: जी।
1: इसका अलावा चेतावनी जब भारत मौसम विज्ञान विभाग का तौर हम जारी करते हैं, ये राहत आयुक्त को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, ये सारा स्टेक होल्डर्स को हम जारी करते हैं
0: जी।
1: जैसा ही हम जारी करते हैं सूचना मिलते ही राज्य सरकार और प्रशासन पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एडवाइजरीज जारी करते जाते हैं, एंड ये एडवाइजरीज के साथ भी कुछ एक्शंस जैसा सभी कॉमन प्लेसेस में पीने के पानी की व्यवस्था करना या क्लोज्ड शेल्टर्स करना। अभी हम देखते हैं कि ट्रैफिक

0: सिग्नल्स पर ग्रीन शेड डालना, ये सब ऑलरेडी प्रशासन जो है हमारा चेतावनी का आधार पर करते जाता है।
1: मैडम, ये देखने आता है कि जैसे अप्रैल, मई, जून, ये सब जो है वो आमतौर पर गर्मी के महीने होते हैं, भीषण गर्मी का दौर रहता है, लेकिन बीच बीच में एकदम से मौसम बदलता है, मेघ गर्जन की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, हल्की बारिश भी होती है, इसकी क्या वजह होती है?
0: ये मार्च अप्रैल मई का सीज़न जो है, ये सीज़न को हम प्री मानसून सीज़न कहते हैं।
1: अच्छा।
0: ये हमारा प्रदेश में मानसून होता है जून से लेकर सितंबर तक। और ये प्री मानसून सीज़न में जब भी उत्तर पश्चिमी और के साइड से ड्राई विंड्स जो है, शुष्क हवा जो आता है, और दक्षिण पूर्वी का ओर से नमी युक्त हवा जो बे ऑफ बंगाल से आता है, ये दोनों का इंट्रैक्शन की वजह से ये मेघ गर्जन का एक्टिविटी पूरा प्रदेश में होता है। ये छत्तीसगढ़ में लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कॉमन फिनोमिना है ये सीजन में होना।
1: अब गर्मी की बातें काफी हो गई, अब मानसून की बात करते हैं, लोगों को थोड़ी सी राहत मिले। तो भारत में यदि हम मानसून की बात करें तो छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंचता है, तो कितनी तरह के मानसून का प्रभाव हमारे देश भारत में पड़ता है, और छत्तीसगढ़ में कौन सा मानसून प्रभावी होता है और क्यों, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
0: भारत में मुख्यतः दो प्रकार के मानसून होते हैं
1: जी।
0: एक तो दक्षिण पश्चिमी मानसून जो जून से लेकर सितंबर तक होती है, और दूसरा मानसून है उत्तर पूर्वी मानसून जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक होती है। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है मुख्य रूप से पश्चिमी का और मध्य भारत, उत्तर भारत और पूर्वी भारत को ज़्यादातर वर्षा देती है, और ये नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जो है मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर तक ये दक्षिण पूर्वी स्टेट से जैसा आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु पांडिचेरी तक ये पूरा रीजन में ज़्यादातर वर्षा देती है।
1: अच्छा।
0: छत्तीसगढ़ का बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 80% का वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून में मिलती है
1: जी। एक बात और है मैडम कि हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि हम मानसून तो हमेशा सुनते हैं कि मानसून आ गया, इसके बनने की क्या स्थितियाँ होती हैं और आगे बढ़ने की भी क्या स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि कभी हम सुनते हैं कि मानसून ने दस्तक देगी लेकिन वो अटक गया है, मतलब एक आम बोलचाल की भाषा में कह रहे हैं, तो मानसून कैसे बनता है, उसका आगमन जब होता है कैसे होता है और फिर वो आगे बढ़ता है तो क्या स्थितियां बनती है, थोड़ा सा आसान भाषा में हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: नॉर्मल तौर पर पूरा भारत में सबसे पहले मानसून जो है केरल में एंट्री करती है
1: जी।
0: एंट्री का नॉर्मल डेट है, सामान्य तिथि है 1 जून है। जैसा ही 1 जून में केरल का ऊपर ऑनसेट होती है, लगभग जुलाई फर्स्ट वीक तक पूरा भारत कवर कर लेती है। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बस्तर संभाग में इसका एंट्री लगभग जून 12 का आसपास होते हैं, वो भी सामान्य तिथि है। ये सामान्य तिथि से अंतर ग्लोबल कंडीशंस का ऊपर भी डिपेंड करते हैं। एंड इस बार अगर मानसून की बात करें तो भारत में अभी केरल में भी मानसून ऑनसेट डिक्लेयर करने के लिए आपको विंड का दिशा जो है वो साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिमी का ओर होना, नमी का ये देखना, एंड एक क्राइटेरिया होता है कि स्टेशंस इतना नंबर ऑफ स्टेशंस में इससे ज्यादा बारिश हुआ, कंटिन्यूअस 5 दिन हुआ तो इसका मध्य तिथि जो है वो ऑनसेट डिक्लेयर करता है। इसका अलावा सोलर रेडिएशन भी हम देखते हैं, ऐसा कुछ कुछ मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं जो क्राइटेरिया फॉर्म करते हैं ये डिक्लेयर करने के लिए। जैसे ही मानसून का ऑनसेट होता है केरल में उसके बाद आसपास स्टेशंस को देखते हुए इसका प्रोग्रेस हम धीरे धीरे मानसून का नॉर्दर्न लिमिट करके बोलते हैं। जैसा हमने बोला कि पूरा भारत कवर करने में लगभग आपको 1 महीना लग जाएगा।
1: अच्छा, इस साल मानसून के कब तक दस्तक देने की संभावना है?
0: अभी जैसा बोला मैंने कि मानसून का ऑनसेट जो है सामान्य तिथि जो केरला का ऊपर 1 जून है, बट आज का स्थिति में देखा है तो आगामी 2 से 3 दिन तक लक्षद्वीप एरिया तक पहुंचने की तो संभावना है, और उसके पश्चात ही हम बोल पाएंगे कि केरला के आने के पश्चात इसका प्रोग्रेशन और वर्षा का गतिविधि देखकर ही छत्तीसगढ़ के ऊपर कब तक आने की चांसेस है वो हम बता पाएंगे
1: जी। एक बात और है मैडम कि इस वर्ष की यदि बात करें, वर्ष 2026 की, तो कहा जा रहा है कि मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है, और इसकी वजह जो है वो सुपर अल नीनो इफेक्ट जो प्रभाव है उसको इसका कारण बताया जा रहा है। तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि अल नीनो जो प्रभाव है या इफेक्ट है वो क्या होता है, और अल नीनो तथा सुपर अल नीनो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है?
0: सबसे पहले एल नीनो क्या है वो डिस्कस करते हैं। एल नीनो जो है एक एटमॉस्फेयर एंड ओशन का, ये दोनों का संबंधित एक पैटर्न है। इसका मेन

0: क्षेत्र जो है प्रशांत महासागर में पूर्वी और मध्य क्षेत्र में अगर समुद्र का सतह टेम्परेचर जो है वो सामान्य से अधिक रहा, यूजुअली ये फिनोमिना जो है 2 साल से लेके 7 साल में एक बार आने की संभावना होता है।
1: अच्छा।
0: जब भी वहाँ तापमान जो है सामान्य से अधिक रहते हैं पूरा ग्लोबल वेदर पैटर्न जो है वो सब में आपको प्रभाव पड़ने की चांसेस है, जिसमें हमारा मॉनसून भी, वो भी मुख्य रूप से हमारा दक्षिण पश्चिम मॉनसून भी इफेक्ट होती है।
1: जी।
0: और इस साल हमारा पूर्वानुमान है, अभी ये एलिनो जो है न्यूट्रल कंडीशन में है, एनसो कंडीशन न्यूट्रल में है, बट भारत मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि लगभग जुलाई और अगस्त मिड मॉनसून तक एलिनो कंडीशंस बनने की चांस है, जिसका वजह से इस बार पूरा मॉनसून का भारत देश में सामान्य से कम रहने की चांस है, वो भी लगभग लॉन्ग टर्म एवरेज दीर्घकालिक जो मॉनसून रेनफॉल होता है वो मॉनसून रेनफॉल का लगभग 92% होने की चांस है, जो बिलो नॉर्मल है।
1: जी, एक बात और है, जैसे आपने कहा कि एलिनो के बारे में तो आपने बताया, लेकिन एलिनो सुपर एलिनो ये दोनों के बीच में क्या अंतर है?
0: सुपर एलिनो जो है कोई साइंटिफिकली प्रूवन टर्म नहीं है।
1: ओके।
0: और आमतौर पर ऐसा इंटेंसिटी, मतलब जितना तीव्रता से एलिनो है उसके लिए आमतौर से ये यूज करते जा रहे, लेकिन कोई साइंटिफिकली प्रूवन शब्द ये नहीं है। अभी साइंटिफिकली देखा है तो एलिनो ही एक शब्द है जो हम बात करते हैं।
1: यदि हम पिछले वर्षों की बात करें तो भारत में एलिनो का जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कब कब देखने को मिला है? कुछ ऐसे आंकड़े हैं क्या आपके पास में?
0: भारत देश में लगभग 1950 से लेके 2025 तक अगर देखा है तो लगभग 16 इवेंट्स हुआ है एलिनो का, जिसमें 7 इवेंट्स है जहां एलिनो में ये दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का रेनफॉल में कमी देखने के लिए मिले थे। वन टू वन कोरिलेशन एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन ज्यादातर केसेस में ये दक्षिण पश्चिमी मॉनसून का रेनफॉल में कमी आने की संभावना है। जैसा मैंने बताया 16 इवेंट्स में 7 इवेंट्स जैसा है जहां कम है, वो भी पूरा भारत में कम होने की तो संभावना एग्जैक्टली नहीं हो सकता। अभी लेटेस्ट इवेंट देखा है तो आपको 2016 में भी एक इवेंट आए थे एलिनो इवेंट, तब कुछ क्षेत्र में मॉनसून का रेनफॉल सामान्य रहा, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसा उत्तर और उत्तर पश्चिमी का भारत में सामान्य से काफी कम रहा।
1: एक आखिरी सवाल के समय के साथ साथ हमने देखा है हाल के वर्षों में जो मौसम विभाग है उन्होंने लोगों को सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए, उन तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए मीडिया के अलावा भी जो आधुनिक संचार के जो साधन हैं SMS के माध्यम से या इसका भी जो है उसने जो है वो उपयोग करना शुरू किया है, थोड़ा ये भी बताएं, क्योंकि हम देखते हैं कई बार SMS आता है कि नहीं अलर्ट रहें और पर्टिकुलर रीजन को फोकस करके आप वहां पर देते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं।
0: भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कोई भी चेतावनी है सबसे इम्पोर्टेंट सारा स्टेक होल्डर्स को, जैसा मैंने बताया राहत आयुक्त को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, यह सबको पहुंचने के पश्चात एक कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल करके एक ऐप होता है जिसमें हमने स्टेट अथॉरिटीज को इश्यू करने के पश्चात वो लोग लोकेशन बेस्ड पे आपका सिम प्रोवाइडर्स को, जैसा हमारा BSNL होता है, एयरटेल होता है, जियो होता है, वो सिम प्रोवाइडर्स के साथ कोलैबोरेट करके आपका एरिया में ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट आपको पुश करते हैं, जिसका वजह से आपका मोबाइल में वो अलर्ट आते हैं। इसका अलावा गवर्नमेंट का 2 इम्पॉर्टेंट ऐप्स है जो किसान भाई लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो दामिनी, ये दामिनी ऐप हमको जानकारी देती है कि आपके आसपास क्षेत्र में कहाँ मेघ गर्जन का एक्टिविटी हो रहे, कहाँ वज्रपात हो रहे हैं। अभी हमारा द्वारा ये कह जाता है कि आपको अगले 24 घंटों में आपका क्षेत्र में सिवियर थंडरस्टॉर्म्स, तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। हम पूरा 24 घंटा काम कम नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐप डाउनलोड करने से हमको अगले 1-2 घंटे में आपका यहाँ अगर कोई वज्रपात हो इसका आपको जानकारी जो है वो ऐप से मिल जाती है। इसका अलावा मेघदूत करके एक ऐप जो है वो सिर्फ कृषि संबंधी जानकारी के लिए बना हुआ है, जो हमारा किसान भाई लोग के लिए काफी यूजफुल होगा। इसका अलावा मौसम ऐप जो है, आप लोकेशन इसमें एनेबल करने से आपका जहां लोकेशन है वो लोकेशन पर आपको कितना तापमान है, कौन सा चेतावनी जारी किया है, ये सब आपको मिल जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री मैडम, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें दी हैं और निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगी। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर गायत्री वाणी, जो मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर में वैज्ञानिक है, उनके साथ हमारी ये बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर

0: हाजिर होंगे। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आपने सुना ग्रीष्म लहर और मानसून पर रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर गायत्री वाणी से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुति विकल्प रंजन शुक्ला की थी। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

श्रोताओं, टैम्बोरिन यानी खंजरी एक डफली जैसा वाद्य यंत्र होता है जिसके किनारे पर छोटी छोटी धातु की प्लेट्स लगी होती हैं जो हिलने पर खनकती है। तो चलिए आज कुछ ऐसे ही गीत सुनें जिसमें टैम्बोरिन यानी खंजरी है। कार्यक्रम है चित्रपट संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म दिल देके देखो का गीत, गीत मजरूह सुल्तानपुरी का था और संगीत था उषा खन्ना का।

0: मुकेश की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म मेरा नाम जोकर का गीत। गीत हसरत जयपुरी का था और संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है।
2: अरे?

0: डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
1: हेलो मम्मा,
2: आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: लीजिए अब सुनिए फिल्म कालिया का गीत। आवाज किशोर कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत राहुल देवबर्मन का।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: अभी आपने सुना फिल्म सत्ते पे सत्ता का गीत, आवाज़ें थीं किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, नैनेट और सपन चक्रवर्ती की। गीत गुलशन बावरा का था और संगीत था राहुल देव बर्मन का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं सीताराम साहू और साथी। इनके स्वर में पहले सुनिए ये सोहर गीत।

स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों

0: संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेब्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेब्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं सीताराम साहू और साथी। लीजिए अब सुनिए रमेश यादव और राधिका साहू के स्वर में कर्मा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे सीताराम साहू और साथी। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी में कर रहा है संगोष्ठी का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देशभर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर

0: पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6,00,000 रुपए का निशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। ये सुविधा उन NHM कर्मचारियों को मिलेगी जिनका वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि इस पहल से NHM के हजारों कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ मिलेगा और उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में VIP रोड पर स्थित श्री राम मंदिर के पास सुंदर सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। कार्यक्रम के दौरान कुल 4 सत्र होंगे, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। देशव्यापी जल संचय जन भागीदारी पहल के तहत रायपुर शहरी जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है। एक समय जलभराव और गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे शहर में अब वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। रायपुर नगर निगम ने तकनीकी विशेषज्ञों, बिल्डरों, संस्थानों और नागरिकों के सहयोग से ये पहल शुरू की है। इसके तहत वर्ष 2025 में शहर में लगभग 32,000 वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण संरचनाएं बनाई गई हैं। इनमें रिचार्ज कुएं, परकुलेशन पिट, इंजेक्शन वेल, रिचार्ज शाफ्ट और रूफ टॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसी संरचनाएं शामिल हैं। जशपुर में कृषि विभाग की टीम ने फरसाबहार विकासखंड के खारीबहार गांव में छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक खाद बरामद किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसे किसानों को DAP खाद बताकर बेचा जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDM राकेश पैकरा ने मौके पर पहुंचकर मकान को सील कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित और हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब आज राजधानी में कर रहा है संगोष्ठी का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम नई फिल्मों से।

अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए श्रोताओं। आगामी मंगलवार 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा खेती की लागत घटाएं, लाभ बढ़ाएं, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफ्को रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 400-3482, 400-3483 और 400-3484। रायपुर का STD कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज़ें थीं शेखर राव जियानी, सलीम मर्चेंट और नीति मोहन की। गीत था अनविता दत्त का, संगीत था विशाल शेखर का। अगले गीत से पहले एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, आगामी मंगलवार 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का विषय होगा खेती की लागत घटाएं, लाभ बढ़ाएं, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 4003482, 4003483 और 4003484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही संध्या 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फ़ोन कॉल का इंतज़ार रहेगा। सूचना समाप्त हुई।

0: कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म दीवाना का गीत। गीतकार थे समीर और संगीतकार थे नदीम श्रवण।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने सुना फिल्म आशिकी का गीत, गीत समीर का था, संगीत था नदीम श्रवण का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का

साक्षी है सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

लीजिए अब सुनिए फिल्म खिलाड़ी का गीत, आवाजें अभिजीत और अलका याग्निक की, गीत अनवर सागर का, संगीत जतिन ललित का।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर। कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
1: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
2: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
0: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
3: गीत मेरे होठों को
0: कभी कोई किस्सा याद आता है।
4: यादें
0: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
5: मुझे कुछ कहना है,
6: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
7: सुनिए।

लीजिए अब सुनिए फिल्म सड़क का गीत, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा है। म्यांमार के राष्ट्रपति गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, भारत सरकार ने excise duty कम की, so these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies को workout करने के लिए कहा है कि LPG का जो reserve है, that should be minimum 30 days with them, and they are working on it. And similarly for crude also, we are working.
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा है कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोम कैरोस हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है। फैसले में कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है। उसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण

0: जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि उनके लिए ये अत्यंत सम्मान की बात है। हांगकांग में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक 8 पदक जीत लिए हैं। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, तेलंगाना में लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सराईपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: अभी आपने सुना फिल्म 16 साल का नगमा, आवाज़ थी हेमंत कुमार की, गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत था सचिन देव बर्मन का।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में अभी आपने सुना फिल्म तलाश का गीत। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे सचिन देवपरमन।

लीजिए अब सुनिए फिल्म गाइड का गीत, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, गीत शैलेंद्र का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म वक्त का गीत। गीत साहिल उद्यानवी का था और संगीत था रवि का। लीजिए अब सुनिए फिल्म लव इन टोक्यो का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, गीत हसरत जयपुरी का, संगीत शंकर जयकिशन का।

पे जो गुजरे कैसे बताऊं, आ जा रे आ जरा आ लहरकिया जरा, आंखों से दिल में समा आ जा रे आ।

0: आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा आ, लहरा के आ जरा आ।
1: लीजिए अब सुनिए फिल्म किस्मत का गीत, आवाज़ महेंद्र कपूर की, गीत SH बिहारी का, संगीत OP नैयर का।

यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:40 हुए हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें सुनिए सरला भिड़े का गाया राग भैरवी में दादरा, बोल हैं मितवा माने नहीं। आपके साथ संगतकार हैं तबले पर कन्हैया लाल भट्ट और सारंगी पर आशिक अली खां।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सरला भिड़े का गाया राग भैरवी में दादरा, बोल थे डारो ना डारो मोह पे रंग। आपके साथ संगतकार थे तबले पर कन्हैया लाल भट्ट और सारंगी पर आशिक अली खां। यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

0: वाली केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक पहुंचकर आंकड़े अपडेट किए जाएंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी 2027 से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का पर्याप्त भंडार है और सभी शोधन संयंत्र अधिकतम स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज दूसरा दिन है। महोत्सव का उद्घाटन कल राज्यपाल रमन डेका ने किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाने और आम के वैल्यू एडिशन पर ध्यान देने का आह्वान किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में आम की खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोत्सव में देश भर की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए हैं। ये महोत्सव कल रविवार तक चलेगा। प्रदेश में गर्मी और उमस का सिलसिला जारी है। प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां बढ़ने की संभावना जताई है। वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में मेघ गर्जन और बदली बारिश की वजह से तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक कमी आई है। कोंडागांव जिले में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी में 1, बड़े सिलाटी में 3 और बड़े कनेरा में 1 मकान को नुकसान पहुंचा है। धनपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 1 मवेशी की मौत हो गई। आंधी के कारण कई पेड़ उखड़ गए तथा बिजली के खंभे और तार क्षतिग्रस्त होने से बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई। राजस्व विभाग प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन कर रहा है। रायपुर रेल मंडल और स्थानीय प्रशासन ने IRCTC और रेलवे के लोगों का दुरुपयोग कर कम क्षमता वाले चाय के पेपर कप बनाने वाली एक फर्म पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान गुढ़ियारी स्थित एक फर्म में रेलवे के लोगों वाले तय क्षमता से कम आकार के चाय के कप बनाए जाते पाए गए। टीम ने मौके से ऐसे कपों से भरे 14 बोरे जब्त किए हैं। रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने कहा है कि यात्रियों को तय मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण खाद्य और पेय सामग्री उपलब्ध कराना जरूरी है। किसी भी तरह की अनियमितता, फर्जी ब्रांडिंग या लोगों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का कल राज्यपाल ने किया शुभारंभ। और कोंडागांव सहित दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में तेज आंधी और बारिश के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडिया व्यू 305.81 मीटर अर्थात 981

किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी संग्रहालय से गाथा झरोके से का भाग पहला। ये भाग केंद्रित है विलुप्त होती लोक गाथा कुंवर रसाल पर।

0: वो लंबी गीत कथाएं जिन्हें लोकमानस में वाचिक परंपरा के द्वारा सुनी जाती है, यही गीत कथाएं लोक गाथा कहलाती हैं। ये अनगढ़ होती है किंतु इनमें लोक जीवन का सौंदर्य होता है। ये शिष्ट नहीं सहज सरल होती है, इसलिए इनमें मन प्राण का माधुर्य होता है। लोक जीवन की अस्मिता, लोक जीवन की तेजस्विता, सब कुछ तो लोक गाथाओं में समाहित होती है, इसलिए ये लोक में रची बसी होती हैं। लोक गाथा लोक जीवन की ज्योति है, लोक गाथा अंतस का मोती है।
1: लोक तो मोतियों का ही समाहार है। लोक का आंचल अनेक मोतियों से भरा पड़ा है। इनमें कुछ ज्यादा प्रभावपूर्ण और चमकदार हैं, तो कुछ धूमिल और मलिन। समय की गति सबको बदल देती है। समय बड़ा गतिमान है। समय की गति का प्रभाव मनोरंजन के साधनों पर भी पड़ा है। इससे हमारी कुछ लोक गाथाएं भी दुष्प्रभावित हुई हैं और समयगत स्वीकृति के अभाव में मलिन और धुंधली हुई हैं। बहुत सारी लोक गाथाएं अपना अस्तित्व खो रही हैं। क्यों? एक प्रश्न हमारे सामने है। इस प्रश्न के समाधान का मार्ग तलाशें और सुने विलुप्त होती लोक गाथा कुंवर रसालू।

0: चक्रवर्ती राजा शंख निसंतान थे, बहुत दान पुण्य किया पर कोई लाभ नहीं। राजा अपनी रानी से कहते हैं, क्या करें रानी, हमारे जीवन में संतान का सुख नहीं लिखा है। इस पर रानी की प्रेरणा से वे गुरु गोरखनाथ की तपस्या करते हैं। फलतः गुरु गोरखनाथ उन्हें एक फल देते हैं। राजा फल रानी को दे देते हैं। रानी आधा फल दीवान की पत्नी को दे देती है, क्योंकि वो भी संतानहीन थी। फल को आधा आधा रानी और दीवान की पत्नियों ने खा लिया और फल के छिड़के को घोड़ी ने। ईश्वर की कृपा से रानी से लड़का, दीवान की पत्नी से लड़की और घोड़ी से उड़ बछेरा घोड़ा पैदा हुआ।
1: राजा शंख का लड़का कुंवर रसालू और दीवान की लड़की साथ खेलते, समवयस्क थे। युवावस्था को प्राप्त होने पर दोनों के विवाह की योजना बनी, पर ये क्या, विवाह मंडप में ठीक 3.5 फेरे होते ही कुंवर रसालू न जाने क्यों रूठ कर उठ गया। उड़न बछेरा घोड़े पर बैठकर कहीं चला गया। दीवान की लड़की के शेष 3.5 फेरे कटार के साथ संपन्न किए गए। दूसरे दिन कुंवर रसालू दीवान के महल के करीब से गुजरता है। दीवान की लड़की उसे नफरत भरी नजरों से देखती है। इधर राजमहल में कुंवर रसालू के प्रवेश के लिए मनाही होती है।

0: राजमहल आने पर कुंवर रसालू देखता है कि सिंह दरवाजे पर लिखा है, कुंवर रसालू दाक दरुहन से शादी करके आए, अन्यथा उसे तोप से उड़ा दिया जाए, क्योंकि उसने विवाह मंडप से उठकर राजा का अपमान किया है। उसकी मां सिंह दरवाजे पर अपने बेटे कुंवर रसालू को प्रेम से निहारती खड़ी है। उधर तोप दरोगा तोप लिए खड़ा है कुंवर रसालू को उड़ाने के लिए।
1: मां की आंखों से झरझर झरने की तरह आंसू झर रहे हैं, लेकिन वो विवश है क्योंकि तोप दरोगा का निशाना कुंवर रसालू पर है। कुंवर रसालू वापस चला जाता है दाग दरुहन से ब्याह रचाने, घने जंगलों को पार करता हुआ समुद्र की ओर। समुद्र किनारे उसे कछुआ मिलता है। कछुआ सोचता है, ये कितना सुदर्शन जवान है, मैंने ऐसा सुंदर जवान कभी नहीं देखा, जिसके दांतों में हीरा, पांव में पद्म और माथे पर मुकुट है। अगर इसे कोई जंगली जानवर खा जाता तो बड़ी अनहोनी होती।
2: सुने भैया रागी, चकचीका चकचीका भाव तेरे भैया मोर, भाई भावा ता कुम्हरा वाके चारे रू।

0: कछुआ अपने आकार को खाट की भांति बढ़ाकर घोड़े सहित कुंवर रसालू को पीठ पर चढ़ाकर समुद्र पार करा देता है। वे दोनों अच्छमगढ़ के राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा की बेटी नवयौवना और सुंदरी है, जो अपने पति से प्यार ना कर अपने दीवान के लड़के से प्रेम करती है। दोपहर नदी में नहाती हुई राजकुमारी कुंवर रसालू के रूप सौंदर्य पर मोहित हो जाती है। कछुआ कुंवर रसालू को सावधान करता है तथा उसे राजकुमारी के चरित्र से अवगत कराता है।
1: कुंवर रसालू कछुआ के कथनानुसार राजकुमारी के पति की रक्षा करता है, क्योंकि राजकुमारी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करना चाहती थी। रात्रि में कुंवर रसालू राजकुमारी की नाक काट लेता है। सुबह जब राजदरबार में सबको हाजिर किया जाता है, तब राजकुमारी का दुष्चरित्र उजागर होता है। तब अच्छमगढ़ के राजा अपनी चरित्रहीन लड़की को फांसी पर लटकवा देते हैं।

0: अक्षमगढ़ से कुंवर रसालू सिरकट देश के राजा के राज में पहुंचता है। ईश्वरी प्रेरणा से और कछुआ की सलाह पर कुंवर रसालू 10-12 चूहों को अपने कपड़ों के भीतर रख लेता है। सिरकट अन्य राजाओं को दाख दरुहन के मायावी प्रभाव से पासा में पराजित कर उन्हें बंदी बना लेता है। सिरकट देश में कुंवर रसालू अपने पराक्रम और चतुराई से सिरकट को पराजित और प्रभावहीन कर देता है। दाख दरुहन जो पापनी और मायावी थी उन्हें भी घोड़े की पूंछ में बांधकर मार डालता है। तत्पश्चात सिरकट की छोटी कन्या को अपने साथ लेकर अपने घर की ओर लौटता है।
1: कुंवर रसालू प्रकृति प्रेमी है, उसे पशु पक्षियों से बड़ा प्यार है। वो सिरकट की कन्या से विवाह के लिए तैयारी करता है। कुंवर रसालू के बाग में केतकी, केवड़ा, चंपा, चमेली फूलों के साथ ही तीतर, कबूतर, मोर, हिरन आदि पशु पक्षी भी हैं। एक दिन कुंवर रसालू विवाह के लिए 5 गांठ हल्दी लेने जंगल चला जाता है और बरहा अर्थात जंगली सुअरों के झुंड से घिर जाता है। इधर मुगल पठान हिरन का पीछा करते हुए बाग में प्रवेश करता है। मुगल पठान सिरकट कन्या के रूप पर मोहित हो जाता है। कुंवर रसालू को अपना मित्र बताकर वहां रहने लगता है। सिरकट कन्या भी उससे दिल लगा बैठती है।
2: सुने रागी भैया, ऐसे जोगासन लगा है।
3: हाँ,

हर नाम मिर्गवा के खोजे मरे भैया भाई बैठे आसन हमारे हो पानी पिए

0: ताबूत तल देते हम कुंवर रसालू के नारी हा।
1: अरे
0: हमरे आये रंग महल है भाई मुगल पठान का

0: बे बड़े हनुमान भक्तम बड़े पाचो पांडु रथा के भगवान का आदिवासी।
1: सिरकट कन्या और मुगुल पठान रंगरेलियां मनाने लगे। मुगुल पठान हिरन खरगोश और अन्य पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। पिंजरे की मैना ने इसका विरोध किया तो सिरकट कन्या ने उसे जमीन पर पटक कर मार दिया। किसी तरह तोता सिरकट कन्या की झूठी तारीफ कर बच निकला। तोते ने जाकर कुंवर रसालू को सिरकट कन्या और मुगुल पठान के संबंधों की जानकारी दी। कुंवर रसालू बरहा से युद्ध करना छोड़ वो अपने बाग की ओर लौटा। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी।
2: कुंवर रसालू ने मुगुल पठान को धर दबोचा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। मुगुल पठान युद्ध में मारा गया। कुंवर रसालू सिरकट कन्या को भी मारना चाहता था किंतु उसने उसे प्राणदान दे दिया। इधर सिरकट कन्या ने ग्लानिवश सतखंडा महल से कूदकर अपनी जान दे दी। कुंवर रसालू ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, फिर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान किया, जहां वहां की राजकुमारी हिरौंदी की हीरे की अंगूठी को नहाते समय मेंढक ने निगल लिया था। कछुआ की चतुराई से हीरे की अंगूठी को कुंवर रसालू ने प्राप्त कर अंगूठी राजा को सौंप दी। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी बेटी के साथ कुंवर रसालू का विवाह कर राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कुंवर रसालू आनंद पूर्वक राजपाट करने लगा।
1: कुंवर रसालू एक विलुप्त होती लोक गाथा है। इसके गाने वाले अब शायद ही मिले। भले ही ये लोक गाथा विलुप्त हो गई है लेकिन इसमें लोक जीवन का चित्रण मिलता है। छत्तीसगढ़ में मैत्री संबंध पारिवारिक संबंधों से भी ज्यादा प्राणवान है। मैत्री संबंध जिसे यहाँ मितान कहा जाता है उसे प्राणपन से निभाया जाता है। कुंवर रसालू ने आत्मिक और मैत्री संबंधों की दुहाई देकर मैत्री भाव को कलंकित करने वाले खलनायक मुगुल पठान को मौत के घाट उतार दिया। मैत्री संबंधों की पवित्रता की रक्षा इस

0: गाथा का उद्देश्य है। मैत्री संबंधों की पवित्रता लोक जीवन की विशेषता है, मानवता के हित में, विश्व समुदाय के लिए विश्व शांति का सूत्र भी।
1: लोक गाथाएं किसी भी प्रांत की हों, किसी भी अंचल की हों, वे वाचिक परंपरा के द्वारा समस्त लोक में व्याप्त हो जाती हैं। अंचल विशेष में पहुंचकर स्थानीय रंग में रंग जाती हैं। लोक की यही विशेषता है, लोक सबको अपने में समाहित कर लेता है। लोक गाथाओं के पांव नहीं होते, फिर भी ये यात्राएं करती हैं। कुंवर रसालू लोक गाथा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुंवर रसालू का गायन छत्तीसगढ़ से परे अन्य प्रदेशों में भी होता है, अंतर केवल शैलियों का है। ये लोक का ही वैशिष्ट्य है और लोक की जीवंतता का प्रमाण भी। लोक सत्यम है, लोक शिवम है, लोक सुंदरम है, लोक धर्म है, लोक करम है, लोक मरम है। आओ करें अवगाहन लोक सरिता में, हम लोक आत्मा में बसे आनंद की अनुभूति है परम।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी संग्रहालय से गाथा झरोखे से का भाग एक। ये भाग केंद्रित था विलुप्त होती लोक गाथा कुंवर रसाल पर। प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से बोल रहे हैं। 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी मीत ये गीत।

आपकी मीत ये गीत इस कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ सीमा शर्मा। आप सभी को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आपको बेसब्री होगी अपने फरमाइशी गीतों को सुनने की, तो ये पहले गीत के लिए फरमाइशें भेजी है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री, रहमानिया चौक भाटापारा से मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नईम और मोहम्मद ताहिर, हटरी बाजार भाटापारा से ही मोहम्मद जावेद, एकता यदु, पूजा यदु और रेशमा निषाद, शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, अशरफ खान, अयाज खान और अल्फैज खान, बिल्हा से शेख नासिर और महसबीन बानो, चूड़ी लाइन भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी, रेहाना बेगम और मोहम्मद साजिद। इसके अलावा और श्रोता हैं बंगला मटिया से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, अंशुमाला और आशुतोष अंगारे, शिक्षक नगर दुर्ग से हैं राकेश वर्मा और सचिन और वाणी वर्मा, बाटापारा से हैं बचकमल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत प्रिकु, विनय ठाकुर, सोनाडी से हैं सुब्रत चौधरी, बुड़गन से हैं राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति, बेरडी से हैं राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सव्या सेरे। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा का लिखा यह गीत। संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने। फिल्म का नाम है बॉडीगार्ड।

अगले गीत के लिए फरमाइशें भेजी है हमारे इन साथियों ने। आप हैं कोटा रायपुर से योगिता वर्मा, रुचि खुशी और ओजल वर्मा, रामनगर रायपुर से राजेश अंबादे, शशिकला अंबादे और पूजा अंबादे, पावरहाउस भिलाई जामुल से विकास वर्मा, खुशी ग्रंथ संजय प्रधान और पूजा प्रधान, पांदा कोरबा से सम्मेलाल कुर्रे, सावित्री देवी कुर्रे, कटोरा तालाब रायपुर से मोहनलाल देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, सरक बुंदिया से गब्बर साहू और निर्मला देवी साहू, मुंगेली गोल बाजार खपरी कला छत्तीसगढ़ से संतोष कुमार सोनी, सुनीता खिलेश, नेहल पीहू, छोटी दानिश, दीक्षा और भूषण सोनी, अमरपुर पेंडा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल और दिव्यांश श्रीवास्तव, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर देवांगन, कचरी देवांगन, दीपक कुमार, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कैरागढ़ से रविंद्र अग्रवाल, के एल यादव और दामोदर सिंह राजपूत, सूरज कुमार दामले आप हैं सिरमुंदा से, जामठी तहसील वरुड़ जिला अमरावती महाराष्ट्र से आप हैं मोहन, मुकेश कासलेकर, दिनेश विमल और विशाखा कासलेकर, और राज और सारिका वैष्णव आप हैं बेमेतरा से, और हरदेवलाल पारा वार्ड सिमगा से हैं रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी और कोमल यादव। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं अभिजीत।

अगले गीत के लिए फरमाइशें भेजी है हमारे इन साथियों ने। आप हैं पद्मनगर भिलाई से दिनेश देवांगन, भाग्यश्री पुष्कर, वंशिका देवांगन, भाटापारा से नारायण यदु, पुनिया, राकेश और आरती यदु, बाजारपारा बेमेतरा से भाई भरतलाल सिन्हा, लव कुमार और लक्की सिन्हा, बेमेतरा से ही पूर्णिमा सारथी, पूजा आरती भव्या और सुषमा सारथी, जयमा कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गातापार से गणेश्वरी साहू, ओमप्रभा, बिंदेश्वरी, नागेश्वरी, चमेली, भूमिका, मोनिका।

पूनम साहू, जय माँ कर्मा रेडियो श्रोता संघ सिर्री गाता पारसई, लवण्या साहू, उपासना साहू, देवराज, ओम कुमार, पुष्पराज और प्रभु राम साहू, अमलीपदा देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता तिवारी, गेंदलाल मिश्रा, चंद्रकांति मिश्रा, अर्चना प्रतीक्षा और धनंजय मिश्रा, आप है धवलपुर गरियाबंद से, बेमेतरा से सुरेश सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत सारथी, ब्रिजेंद्र ब्रिजकांत सारथी, गांव मुलमुला बेमेतरा से शेखा राम साहू, अमरिका बाई, लेखनी रोशनी, चाहक साहू बेमेतरा मुलमुला से ही, नेतराम साहू, मेरे राम, लक्ष्मी साहू, बिंदु, डिम्पल, रमेश्वर साहू, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मीना सोनवानी, गीतिका बेबी गीतेश्वरी, आशीष टेमरे, राहुल साहू और वेद प्रकाश, करहीबदर से पुरुषोत्तम भाई निर्मलकर, शारदा देवी निर्मलकर, लोचन विद्यार्थी, गीतिका गुड़िया, लल्ली गिन्नी, शीतलानगर दुर्ग से शिवचंद्राकर, भगवान चंद्राकर और हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, नंदा बोडके, हनुमान बोडके और उत्तम जामदाड़े, आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में मनोज मुंतशिर की रचना, संगीत आर को का है, फिल्म का नाम है रुस्तम।

अगले गीत के लिए फरमाइश भेजी हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैदर सिवा से छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और अल्पना यादव। दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अकबेश, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव। रतरेंगी से विश्राम यदु, पार्वती, प्रतिमा, रीना और लक्ष्मी नायदू। लालपुर से लुकेश यदु, समीर यदु। महामाया पारा ग्राम दरचुरा से फिरंदा साहू, दुलौरिन, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार साहू। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा और मोतीलाल साहू। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और छावेंद्र कुमार वर्मा। शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा। भाटापारा से चोवाराम वर्मा, दुलारी वर्मा, मुकेश वर्मा और दुर्गा दुर्गेश्वरी वर्मा। आप सभी की फरमाइश पर लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर की आवाज़ में और अमिताभ भट्टाचार्य के संगीत निर्देशन में फिल्म लुटेरा का ये गीत। और इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है अमित त्रिवेदी ने।

इस गीत के लिए कुछ अन्य श्रोताओं ने भी फरमाइशें भेजी हैं। आप हैं गांव मुलमुला बेमेतरा से शेखर राम साहू, अमरीका बाई रोशनी चहक साहू बेमेतरा मुलमुला से नेतराम साहू, मनीराम, लक्ष्मी साहू, बिंदु, डिंपल और रमेश्वर साहू, अमली पदड़ देवभोग से निकुंज तिवारी, लाची तिवारी और ममता तिवारी, भाटापारा से राधेश्याम टेलर, जितेंद्र साहू, सिमगा से सविता जैन, प्रदीप जैन और साथी, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मेका, बलविंदर तिरक, जैते बिरक और मेका बिरक, लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम सतीश और मुकेश कुमार साहू, पटपट डोंगरगढ़ से राम कुमार ध्रुव, नरेंद्र कुमार ध्रुव, कविता और जयंती ध्रुव, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। और इन फरमाइशों के साथ ही नए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपके मीत ये गीत यहीं समाप्त होता है। अनुमति दीजिए सीमा शर्मा को।

0: नए फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी उम्मीद ये गीत अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1 बजने को है हिंदी समाचार, अब दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। म्यांमार के राष्ट्रपति ओ मिन ऑनलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति के रूप में उनकी ये पहली भारत यात्रा।

0: है। म्यांमार के राष्ट्रपति ने गया में महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद वे नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनका आज शाम विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात का कार्यक्रम है। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेंगे। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है, जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने का निर्देश दिया है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों के उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि उनका स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांग्रीला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड के रक्षा मंत्री डिलेन येसिलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वार्ता में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने, सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4,00,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच कल अहमदाबाद में फाइनल मैच 7:30 PM से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडिया वीव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। समय है चित्रपट संगीत का।
4: आकाशवाणी at 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है। देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के

0: चित्रपट संगीत का पहला गीत, जिसके लिए आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अभिनेत्री।
1: हंसो मत, बोलो।

आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना। संगीत राहुल देव बर्मन का है। फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।

एक बार मुस्कुरा दो। लीजिए सुने इस फिल्म का गीत। आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत लिखा है इंदिवर ने और संगीत तैयार किया है ओपी नैयर ने।

अंत में सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल सरों में आनंद बख्शी की रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का है, फिल्म का नाम है जवानी दीवानी।

समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2 बजे भी सुन सकते हैं। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं, समय है कार्यक्रम विवरण का। पहले हम आपको दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। स्पोर्ट्स स्कैन, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 8:30 पर। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती आप सुन सकते हैं रात 9:30 पर। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे सुनेगा स्मिता मोकाशी का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद यानी 1:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। इसमें सुनेगा आज के गोठ में नारी गौरव देवी अहिल्याबाई होलकर। क्रम गीत ले भरे कहानी में सुनेगा मोंगरा फिर ममहागे। आलेख और वाचन आशा शर्मा का होगा, संपादन होगा वीर भान साहू का और प्रस्तुतकर्ता होंगे रमा शंकर। साथ ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस पर चर्चा। कार्यक्रम प्रायोजित कार्यक्रम हमर खाती हमर गोठ आप सुनेंगे शाम 5:05 पर। युवाणी कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर। इसमें आप सुनेंगे अपन गोठ में मोर गांव के सुरता, इस विषय में गोठबात। साथ ही होगा क्रम आप मन के चिट्ठी और माटी के गीत। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कलाकार होंगे पीताम्बर यादव और साथी। लोक संगीत के ही कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे सीताराम साहू और साथी। किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल होगा शाम 7:21 पर। इसमें आज की बात में सुनेगा बैकयार्ड मुर्गी पालन खेती संग अतिरिक्त आय के साधन, इस विषय पर चर्चा। किसानवाड़ी में 7:30 पर सुनेगा आज की सलाह में पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के लिए आवश्यक तैयारियां, इस विषय पर डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक की सलाह। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 2 बजे 2:30 पर, शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

हम अपने श्रोताओं को एक बार फिर बतला दें, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10 बजे आप सुनेंगे स्मिता मोकाशी का ख्याल गायन। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनैया सबो बहनी मल्ला आशा के राम राम। बहनियो हमर संस्कृति मा नारी परानी हमेशा मया त्याग और संस्कार के प्रतीक माने गईस। काबर की भाई एक नारी ही बेटी बहनी और जिंदगी के संगवारी और महतारी बन के परिवार और समाज ला आगू बढ़ाते। और हमर सभ्यता मा तो कतको नारी ऐसन उदाहरण हवें जोन भारत शासन ला संभालिन, जनता के कल्याण करिन। और ऐसने एक नारी गौरव रहिन देवी अहिल्याबाई होलकर, जोन 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य मा राज करिन और उन्ना लोकमाता तको कहे जात रहिस। ऐसे माने जाते कि देवी अहिल्याबाई बिना तलवार उठाए भारत के शासन मा राज करिन और आम जनता के कल्याण करिन। नियाव करैया धर्म के मनैया रहिन देवी अहिल्याबाई और युद्ध कला के संगे संग कूटनीति मा तको होशियार रहिन। व्यापार ल बढ़ाइन और होलकर के सेना ला अजय बनाइन। इतिहास प्रसिद्ध सूबेदार मल्हार राव होलकर के बेटा खंडे राव के धर्मपत्नी महारानी अहिल्या देवी अपन राज के सीमा के बाहर तको भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान मा मंदिर बनवाइन, घाट बंधवाइन, कुआं बावली बनवाइन और कांसी विश्वनाथ मंदिर के पुनरुद्धार तको करवाइन। भूखे भर भोजन और प्यासे भर प्याऊ घर बनवाए के संगे संग मंदिर दिवाला के तको उद्धार करिन। अभिनियो ये तिथि ना सिर्फ एक तिथि नो है, बल्कि हम नारी परानी मन पर गौरव के बेरा है जोन कठिन ले कठिन समय में तको अपन साहस और त्याग बलिदान ले हम नारी परानी मन पर के मान ल बढ़ेन। तो हमला ये प्रयास करना चाहिए कि ऐसन महान विभूति मन के दिखाए गए रद्दा मा हम चलन तो ओकर मन पर यही हमर मन पर महावर मन के सही श्रद्धांजलि हो ही। और भाई आज उनकर जन्म जयंती के अवसर पर ऐसन महान नारी गौरव देवी अहिल्याबाई होलकर ला हमर सत सत नमन है। अभिनियो हमर जिंदगी खुदे कहनी आए और सबकी जिंदगी माँ तको कोनो ना कोनो कहनी होते। काकरो नानचिक कहनी रही थे तो काकरो जिंदगी भर के कहनी रही थे। फिर यहू बात सही आए कि दुख के घाम और सुख के छाँव सबो की जिंदगी माँ लगे रही थे। और समझदारी तको ही माँ है कि दुख के घाम माँ तब के सुख के छाँव माँ जिंदगी के आनंद उठावन, नवा बदलाव के स्वागत करन। ये बदलाव हमर समाज ला तको नवा दिशा दही और जिंदगी तो भई हंसी खुशी ले बिताए बर मिले है। तो बहनी हो हासन खिलखिलावन महमहावन महर महर मोंगरा हसन और आव सुनन ये गीत ले भरे कहनी मोंगरा फिर महमहागे। आलेख और वाचन आशा शर्मा की माने हमर है, परिकल्पना और संपादन बीरभान साहू के है और प्रस्तुत करता है रमाशंकर।

0: ललहू छीट के लुगरा पहिरे, बाँ भर लाली चूरी और माथा में चंदा कस टिकली लगाए, पाँव में छुनूर छुनूर बाजत पैरी पहने, नेवरनीन बहु मोंगरा रंदनी खोली ले ओसारी परछी में बैठे सास ससुर और अपन जोड़ी ला जीवन परसत है। और खवैया मन तको बहु हाथ के सुग्घर रांधे पर से अमटहा भाजी और रखिया के बरी मुनगा के साग लखा के पेट के संगे संग अपन आत्मा लतको तृप्त करत है।
1: छुनुर छुनुर पैरी बाजे।

चट मंगनी और पट बिहाव होय रहिस मोंगरा के एदे एक महीना पहले। विदाई के बेरा मा सबो के आँखी ले आंसू बोहावत रहिस, काबर की महतारी बाप तो ननपन ले नहीं रहिन मोंगरा के, मामा मामी मन पालिन पोसिन और एदे बिहाव ला तको करिन है। सगा मन चुआ राम ला धन धन कहिन कि आज से अपन मुरही भांची के कन्यादान ला करके जीते जी पुन के भागी बन गए चुआ राम। भांची भचरा की सेवा जतन ला हमर छत्तीसगढ़ मा बड़धर्म के काम माने जाते, सिरतोन तय गंगा नहा डरे। चुआ राम कहते ममा माने महतारी ले आगर मया करैया माने जाते संगे हो, और जब ममा शब्द में दू झन माँ के मया मिले हवय तो मोर जिम्मेदारी तो ज्यादा बाढ़ जाते, और फिर मोर भांची मोर बहनी की छाँव हरे, मैं अपन राखी के लाज ला राखे हव। जा भांची ससुराल माँ खुश रहबे और मैके के सुरता झल लमाबे, ऐसन कहत चुआ राम की आँखी डबडबा जाते।

मा माया दुलार के ऐसे धार बोहिस जेमा फिजे बिना घर के कोनो नहीं बाँचिस। सास ससुर अरोसी परोसी मुंगरा मुंगरा का हाथ नहीं थके। बेरा कब बीत गए पता नहीं चलिस। और साल भर के भीतर मा मुंगरा के कोरा मा एक झन नोनी आ गिस। ममा चोराम नोनी के छठी वरही मा नोनी बरानी बानी के कपड़ा लत्ता ओन्हा और खई खजाना खेल खिलौना ले गिस और अपन नतनी लम्मया दुलार करके अपन गाँव लौट गिन।

बेटी मोंगरा, ससुराल मा सास ससुर अउ अपन गोसैया के माया मा मैके ल भुला जथे। ससुराल मा पहुंच के मोंगरा अपन नाम असन पूरा घर मा महमहाय लगिस। कथे ना, जिन ल माया दुलार मुश्किल मा मिले रिथे उही ओकर मोल ल समझथे। मोंगरा अपन ससुराल

0: गादी गादी गादी।
1: कही थे ना, सुख के दिन लघियात नहाक थे, कब कोरा की लईका मड़ियाए बैठे बर रेंगे बर धरीस, गम नहीं मिलिस। दाई बाबू नोनी के मुंह ले सुन के जिसे मोंगरा और ओकर जोड़ी के हृदय गदगद हो जावे। फिर विधना के अपन खेल होते जेमे हमर काकरो बस नहीं चले। कौन जने कते डहार ले कौन बैरी के नजर मोंगरा के खेलत खात दुनिया में पड़ गे कि मोंगरा के धनी एक दिन के सर्दी बुखार में सुतीस। कतको दवाई पानी करेन, बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य ला दिखेन और विधि के विधान के आगे काकरो नहीं चलीस। और रोवत तड़पत मोंगरा ला छोड़ के ओकर जोड़ी भगवान घर रेंग दीस। मोंगरा के ऊपर तो जैसे दुख के पहाड़ टूट गए।

अपन आदत व्यवहार ले महर महर महमहावत मोंगरा के अभी खेले खाए के दिन रहीस। और आज मोंगरा मुरझा गए। मोंगरा के ममा ल तो जैसे सांप सूंघ डरीस। सब झन बुकबुकाए मूर्ति कस खड़े हो गए। सियान दाई ददा के एक झन बेटा के जाए के दुख का होते तेकर बारे में का कहबे। दुख के दिन पहाड़ सन पहा थे। फिर राखी ही राम तो लेगी ही कौन, और लेगी ही राम तो राखी ही कौन। फिर बांची के दुख ल करेजम और पथना

आके चोर आम भाची ल घर लेगे के बात कहिस। फिर मोंगरा के ससुर कि थे, हम अपन बहू ल मैके नहीं भेजन, और ये नोनी हमर बेटा के चिन्हारी आए, हमर जियत ले हमर संग रही और यही घर में रही। मामा चोराम अपन समधी के आगू में हाथ जोड़ के खड़ा हो गए। मैं तो अपन भांची के कन्यादान कर दे रही हूँ सगा, फिर अब तुम्हार बहू तुम्हार जिम्मेवारी।

मोंगरा तको अपन करम ला भगवान के आशीर्वाद मान के जिम्मेवारी ला निभाए लगीस। सास ससुर के सेवा सत्कार मा अपन दुख पीरा ला भुलाए के कोशिश करीस। नोनी तको बाढ़े लगीस। सास ससुर सियान होगे तो खेती खार ला अधिया रेघा दे दीस। घर के एक ठन कुरिया मा नानकुन दुकान तको खोल दीस। तीर्थ खार के लोगन मन दुकान मा आए लगीन। मोंगरा जान डरे रहिस कि जिंदगी ला रो के बिताहूं तो रोते रहूं, और हांसे के बहाना तो मोला खुदे खोजे पर पड़ही, और करम करैया के किस्मत तो को कर संग देते। दुकान मा किसिम किसिम के लोग आवें, सामान बिसावें, तभी एक जन मनखे वहां आईस और कुछ सामान बिसाइस, और दुकान में बैठे मोंगरा के रंग रूप और बात व्यवहार ला देख के मोहा गए। और वो मनखे गांव में आए नवा गुरुजी मनोहर आए। मनोहर के मन के कोना मा मोंगरा भर माया के पिकी फूटे बर लगीस, और दुकान आए के बहाना खोजे बर लगीस, कभू माचिस तो चाय शक्कर तो कभू नून बर। इति मोंगरा के मन में तको गुरुजी ला देख के अलगे भाव आए बर लगीस। मोंगरा मन में गुंथे, ये मुला काय हो थे, गुरुजी है तो एक अच्छा आदमी आए, और वो कर व्यवहार में तको कोनो किस्म के गलत नहीं लगे, फिर मैं तो कहूँ गलत नहीं सोचत हूँ। मोंगरा के मन कैसे कैसे होए लगीस, और अपने सोच में उलझे बर लगीस, और मने मन मा अपने आप ला दोषी माने बर लगीस।

अब ए डहर गुरुजी हा अपन बड़े गुरुजी मेर हमेशा मोंगरा के गोड़ बात करे। तो एक दिन ओकर बड़े गुरुजी हा कहते, बहुत मोंगरा मोंगरा करथस मनोहर, कौन कर ही मोंगरा ले बिहाव, का हमर समाज हा मोंगरा ला दूसर बिहाव करन दिही, ते कर भी मोंगरा संग बिहाव। ये बात ल सुन के मनोहर सन्न हो जाते, थोड़किन देर भर जैसे सन्नाटा छा जाते, काबर की सवाल तो बहुत बड़े रहिस।

फिर अपन आपला संभालत मनोहर गुरुजी कही थे, ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ मुंगरा संग बिहाव करे बर। फिर मोर बात ल कौन राखी, मोर तो न दाई है न ददा है, न गांव में घर है न खार में खेत है। तब बड़े गुरुजी कही थे, मनोहर गुरुजी, मैं तोर बड़े भाई बन के ये नेक काम में संग दूँ और मोंगरा के ससुर तक पहुँचाऊँ। का सुन के मनोहर गुरुजी के हृदय में खुशी के लहरा हिलोरे बर लगी।

बड़े गुरुजी समय पाके मोंगरा के ससुर करा जाते और मोंगरा के ससुर ला हाँक पारते, दाऊ हावस गा। बड़े गुरुजी ला देख के मोंगरा के ससुर खटिया ला बिछाते और बैठारत कहते, धन मोर भाग गुरुजी कि मोर डेहरी माँ आपके चरण पड़ीस। अब ये मोंगरा ला हाँक पारत कहते, मोंगरा बेटी पानी लानबे बड़े गुरुजी बर। पानी पियत बड़े गुरुजी ला मोंगरा के ससुर पूछते, कैसे आना होइस गुरुजी? तब गुरुजी कहते, एक ठन बात लेके आए रहे हूँ दाऊ, रहे बर बात तो छोटे भी है और बड़े भी, बने फरिया के बताओ ना गुरुजी।

जब मैं मोंगरा ला देखथो ना तो मोला मोर बेटी के सुरता आ जाते। अतके उम्र के रहीस मोर बेटी जब ये दुनिया ला छोड़ के चल दिस। मैं चाहता हूँ दाऊ कि ते मोंगरा के दूसरैया हाथ पीला कर दे, जेकर ले मोंगरा फिर महमहा सके। मोंगरा के ससुर कथे, आप कैसे गोठिया था गुरुजी? कौन स्वीकार ही मोर मोंगरा ला? का समाज मानी? बड़े गुरुजी बड़े गंभीरता ले गई थे। देख दाऊ, जीवन और मृत्यु काकरो हाथ में नहीं है। भगवान आपके बेटा ला ले गे, इमे मोंगरा के का दोष है? अब कहूँ तुहर बेटा के जगह मा मोंगरा चल देतीस तो तुहर बेटा के दूसर ब्याह नहीं करते हो? अतका सुन के दाऊ सन्न रही जते। अपन आप ला संभालत बड़े गुरुजी ला कही थे, सही कहे गुरुजी, ये बात ला सोचे नहीं रहूं। फिर कौन स्वीकार ही मोर बेटी मोंगरा के हाथ? तब बड़े गुरुजी कथे, यहू बात ला मैं विचार कर डरे हवा। एक लड़का हवे जेना सब प्रकार ले मोंगरा बर बने हैं। मैं होकर ले बात करे के बाद और ओकरे कहे के बाद यहाँ आए हूँ और बड़े गुरुजी मनोहर गुरुजी के बारे में बताते। पर्दा के आड़ में खड़े मोंगरा सबो बात ल सुनत रिथे और धड़धड़ धड़धड़ ओकर आंसू गंगा जमुना कस झरे बर लागथे। मोंगरा के ससुर हा सोच में पड़ गए, इसे मोंगरा बर बहु एक ठन बने काम करे रहीस कि ओला बिना दाइज दौर के एक ठन लुगरा में बिहा के लाने रहीस। फिर ये बात ल सुन के मोंगरा के ससुर असमंजस में पड़ गए, का करूं? अपन बहू के बिहाव दूसर संग कैसे करूं? सगा समधी समाज का कही? फिर मोर लिए गए एक बड़े फैसला मोंगरा के जिंदगी ला फिर महमहा दही, ओकर जिंदगी मा सुख के घेरी बेरी दिया बरही। मोंगरा के ससुर ला असमंजस में देख के बड़े गुरुजी कही थे, दाऊ आज हमन पढ़े लिखे हैं, जेकर ले हमार सोच है बदले है, हमार विचार है बदले है, और हमार सोच है बदल ही तभी तो समाज में बदलाव आही, और समाज है जब बदल ही तब देश के विकास हो ही, और हमन जवान मनखे आन हमी मल समाज में बदलाव लाए बर पड़ी, और ये मैं मोंगरा के का दोष आए? अपन पहाड़ सन जिंदगी ला अकेला कैसे निभाए, और तुम्हार संग ओला कतेक दिन तक पूरी? दाऊ अपन हृदय की सुनो और मोंगरा ला बेटी कस विदा कर, ओला एक बार औ महमहान दो। औ आज मनोहर हा मोंगरा ला विदा करके ले गए थे। फिर मोंगरा बाँह भर चूरी मांग मा सिंदूर माथा मा चंदा कस टिकली लगाए और लाली लुगरा पहिरे अपन ददा असन ससुर के पाँव लपर के मनोहर संग विदा हुआ थे। और एक बार फिर मोंगरा महमहा गे।

मोंगरा फिर महमहांगे। अभी सुनें ये कहानी जेकर आलेख और वाचन आशा शर्मा के माने हमर रहीस, परिकल्पना और संपादन के संग सुघर गीत लजोरे रहीन बीरभान साहू और प्रस्तुत करता रहीन रमा शंकर। अभी नहीं हो जैसे हमर परिवार हमर अपन होते ना, वैसे ये कार्यक्रम घर आंगन के माध्यम ले हम आप मन संग जुड़े हवन। तो कोनो भी कार्यक्रम बर आप मन के सुझाव सलाह पाते और ईमेल हमर बर बहुते महत्ता के होते। तो आज के कार्यक्रम बर आप मन के विचार के अगोरा करत आज के कार्यक्रम ले इहे विदा देवो अपन बहनी आशा ला और लेवा हमर राम राम।

0: घर आंगन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं और अब समय हो चला है चित्रपट संगीत का।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: चित्रपट संगीत का पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की, समीर के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है साजन चले ससुराल।

0: इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। चित्रपट संगीत आप 2:30 पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:55 होने को हैं दोपहर समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन आउल लाइन 5 की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा, अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ

0: सैन्य कार्यवाही फिर से शुरू करेगा। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। समाचार विस्तार से। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवक के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स की रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जिगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
0: राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री

0: मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
1: आज डीके शिवकुमार राज्यपाल तावर चंद गहलोत से मिले, स्वेरिंग इन सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोक भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो, परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा, जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बुद्धि खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बढ़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना

0: ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तटीय कर्नाटक में भी वर्षा की संभावना है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओले पड़ने का अनुमान है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। एक रिपोर्ट।
1: उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे। उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हेत जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मार्तंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी। उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। उदंत मार्तंड से शुरू हुआ ये सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अंत। समाचार पत्रों से शुरू हुआ सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है। हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिनाउलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे, महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में, नए नेता का होगा चुनाव। बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत। और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:30 हुए हैं। समय है चित्रपट संगीत का।
3: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
4: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
5: बड़ी दूर से आए प्यारे का
3: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।
6: गीत मेरे होठों को दे गया कोई।
3: कभी कोई किस्सा याद आता है।
7: या

0: अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
0: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
3: सुनिए।

चित्रपट संगीत का पहला गीत जिसके लिए आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की। समीर के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम है जानवर।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हों, फिर पढ़ के भुला जाते हों।
0: अरे तो सुने करना।
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमार गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना, तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 बजे तक चलते, जेमा तैं मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।
3: आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से जारी है चित्रपट संगीत। लीजिए सुनिए आशा भोसले और कुमार सानू की आवाजों में सईद राही की रचना, संगीत नदीम श्रवण का है, फिल्म का नाम है जान तेरे नाम।

AIR at 90. कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना। संगीत अनु मलिक का है। फिल्म का नाम है चमत्कार।

श्रोताओं, एक सूचना सुनिए। आगामी मंगलवार 2 जून 2026 को प्रसारित होने वाले हेलो किसान वाणी कार्यक्रम का विषय होगा खेती की लागत घटाएं, लाभ बढ़ाएं, नैनो और दानेदार खाद का विवेकपूर्ण उपयोग। इस विषय पर आपकी समस्याओं और जिज्ञासाओं के समाधान हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ होंगे श्री दिनेश गांधी, उप महाप्रबंधक इफको रायपुर। आप अपनी जिज्ञासा और शंका का समाधान पाने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 4003-482, 4003-483 और 4003-484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग 2 जून 2026 को 11:30 से 12 बजे तक की जाएगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार को ही शाम 7:30 पर किया जाएगा। हमें आपके फोन कॉल का इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्रों से इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। लीजिए सुने इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत के लिए संगीत तैयार किया है जतिन ललित ने।

अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ों में जावेद अख्तर की लिखी रचना। संगीत जतिन ललित का था और फिल्म का नाम था फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। और इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।

मीडिया वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ 5 बजे हम फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने के भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा यह अभियान अब भी जारी है।
1: As far as Operation Sindoor is concerned,
2: जहां तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है, साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और रक्षा सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक

पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री DK शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल रहते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांगला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्धविराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर विचार किया गया। सिचुएशन रूम में हुई ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर शुरू हो रहा है वो शो जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इसमें लेते हैं हम आपके मेल्स, आपके मैसेजेस और सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश के गीत। यानी समय है मन भावन का, जिसे लेकर आपके साथ मैं हूं रजनी। आप चाहे तो आप भी अपने जो मेल हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753, यानी कि 9868868753। और अभी सबसे पहला जो संदेश मुझे दिख रहा है ये हमें भेजा है बटीडा रोड मंडी मर्डी डबवाली से, और भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग।

और आगे बढ़ते हुए अगला संदेश लेते हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़ और कर्ण साहनी, संदेश हमें कमल साहनी संदेश भेज रहे हैं पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से। इनके बाद जो संदेश हम तक पहुंचा है वो है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर। और इनके बाद जो संदेश दिख रहा है मुझे ये हमारे पास आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, राजपाल पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह का, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। अगला संदेश हमें भेजा है सागर लखनदौन मध्य प्रदेश से, लखनादौन मध्य प्रदेश से भेज रहे हैं संदेश लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे और रिमझिम चौबे और साथ में है सक्षम चौबे। और ये सभी सुनना चाहते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो लीजिए, आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, मैं जयश्री अरोरा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। रेडियो की लत मुझे बिल्कुल बचपन से पड़ी थी। मेरी माताजी रेडियो प्रेस सुनने की बहुत शौकीन थी। उसके बाद इत्तेफाक से मैं रेडियो आर्टिस्ट भी बन गई और प्रोग्राम किए, इतना कुछ सीखा। बड़े बड़े स्टॉलवर्स निर्मला अग्रवाल, दीनानाथ जी, सत्येंद्र, शरद, शैलेंद्र जी, सुशील बैनर्जी, कमल दत्त, सुदर्शन जी, दानिश इकबाल, इन सब के साथ काम करके इतना कुछ सीखा। और जब टेलीविजन के लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, तो मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ ये आकाशवाणी की देन है। तो आज इस उपलक्ष पर हम सब इतने खुश हैं, और तरक्की करे आकाशवाणी, और इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य घर
6: पर्सनल लोन ऑफर
7: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
6: फ्री ट्रिप टू दुबई
7: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
8: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
7: तो क्या करूं?
8: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
7: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
8: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट

0: जरूर करें। Try TNT app. Download now from Play Store or App Store and start reporting.
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर जारी है आपका अपना मन भावन, जहां पर आप भेजते हैं अपने ईमेल्स और अपने संदेश और साथ ही भेजते हैं अपनी फरमाइश के गीत, जो कि हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश भी हम ले सकें और आपकी फरमाइशें भी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी कर पाएं। अभी जो मेल मुझे दिख रहा है ये हमें कनॉट प्लेस दिल्ली से आया है और भेजने वाले हैं माहिरा मलिक, हिबा, आयशा, जोया, जैनब, मरियम, इन सभी ने ये मेल भेजा है। साथ ही हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें भेज रहे हैं ईमेल। इनके बाद जो संदेश हमारे पास आया है वो है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। और अगला जो संदेश है वो मिला है हमें दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार सिन्हा, अजय, तनुश्री गुप्ता, बेबी अनविका रानी का। अगला जो पैगाम है वो मिला हमें भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कुशला देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन का। और इनके बाद जो ईमेल हमारे पास पहुंचा है ये है ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से और भेजने वाले हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। ये सभी सुनना चाहते हैं मनचली फिल्म का गीत, आवाज है किशोर कुमार की।
2: क्या हुआ?
3: हाय, गम का फसाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा जी?
3: एक बहाना बन गया अच्छा।
2: अच्छा

मोताला बाजार से हमें सुन रहे हैं बबलू ठेकेदार शेख शागिर, शेख वजीर और सोहिल शेख। इनके अलावा हमें मेल मिला है आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से, वैशाली शैलेश गवहानकर का, सुमित गवहानकर, कुमारी ध्वनि गवहानकर परी और प्रिंस एकांश गवानकर का। अगला जो मेल हमारे पास आया है ये है किशोर नगर अमरावती के हीरामन शेंडे और शीला का, और सिद्धार्थ गोंदाने भी इनके साथ हैं। साथ ही हमें मेल भेज रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। इनके बाद हमें संदेश भेजने वाले हैं समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता। और साथ ही हमारे पास संदेश भेजा है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप। और ये सभी सुनना चाहते हैं ये वादा रहा फिल्म का गीत जिसे आवाज दी है आशा भोंसले और किशोर कुमार ने।

हमारा भी वादा है आपसे कि हम कोशिश करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके संदेश हम ले पाएं, हालांकि जितना इजाज़त वक्त देता है उतना ही कर पाते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार का संदेश हमारे पास आया। इनके अलावा जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो जनकपुरी सहारनपुर से हमें सुन रहे हैं। अगला संदेश भेजने वाले हैं कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने का संदेश मिला। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने हमें मेल भेजा और इनके अलावा हमें सुन रहे हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म गीत का एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही लोकप्रिय गीत। आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी, आवाज़ है महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं। पुणे के खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है।
1: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
0: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेट अफसरों से व्यावसायिकता, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी जनरल चौहान का स्थान लेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। म्यांमा के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है। राष्ट्रपति ऊ मिन आउंग लाइन आज शाम

0: नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से चुने जाने की संभावना है। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। महीने भर चलने वाली ये प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्यभर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव संविधान, चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जाते हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका के सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमेरिका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। ये बैठक कोई स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। बैडमिंटन में सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी का मुकाबला दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वान हो से जारी है। भारतीय जोड़ी ने पहला सेट 21-19 से जीतकर बढ़त हासिल कर ली है। गुजरात टाइटंस IPL क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Renu Kataria. The Karnataka Congress Legislature Party is meeting in Bengaluru to elect its new leader to succeed the outgoing Chief Minister, Mr. Siddaramaiah. Governor Thavarchand Gehlot has already accepted the resignation of Mr. Siddaramaiah, asking him to act as a caretaker until a new incumbent is chosen. Our correspondent reports that Mr. D.K. Shivakumar is likely to be formally elected as the new leader of the Congress Legislature Party. The 136 Congress MLAs have been asked to attend the CLP meeting. President of Myanmar U Min Aung Hlaing arrived at Gaya in Bihar on a 5-day visit to India. He visited the world-renowned Mahabodhi Temple in Bodh Gaya and offered prayers at the sacred Buddhist site. President Hlaing will meet External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar in New Delhi this evening. Tomorrow, the Myanmar President is expected to participate in Myanmar-India Business Forum. On Monday, President U Min Aung Hlaing will hold discussions with Prime Minister Narendra Modi. Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today bid farewell to military service after receiving a ceremonial Tri-Services Guard of Honour at the National War Memorial in New Delhi. The ceremony marked the culmination of his distinguished tenure as the country's top military officer. He also laid a wreath at the war memorial.
2: It's a matter of great honour for me to suffer and wait with the Tri-Services Guard of Honour. I thank the 3 services and headquarter IDS for it. With the conclusion of the Guard of Honour, I bid farewell to my colleagues in uniform, comrades in arms forever. I laid the wreath at the war memorial for the last time in uniform as a humble tribute to those who laid down their lives in the line of duty. This is symbolic of my transiting from uniform to a civilian life. I had a very satisfying and an excellent tenure.
1: Electronic and IT Minister Ashwini Vaishnaw today visited Loham in Surajpur in Greater Noida, which is producing sustainable critical minerals and advanced materials. Speaking to media, Mr. Vaishnaw said, lithium batteries and permanent magnets play a crucial role in several modern technologies, and Prime Minister Narendra Modi envisions that this should be manufactured in India and its technology should be developed domestically. He said, in alignment with this vision, a young startup named Loham has successfully developed a complex technology. The Directorate of Revenue Intelligence, DRI, carried out coordinated anti-narcotics operations in Keralam and seized substantial quantities of narcotic drugs and psychotropic substances. The Ministry of Finance said that over 24 kilograms of narcotic drugs and psychotropic substances have been seized in these operations from Kochi, Malappuram and Thiruvananthapuram under Operation Chakravyuh. The ministry added that five individuals, including key operatives involved in the trafficking networks, have been apprehended. In Bihar, seven people have been killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning strikes. Three fatalities were reported in Gaya, while Aurangabad recorded two deaths. One death each has been reported from Saran and Khagaria districts. Expressing grief over the tragic incidents, Chief Minister Samrat Chaudhary has announced an ex gratia grant of 4 lakh rupees each for the next of kin of the deceased. The IMD has said that atmospheric conditions are becoming increasingly favourable for the southwest monsoon to reach parts of Keralam and Tamil Nadu within the next 4 to 5 days. The monsoon has further advanced into areas of the Arabian Sea and the Bay of Bengal, as well as the Lakshadweep and Kanyakumari region. The IMD has forecast isolated heavy rainfall over Keralam and issued a yellow alert in 8 districts for today. Fishermen have been advised not to venture into the sea. In badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hubaro and Yuichi Shimogami in the semifinals of the Singapore Open tournament today. Meanwhile, men's doubles semifinal match is underway between Indian duo of Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty and South Korea's Seo Seung Jae and Kim Won Ho. And Hindi Patrakarita Divas is being observed today. The day is celebrated every year on this day to mark the publication of Udand Martand, the first Hindi newspaper in India, which was launched on May 30th in 1826 from Kolkata. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमने चुना है आपके लिए एक प्यारा सा गीत फिल्म राम और श्याम से, आवाज है आशा भोसले की, आइए सुनते हैं।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: पर्सनल लोन ऑफर
4: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
3: फ्री ट्रिप टू दुबई
4: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
5: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
4: तो क्या करूं?
5: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
4: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
5: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
6: अगला गीत सुनते हैं फिल्म किस्मत से। आवाज है मोहम्मद रफी की, आवाज है महेंद्र कपूर की।

0: विभाग के अधीन स्वायत्त निकाय टाटा मेमोरियल केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। चिकित्सा अधिकारी न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद, चिकित्सा अधिकारी रेडियो डायग्नोसिस एक पद, चिकित्सा फिजिसिस्ट एक पद अनुसूचित जनजाति के लिए, जबकि एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक अधिकारी SB ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक C न्यूक्लियर मेडिसिन एक पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B फिजियोथेरेपी एक पद अनारक्षित है। वैज्ञानिक सहायक B रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C नेटवर्किंग एक पद EWS वर्ग के लिए आरक्षित है। तकनीशियन C ऑपरेशन थिएटर एक पद अनारक्षित है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 11 जून 2026। विस्तृत विवरण के लिए देखिए वेबसाइट tmc.gov.in। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान वर्धा इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी प्रबंधन एवं व्यवस्थापन एक पद, भर्ती की विधि रहेगी सीधी भर्ती। शैक्षिक योग्यता है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अथवा MBA में मास्टर डिग्री या प्रबंधन के विषयों में मास्टर अथवा समकक्ष योग्यता। अनुभव रहेगा मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवारों के लिए। संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान की वेबसाइट www.mgiri.org। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन परिक्रमा के एक नए अंक में। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हिंदी पत्रकारिता ने अपनी गौरवशाली यात्रा में समाज को जागरूक करने, लोकतंत्र को सशक्त बनाने और जन सरोकारों को प्रभावी अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पत्रकारिता का प्राथमिक कार्य लोगों को सटीक और निष्पक्ष जानकारी प्रदान करना है। इस तरह पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस विषय पर कार्यक्रम में आगे भी चर्चा होगी। फिलहाल प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं रेणु कटारिया। नमस्कार रेणु।
4: नमस्कार, हेलो एंड गुड डे एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू अस एंड यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM and as Sir Firozi has already informed you, I am Renu Kataria with her and we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more, and all this over the next 30 minutes. So let's begin with the news headlines, Sir Firozi.
3: बिल्कुल रेनू। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार।
4: Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his 5-day visit, India visit, with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar.
3: कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज, बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव।
4: At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar.
3: अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा।
4: एंड

0: women's cricket, India to take on host England in second T20 international of three match series in Bristol today. And Sir Firozi, it is time for our segment Dateline India, in which we will be taking a look at the developments that are taking place at the national or global level. And today we are going to talk about the International Day of Potato and Hindi Journalism Day. So, Sir Firozi, aap ye bataiye, how often do we overlook the foods that shape our lives the most? The potato is a perfect example. It rarely takes center stage, yet it finds its way onto our plates almost every day.
1: बिल्कुल रेनू, अगर हम अपने दिमाग पर जोर डालें तो शायद हम रोज ही किसी न किसी रूप में आलू को कंज्यूम कर ही रहे हैं. और अपने श्रोताओं को भी हम कहें, अगर वो भी सोचे कि आखिरी बार उन्होंने आलू कब खाया था, शायद शाम की चाय के साथ आलू से भरे समोसे खाए हों, या किसी ट्रिप पर क्रिस्पी फ्राइज शेयर किए हों, या हो सकता है किसी नुक्कड़ की दुकान पर चटपटी आलू चाट खाई हो.
0: जी,
2: सुबह से ना एक आलू बिका है, ना ही बिका है आधा कांदा.
3: सुबह से
2: ना एक आलू बिका है,
3: ना कोई आलू बिका है,
2: ना बिका है आधा कांदा.
3: भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप?
2: फिल्म लाइन.
1: मैं अपना
0: okay, so you know, the dialogue on this very potato in our Bollywood movies do makes it laugh. Yet behind this humble vegetable lies a remarkable story, one that stretches across ancient civilizations, global trade routes, scientific innovation, and the ongoing challenge of ensuring food security for millions around the world. Every year, the world observes the International Day of Potato, a day dedicated to one of the most widely consumed crops on earth. At first, it may sound surprising, a whole International Day for Potatoes. ये सोचने में वाकई हमारे को बड़ा वो लगता है यार, आलू के लिए आपने एक पूरा International Day
1: रखा हुआ है,
0: dedicated day रख दिया है. But you know what? When we look very close to it, it begins to make perfect sense, Sir Firozi. This small tuber has been feeding people for nearly 8,000 years. Just imagine.
1: बिल्कुल रेनू, और अगर इतिहास में पीछे चलें और बात करें आलू की, तो इसकी कहानी शुरू होती है दक्षिण अमेरिका के एंडीज पहाड़ों की ऊंचाइयों से, जहां आधुनिक खेती के अस्तित्व में आने से बहुत पहले वहां के लोगों ने आलू की किस्मों को सबसे पहले उगाया. और रेनू, उनके लिए जैसे कि हम भी सोचते हैं, हमारे लिए भी आज आलू सिर्फ खाना नहीं रह गया, हम कई फॉर्म्स में उसको इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए भी आलू सिर्फ खाना नहीं था, ये उनके वजूद, संस्कृति और विरासत का एक मिला जुला रूप था. उन पहाड़ी इलाकों से आलू ने लंबा सफर तय किया और 16वीं सदी में पहुंचा यूरोप, जहां धीरे धीरे लाखों लोगों का खाना बन गया आलू.
0: एंड यू नो व्हाट, इट हैज इन्फ्लुएंस्ड, इट्स इन्फ्लुएंस हैज स्ट्रेच्ड इवन फर्दर, सर फिरोजी.
1: जी,
0: इन चाइना पोटैटोज हेल्प रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ फूड शॉर्टेजेस ड्यूरिंग डिफिकल्ट पीरियड्स. और हमने देखा भी है, वी हैव सीन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स, जब फ्लड्स वगैरह या ड्रॉट की कोई ऐसी होती है मारामारी, तो हमने देखा है कि एक आलू ही है जो सबसे ज्यादा घरों में नजर आता है, और वही बिकॉज उसमें स्टार्च भी होता है, उसमें और भी,
1: और कहीं ना कहीं बहुत कम एफर्ट्स लगते हैं आलू को उगाने में, इसलिए यूजुअली स्टोर करके लोग रख लेते हैं बुरे वक्त के लिए.
0: एग्जैक्टली, वो खराब भी नहीं होता है. See, so during wars and crises across different parts of the world, their ability to grow efficiently and provide substantial nutrition made them a lifeline for countless families.
1: इसके साथ ही इतिहास ने आलू के जरिए एक अहम सबक भी सीखा है. 1840 के दशक में आयरिश आलू अकाल इस बात की सबसे कड़वी यादों में से एक है कि जब एग्रीकल्चरल डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है तो क्या होता है. फसलों का कुछ सीमित किस्मों पर निर्भर रहना बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, और इसका नतीजा ये हुआ रेनू कि लाखों लोगों को इसके विनाशकारी परिणामों का सामना करना पड़ा.
0: वेरी ट्रू सर फिरोजी, एंड द पोटैटो स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट अबंडेंस जैसे कि आप बता रही हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट रेजिलियंस, डाइवर्सिटी एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग नेचर्स जेनेटिक वेल्थ. एंड स्पीकिंग ऑफ डाइवर्सिटी, डिड यू नो देर आर मोर देन 5,000 पोटैटो वेराइटीज अराउंड द वर्ल्ड? 5,000.
1: Kamal.
0: Yes, you heard it right. Some are purple, some are red, some are tiny enough to fit into your palm, while others grow much larger. Each variety carries unique characteristics that help farmers respond to changing climates, pests and diseases. Aur ek aur baat main yahan par add karungi Sir Firozi, hum jaise bahar dusre deshon mein bhi ghumne jaate hain, so I've seen a lot of times that when you're going

0: लुकिंग फॉर ग्रोसरी शॉपिंग और आप स्पेशली अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लिए जाते हैं, तो आई हैव सीन सर्टन वेराइटीज ऑफ पोटेटोज, वहां पे कम से कम 5-6 किस्म के पोटेटोज होते हैं कि ये आपकी सब्जी के हैं, ये आपके फ्राइज के हैं, ये आपके समोसे के हैं।
1: अगर इंडिया की भी बात करें तो हम भी अपने घर में देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर आलू की किस्म होती है जिसके सिर्फ पराठे ही बनेंगे, या कुछ पहाड़ी आलू होते हैं उनकी अलग तरह से सब्जी बनती है।
0: कभी कभी तो ये भी पूछा जाता है वेजिटेबल वेंडर से कि ये आलू मीठा तो नहीं है, तभी हम लेंगे जी।
1: तो और हमने जिक्र किया था कि आलू को कम जमीन और पानी का इस्तेमाल करके बड़ी मात्रा में उगाया जा सकता है और ये अलग अलग तरह के माहौल में भी उग सकता है। ये ग्रामीण और शहरी दोनों समुदायों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है और लाखों छोटे किसानों के लिए आलू आमदनी और मौकों का भी एक जरिया है।
0: वेरी ट्रू, एंड दैट इज व्हाई 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो थीम हैव फोकस्ड नॉट ओनली ऑन फूड बट आल्सो ऑन लाइवलीहुड्स। इट सेज where potatoes grow, livelihoods flourish, and very true. And perhaps one of the most remarkable things about potatoes is their ability to keep evolving. Today, scientists and

0: को का भी एक जरिया है.
1: वेरी ट्रू, एंड दैट इज व्हाई 2026 इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो थीम हैव फोकस्ड नॉट ओनली ऑन फूड बट आल्सो ऑन लाइवलीहुड्स. इट सेज वेयर पोटैटोज ग्रो livelihoods flourish, and very true. And perhaps one of the most remarkable things about potatoes is their ability to keep evolving. Today, scientists and innovators are finding new uses for them beyond the dinner table. Potato starch is being used to create environmentally friendly packaging materials.
0: बिल्कुल रेनू, researchers आलू से बनी चीजों से मिलने वाले पारंपरिक प्लास्टिक के टिकाऊ विकल्पों की खोज कर रहे हैं. और किसने सोचा होगा रेनू कि मैश किए हुए आलू में पाया जाने वाला वही तत्व आने वाले समय में पर्यावरण अनुकूल समाधानों में भी योगदान दे सकता है. और एंडीज के पहाड़ों में एक और इंस्पिरेशनल कहानी भी छुपी हुई है. पेरू के कुस्को के पास स्थानीय समुदाय हजारों तरह के आलू की किस्म उगाते हैं, जिसे पोटैटो पार्क के नाम से जाना जाता है. यहाँ पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक जानकारी संरक्षण के प्रयासों के साथ मिलकर काम करती है.
1: सो डियर लिसनर्स, परहैप्स द नेक्स्ट टाइम पोटैटोज अपीयर ऑन योर प्लेट्स, वेदर एज फ्राइज, पराठास, आलू टिक्की, चिप्स और अ सिंपल होम कुक्ड करी, we may see them a little differently, not merely as a side dish, but as a crop that has crossed oceans, supported civilizations, helped communities survive difficult times, and continue to nourish billions of people every day.
0: बिल्कुल रेनू, मुझे लग रहा है कि आज हमारा ये प्रोग्राम सुनने के बाद जो श्रोता होंगे अपने घर में आलू जो रखे होंगे उनको एक अलग नजरिए से जरूर देखना
1: और
0: शुरू
1: जरूर
0: कर देंगे.
1: वो चाय के साथ अभी आलू की कोई ना कोई डिश, समोसा या फ्राइज जरूर खा रहे होंगे. जी, तो आज हमारी दूसरी डेटलाइन इंडिया का टॉपिक है हिंदी जर्नलिज्म डे.
0: श्रोताओं, शब्दों में बहुत शक्ति होती है और हम ऐसे शब्दों की बात नहीं कर रहे जो सिर्फ शोर मचाते हैं या जो पल भर के वजूद के बाद गायब हो जाते हैं, बल्कि वो शब्द जो एक दिल से दूसरे दिल तक का सफर तय करते हैं, वो शब्द जो लोगों को जगाते हैं, वो शब्द जो इतिहास बदल देते हैं.
1: Today, when news reaches our phones within seconds, it is easy to forget a time when information moved slowly, a time when a newspaper wasn't merely paper and ink, it was a bridge between people, ideas and a dream called freedom.
0: और रेनू, इतिहास की बात करें तो हम सोचते हैं कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि कभी कोई अखबार किसी बुराई के खिलाफ एक हथियार बन सकता है. शुरू में हमें लगेगा ये बहुत नामुमकिन सी चीज है कि कैसे छपे हुए कागज के कुछ पन्ने दुनिया की सबसे ताकतवर औपनिवेशिक सरकारों में से एक को चुनौती दे सकती है, लेकिन यहाँ बिल्कुल यही हुआ.
1: बिल्कुल, एब्सोल्युटली. द स्टोरी बिगिंस नियरली 2 सेंचुरीज अगो, एंड डियर लिसनर्स, प्लीज बी वेरी वेरी अटेंटिव टू व्हाट वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट Hindi Journalism Day today. On this day in 1826, a newspaper named Udant Martand was published from Kolkata under the leadership of Pandit Yugal Kishore Shukla. It became the first Hindi newspaper in India. At that moment, few could have predicted what the small beginning would eventually become, because this was never only about journalism. It was about giving people a voice. We have a report.
2: हिंदी भाषा में पत्रकारिता के आरंभ की स्मृति में भारत में हर साल 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस. 30 मई 1826 को भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता से प्रकाशित किया था.
3: यद्यपि आर्थिक समस्याओं के कारण ये समाचार पत्र लंबे समय तक प्रकाशित नहीं किया जा सका, लेकिन इसने देसी भाषा में प्रेस को प्रोत्साहन दिया और देश के कोने कोने तक राष्ट्रवादी धारणा पहुंचाने में सहायता की.
4: उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. उदंत मार्तंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत, अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत. समाचार पत्रों से शुरू हुआ ये सफर आज रेडियो, टेलीविजन, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुंच चुका है. हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं. हिंदी पत्रकारिता दिवस

0: अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी। साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो।
1: भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सुधारों को प्रोत्साहन देने की प्रेरणा मिली।
2: 1868 में उन्होंने काशी से कवि वचन सुधा के प्रकाशन के माध्यम से हिंदी लेखकों को प्रेरित किया। इस पत्रिका के माध्यम से उन्होंने जन चेतना लाने का कार्य किया और स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। उन्होंने भारत के स्वशासन और संपूर्ण संप्रभुता का स्वप्न देखा।
1: हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में भारतेंदु के युग को न सिर्फ हिंदी भाषी लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, बल्कि इसने ब्रिटिश दमन का भी कड़ा प्रतिकार किया। 1903 में सरस्वती के संपादन का दायित्व महावीर प्रसाद द्विवेदी पर आ गया और हिंदी पुनर्जागरण का तीसरा चरण आरंभ हुआ। इस युग के दौरान कविता में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक समस्याएं मुखर हुईं, जबकि गीतों में सामाजिक जागरण को प्रमुखता से जगह मिली।
2: 1907 में मदन मोहन मालवीय ने प्रयाग से साप्ताहिक साहित्य का प्रकाशन शुरू किया और उसी वर्ष माधव राव सप्रे ने नागपुर से हिंद केशरी निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में कानपुर से जोशीला और क्रांतिकारी साप्ताहिक प्रताप प्रकाशित किया, जो राष्ट्रवादी युवाओं की आवाज था।
1: हिंदी पत्रकारिता के लिए एक और महत्वपूर्ण योगदान 1913 में प्रभा का प्रकाशन था, जिसे पहले कालूराम गंगराडे और माखनलाल चतुर्वेदी खंडवा से प्रकाशित करते थे, लेकिन बाद में ये 1919 में कानपुर में विद्यार्थी की प्रताप प्रेस से निकलने लगा। प्रभा स्वतंत्रता संघर्ष के लिए एक समर्पित समाचार पत्र था।
2: प्रभा और प्रताप के साथ चांद भी महत्वपूर्ण पत्रिका थी। चांद ने ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के विरुद्ध राष्ट्रवाद के बीज बोए और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: स्वतंत्रता संघर्ष में सहायता करने के लिए 1920 में शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज का प्रकाशन शुरू किया। 19 अगस्त 1921 को गांधी जी ने नवजीवन का हिंदी संस्करण आरंभ किया। आचार्य शिव पूजन सहाय ने 1922 में मासिक पत्रिका आदर्श का संपादन प्रारंभ किया।
3: लेकिन श्रोताओं, आजादी मिलने के बाद क्या हुआ? क्या पत्रकारिता का महत्व कम हो गया या फिर ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई है? क्योंकि आजादी के बाद भी कोई राष्ट्र विकास करना बंद नहीं करता। इसमें नई चुनौतियां सामने आती हैं, नई बहस छिड़ती है, नए सपने आकार लेते हैं और यहीं पर पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी निभाना जारी रखती है।
4: एंड यू नो व्हाट, इट ब्रिंग्स अटेंशन टू प्रॉब्लम्स दैट नीड सॉल्यूशंस, सरफरोजी, एंड परहैप्स दैट इज द मोस्ट रिमार्केबल पार्ट ऑफ द स्टोरी फ्रॉम द फर्स्ट एडिशन of Udand Martand to today's digital newsrooms. Generations of journalists have carried forward the responsibility of public awareness. They have preserved the story of a nation that continues to grow and transform.
3: रेनु, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि परिक्रमा के आज के अंक में वो हमारे लिए क्या खास जानकारी लाए हैं। तो सबसे पहले कहाँ लेकर चल रहे हैं अपने श्रोताओं को?
4: चलिए आज नागालैंड चले।
3: ठीक है,
4: इतनी गर्मी में तो नागालैंड घूमना बनता ही है।
3: हालांकि बाहर का मौसम भी काफी कुछ ऐसा ही हो रहा
4: जी,
3: है।
4: जी जी, सो द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और डोनेर हैज लॉन्च्ड मिशन कॉफी ऑफ नागालैंड अलॉन्ग विद द पायलट प्रोजेक्ट टाइटल्ड Cluster based coffee value chain development in Nagaland with an investment of 175 crore rupees. The initiative aims to build an end-to-end coffee value chain in the state from cultivation and processing to branding, tourism and exports. The project was virtually launched by Union Minister for Doner Jyotiraditya Sindhya from New Delhi in the presence of Nagaland Chief Minister Nipur Rio on May 18th. We have a report.
5: Nagaland coffee is steadily evolving from a commodity into a specialty product, setting a benchmark for emerging coffee-producing regions. The growing global recognition of Nagaland coffee reflects the dedications of farmers and stakeholders working across the value chain. The state possesses highly favorable agroclimatic conditions for the cultivation of both Arabica and Robusta coffee varieties. Nagaland has a potential coffee-growing area of over 10 lakh hectares, accounting for nearly 63% of the state's geographical area. However, only around

0: 11,000 hectares are currently under coffee cultivation, spread across 17 districts of Nagaland. Under the mission of Coffee Nagaland, Topema in Kohima District and Gotovi in Newland District has been selected as pilot cluster to become living models of excellence in coffee cultivation and value addition. The initiative is expected to significantly increase coffee yields from the current 200 to 300 kg per hectare to nearly 800 kg per hectare. Besides improving value capture for farmers, the project is also expected to generate employment opportunities in cultivation, processing, roasting, barista training and tourism, while encouraging greater participation of rural youth in the coffee economy. Nagaland now aims to bring 50,000 hectares under coffee cultivations by the year 2047 under its Viksit Nagaland vision. For Parikrama, Asonyo from Kohima.
1: और श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं नागपुर में। नागपुर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से खासदार क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन कल से हो रहा है। इस महोत्सव में हजारों खिलाड़ी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। इस पर और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता।
2: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला खासदार क्रीड़ा महोत्सव इस वर्ष 31 मई से 7 जून तक आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक बड़ा मंच मिलेगा। युवाओं में फिटनेस, खेल संस्कृति और प्रतिस्पर्धात्मक भावना विकसित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। इस वर्ष महोत्सव की शुरुआत मैराथन से होगी। महोत्सव में कुश्ती, खो खो, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, कबड्डी, बास्केटबॉल, शतरंज, कैरम, वॉलीबॉल, योग, जिम्नास्टिक्स, स्केटिंग, टेबल टेनिस और सॉफ्टबॉल सहित विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में नागपुर के लगभग 23,800 खिलाड़ी भाग लेंगे। शहर के 20 विभिन्न खेल मैदानों पर रात्रकालीन सत्रों में 18 प्रकार के खेलों की कुल 5,450 प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 571 ट्रॉफियां, 6,700 मेडल और कुल 57,63,000 रुपए के पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी नागपुर से धनंजय वानखेड़े के साथ मैं हिमांगी कुलकर्णी।
3: And Goa is celebrating its statehood day today. Vice President C.P. Radhakrishnan participated in the statehood day celebrations at Kala Academy in Panaji and inaugurated the Mario Miranda exhibition, released a commemorative postage stamp and special cover on the renowned cartoonist. More details from our correspondent.
4: As a part of birth centenary celebrations of renowned cartoonist and painter Mario Miranda, the Directorate of Art and Culture has organized painting exhibition at Art Gallery Sanskriti Bhavan, Panji. Born in Lottolim, Mario Miranda captured the spirit of Goa through his iconic illustrations depicting village life, local traditions and everyday characters. His work earned international acclaim with exhibitions in over 22 countries. The Government of India honored him with Padma Shri, Padma Bhushan and posthumously Padma Vibhushan. Today, his art remains an enduring symbol of Goa's cultural identity and rich heritage, reflecting the unique character of the state as it celebrates 40 years of statehood. For Parikrama, this is Mahesh Sopade, Akashwani News, Panaji.
1: रेनू, अपने श्रोताओं को हमने देश की तो हलचल दे दी, अब उन्हें खेल के मैदान की भी जानकारी दे देते हैं। बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा।
3: And moving on to badminton, India's mixed doubles pair of Dhruv Kapila and Tanisha Krasto lost to Japan's Sayaka Hobara and Yuichi Shimogami in the semifinals of the Singapore Open tournament today. Meanwhile, men's double semifinal match is underway between Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty and South Korea's Seo Seung Jae and Kim Won Ho. And let's move on to our next segment of paying tributes and remembering those who passed away on this day and also jinka aaj birthday hai.
1: Ji.
3: So, let's begin with Pandit Devrat Chaudhary.
1: बिल्कुल, पंडित देवव्रत चौधरी की हम बात करेंगे जिनकी आज जयंती है। ये भारत के प्रख्यात सितार वादक थे। ये संगीत के सेनिया घराना से थे। इन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया। ये जयपुर के सोनिया संगीत घराने से थे, जिसे तानसेन परिवार के वंशजों ने शुरू किया था और जिन्हें

रागों की शुद्धता को संरक्षित रखने के लिए जाना जाता है। देबू चौधरी शिक्षक और लेखक भी थे, जिन्होंने 6 किताबें लिखी और कई नए राग बनाए। श्रोताओं, आइए आकाशवाणी के अभिलेखागार से आपको सुनाते हैं देबू चौधरी की एक सितार परफॉर्मेंस।

0: आज ऋतु पर्णो घोष की भी पुण्यतिथि है। ये बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध निर्देशक, लेखक और अभिनेता थे। चोखेर बाली, रेनकोट और अबोहोमन जैसी फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता ऋतु पर्णो घोष की ख्याति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत में थी। इन्होंने और इनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड 12 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। अपने 19 साल के करियर में ऋतु पर्णो घोष ने 19 फिल्मों का निर्देशन और 3 फिल्मों में अभिनय किया। और रेनु, इनकी एक फिल्म मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बिल्कुल हम अपने श्रोताओं को सुनाएंगे फिल्म रेनकोट का एक डायलॉग।
1: मैं मनोज।
2: मनोज कौन?
1: मैं मनोज, मनु, भागलपुर से। बकवास नहीं नीरू, मैं मनु, आवाज नहीं पहचानी?
2: भीगो मत, भीतर।

0: आज परेश रावल का जन्मदिन है। 30 मई 1955 को मुंबई में जन्मे अभिनेता परेश रावल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की फिल्म अर्जुन से, लेकिन परेश रावल की पहली सुपरहिट फिल्म रही नाम, जिसमें उनकी एक्टिंग को खूब सराहा गया। परेश रावल ने इसके बाद विलेन, सपोर्टिंग एक्टर और कई अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन आज भी इनके कॉमेडी किरदारों का कोई जवाब नहीं है। 1997 की फिल्म जुदाई में परेश रावल ने हसमुख लाल नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। रेनू, आई एम श्योर आपको भी याद होगा वो कैरेक्टर।
1: We all remember because परेश रावल, आप जब भी कोई मूवी देखते हैं और पता चलता है कि उसमें परेश रावल है, तो somehow you want to watch that movie because you are sure कि या तो उसे आपको हंसाया जाएगा या कुछ ना कुछ उसमें रहेगा,
0: अलग होगा, बिल्कुल
1: अलग होगा।
0: तो अपने श्रोताओं को इसी फिल्म का एक डायलॉग सुना देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
2: क्या देख रहा था?
3: घर देख रहा था।
2: क्यों देख रहा था?
3: ऐसे ही।
2: पोस्टमैन है? पोस्टमैन है?
3: मैं पोस्टमैन हूँ।
2: तो क्यों देख रहा था?
3: अरे घर रहने के लिए देख रहा था।
2: रहने के लिए देख रहा था? वो पड़ोस वाला चलेगा?
3: चलेगा।
2: ये चलेगा?
3: दौड़ेगा।
2: कितना किराया देगा?
3: जो आप कहेंगे।
2: कितना रुपया कमाता है?
3: रुपया मैंने कमाता, मेरा बाप कमाता।
2: कितने बाप है?
3: बाप तो एक ही होता है ना।
2: तो बाप को मैं बताकर देना करता है।
3: मैं कलाकार हूँ, कला से प्यार करता।
2: ये कला भाई कौन है?
3: मैं संगीत से प्यार करता हूँ। संगीत खाता हूँ, संगीत देखता हूँ, संगीत सुनता हूँ।
2: दिखता है?
3: हाँ।
2: संगीत दिखता है?
3: हाँ।
2: कैसा दिखता है?
3: पीछे से बहुत अच्छा दिखता है, सामने से पता नहीं।
2: और क्या क्या दिखता है?
3: सब कुछ।
1: And of course, this movie was also one of the best movies, I think. और इन्होंने काफी हमें हंसाया हर मूवी में जिसमें इन्होंने कॉमेडी रोल किया है। So today is the birthday of Resul Pookutty, who is an Indian film sound designer, sound editor and audio mixer. He won the Academy Award for Best Sound Mixing along with Richard

0: उम्मीद है जितनी ऊर्जा इस गाने में है उतनी ही ऊर्जा आपकी जिंदगी में भी बनी रहे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए सर फिरोजी और रेनू कटारिया को, परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, पर आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
1: यस वेरी ट्रू।
0: नमस्कार।

मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलो हर्ट्स और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप हमारा प्रसारण डीटीएच और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। 5 बजे हैं, हमारी सांध्यकालीन सभा अब आरंभ होती है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर और सूरजपुर में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये गर्जंडी सिंघरा भरदा पलहड़ा धर्मपुर गौरा गणेशपुर कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा कोटराही भगवानपुर नवापारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर लुंड्रा उदयपुर सीतापुर और मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये सकालो किशुनपुर गंगरी कुल्हाड़ी कंचनपुर पड़ोली जमीरा मसगा डांडपारा सायर कुमडेवा लक्ष्मणगढ़ उदरबसवार केदमा जगन्नाथपुर ढोढ़ागांव कठबुड़ा शिवनाथपुर घासीडीह दातीढाप घटगांव बड़डांड चोरकी पानी कंडराजा पेंट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी पत्थलगांव तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर जाम

0: चुआ, बिलासपुर, रानी कोम्बो, कुंजारा, लोटापानी, मयूर चूंदी, बरटोली, खड़ा माचा, चट्टान पारा, महुआ डी, खुटसेरा, पते बहाल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़ और कापू में हाथियों की कुल संख्या 90 है। ये आम गांव, पोटिया, ओंगना, चैनपुर, रुपुंगा, बोजिया, बनहर, औरानारा, बेहरा मार्ग के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और किंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये कुदवारी, सलिहा भाटा, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, जुनवानी, कुकरी कादर, फुलसर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये छर्रा टांगर, बंगूरसिया, जुनवानी, कशडोल, राटरोट, झिंगोल के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के बिलाईगढ़ में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये जोगी डीपा, सरगुली, धौरा भाटा, कोल डीपा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये मुरुमडी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी, दलदली, तालाझर, गौहा, बहरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराझर, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से बोल रहे हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का।

आइए पहले हम आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। स्पोर्ट्स स्कैन का समय होगा रात 8:30 पर। 9:30 पर सुनिएगा राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा स्मिता मोकाशी का ख्याल गायन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर होगा युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। इसमें अपन गोठ में चर्चा का विषय होगा मोर गांव के सुरता। साथ ही सुनेगा आप मन की चिट्ठी और माटी के गीत। लोक संगीत के कार्यक्रम में 6:30 पर कलाकार होंगे पीताम्बर यादव और साथी। इसी कार्यक्रम में 8:15 पर कलाकार होंगे सीताराम साहू और साथी। 7:21 पर किसान साथी सुन सकेंगे कार्यक्रम चौपाल। इसमें सुनिएगा बैकयार्ड मुर्गी पालन कड़कनाथ खेती संघ अतिरिक्त आय के साधन विषय पर आज की बात में चर्चा। किसानवाड़ी में 7:30 पर आज की सलाह का विषय होगा पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता के लिए आवश्यक तैयारियां। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक। चित्रपट संगीत का आप आनंद

ले सकेंगे। शाम 7 बजे, रात 8 बजे और रात 9:15 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब आपको बता दें कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में।

कल सुबह 11 बजे सुनिएगा मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश की जनता के नाम संबोधन। कल रात 8:30 पर होगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन अनुगुंज। ये कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 9:30 पर। अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा में कल रात 10 बजे सुनिएगा ए यराई से कर्नाटक सैक्सोफोन वादन। ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल सुबह 11:30 पर सुनिएगा मन की बात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के देश की जनता के नाम संबोधन का छत्तीसगढ़ी अनुवाद। वाचक स्वर होगा श्री संजय पांडे का। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण सुनिएगा कल रात 8 बजे। सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर का समय होगा कल सुबह 7:05 पर। आकाशवाणी के पूर्व उप निदेशक कार्यक्रम श्री लखनलाल भौर्य से ली गई भेंटवार्ता सुनिएगा कल सुबह 7:10 पर। प्रस्तुतकर्ता होंगे दीपक हटवार। बच्चों के कार्यक्रम किसले में कल सुबह 8:30 पर बच्चों की डायरी में चर्चा का विषय होगा मौसम परिवर्तन और हमारा स्वास्थ्य। साथ ही सुनिएगा बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण यही संपन्न होता है।

मीडिया व्यू और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 5:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: रेडियो की तीर सकलाय हमर जम्मो मयारू श्रोता संगवारी मल्ला मोर माने दुर्गा साहू के राम राम
1: संगमा महू अपन भाव धर के आगे हो तुहर मितान ऋषभ देव साहू के स्वीकारो जय जोहार। औ दुर्गा का हाल चाल जी, सब बने बने?
0: सब बने है संगवारी।
1: बने तो नहीं लगा थे तोर गोट मा, का सोचा था मने मन मा?
0: मैं हाँ सोचा था ऋषभ, गांव डहर मोर सुरता गांव डहर नाम गे है, माने गांव के सुरता करत हूँ। बड़ दिन हो गए पेपर चला थे, अभी गांव कोती गए नहीं हूँ कही के।
1: सिरतुन कहा सस दुर्गा ते हा, अपन गांव है त गांव होती
0: सिरतुन,
1: ओकर असन कहो सुख नहीं हुई। और वो गांव जिहा माटी मा खुशबू रही थे, रिश्ता मा अपनापन रही थे और मनखे के मन मा सच्चाई रही थे।
0: सिरतुन के ऋषभ, गांव हा सिर्फ एक जगह नो है संगवारी, भलुक एक आत्मा ले जुड़े एहसास आए, जिहां बचपन दौड़ थे, जिहां सुरता मन में खेल थे और जिहां ले निकले हर आदमी के मन जिंदगी भर उही माटक जाते।
1: हाँ संगी, आज शहर में बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, मॉल खुल गए, मोबाइल स्मार्ट हो गए, मगर गांव के वो सुख आज घलो आउट ऑफ कवरेज नहीं हुई।
0: मोर गांव में बिहान सूरज ले पहली कुकरा उठ जावत रहीस, कुकरा घड़ी नहीं देखे संगी, ओकर जिम्मेदारी रहीस, पूरा गांव ला उठाए के कुकड़ुक कुकरत ऐसे चिल्लावत रहीस जैसे गांव के सरपंच चुनाव जीत गए होए। हमन हा रजाई में ऐसे घुसे रहन जैसे कि निकलना मुश्किल हो रहा है।
1: आज के लड़का मोबाइल में भी दून है दुर्गा, हमन हा कंचा गिल्ली डंडा लुका छिपी खेलन और बरसा मा

0: मा चिखला मा फिसलन अउ गिर के दूसर ला घलो गिरा देवन, यही हा असली मनोरंजन रहा।
1: सिरतन ते गिरे से को घा?
0: हाँ गिरे हो ना।
1: और तोला गिरा है कोने को जन?
0: गिरा है भाई।
1: गांव मा हर घर अपन लगते संगवारी, कोनो भूख नहीं सुते। दाई मन ह एक दूसर के घर जाके कहते, थोकन आगी दे दे, थोकन धनिया दे दे, मिर्चा दे दे, पताल दे दे। माने पताल गोंदली के लेन देन चलत रही थे और वही में पूरा गांव के कहानी लेके आवत रहे थे। गांव के समाचार चैनल असन काकर घर में का बनीस, काकर गाय बियाईस, सब खबर ब्रेकिंग न्यूज असन उही मेले मिल पा जाते।
0: संगी हो, अभी घाम के दिन बादर है, फिर वर्षा के पहली बूंद मा माटी ले ऐसने खुशबू आवत रही जैसे धरती खुद इत्र लगाए हुए। हमन कागज के नाव बना के नाली में छोड़ देवन और जब नाव बह जाए तो लगते हमर सपना हा विदेश पहुंच गए।
1: का बात है,
0: बरसात मा गांव के रद्दा ला तो झन पूछ। चलना कम तैरना ज्यादा होए।
1: सिरतन संगवारी, गांव के तिहार के एक अलगे आनंद रही थे। कैसे रही सब?
0: सिरतन
1: हरेली मा गेड़ी चढ़े के, पोला मा बैला चलाए के, तीजा मा गीत के और दिवारी मा पूरा गांव हा चमक जाते। गांव मा तिहार हा सिर्फ मनाए नहीं जाए संगवारी हो, भलो जिए जाते।
0: सिरतन केस दुर्गा, और मोला सुरता है दुर्गा, हमर यहाँ रात मा डोकरी दाई कहानी सुनावे।
1: अच्छा?
0: राजा रानी के, जंगल के परी मन के, देवता और राक्षस मन के। हमन डर घलो जावन, फिर कहानी सुनना बंद नहीं करन। आजकल देख ले तब मोबाइल में हजारों वीडियो है, फिर डोकरी डाई के आवाज जैसन सुकून कहाँ पावे।
1: सिरतन भाई, गांव में मितानी के रिश्ता अपन आप माँ अनोखा रहते संगवारी। उमन मितान कम परिवार ज्यादा होते।
0: सिरतन
1: लड़ाई घलो करथन, फिर 2 मिनट बाद फिर संग में खेलथन। और शहर में पड़ोसी के नाम घलो पता नहीं रहे और वही गाँव में कुकुर घलो पहचान लेते।
0: और किसान बिहान ले रात तक मेहनत करते, धूप मा पानी ठन जम्मू जिनिस ला झेलते। हम थारी मा खाना देखथन मगर ओकर पाछू किसान के पसीना नहीं देखन। गांव सिखाते मेहनत के बिना जिंदगी नहीं चले।
1: सही सही संगवारी, जब मैं हाँ पढ़ाई खातिर गांव छोड़े ना ऋषभ, मोर दाई हा मोर माँ हा बस स्टैंड स्मॉल छोड़े बन।
0: अच्छा।
1: और जब बस में बैठे तो ओकर आँख ही भर गए रहीस। कहीस, देख बेटी जावा थस बड़े आदमी बनबे, फिर गांव ला झन भुलाबे। और मोला शहर आके समझ में आईस कि गांव छोड़ना आसान नहीं है संगवारी, फिर का करबे। गांव ला तो छोड़ के आए हूँ। जब मैं शुरू आए हूँ ना ऋषभ, जब हॉस्टल में रहे हो, तब मैं रात भर इतना रो कि का बताऊं। कि एक मतलब है, गांव ला भुलाना बहुत कठिन है।
0: सिर तो उनके हिस दुर्गा, शहर में सुविधा है लेकिन फुर्सत नहीं है। गांव में पैसा कम हो सकते, फिर अपनापन भरपूर मिलते। शहर के आदमी बेरा देखते और गांव के आदमी हाँ मन ला देखते।
1: सिरतन भाई, गांव में सियान मन के सियानी ले भरे रहते संगवारी हो। जब बाबा मन चलत फिरत रहते ना, तो वो हा केवल चले नहीं बल्कि चलत फिरत एक किताब होते। थोर किन बेरा निकाल के उखर मन संग बैठ बस, ऐसे ऐसे किस्सा निकलते कि झन पूछ, उठे के मन नहीं करे। उमन अनुभव के खजाना हवे, 2 बात में पूरा जिंदगी के ज्ञान दे देते।
0: संगी हो, गांव के पीपर के छाव, बरगद के दार, आम के बगिया, गांव के हर जम्मो पेड़ में बचपन हा लटके रही थे।
1: सिरतन भाई संगवारी हो, शहर के होटल में स्वाद तो मिल सकते, फिर दाई के हाथ के मया आहा नहीं मिले। गरम भात चना भाजी बड़ मीठा थे संगवारी हो।
0: एक दिन गांव गए हो दुर्गा मेहा, देखे हो जुन्ना पेट कट गए। कई झीन संगवारी मन शहर चल दिन, डोकरी दाई के खटिया हा खाली रही। समझ माईस बेरा हा कतका बदल गए।
1: सिरतन फिर सुरता हा नहीं बदले। आज के युवा मन गांव ले जुड़ना चाहिए संगवारी हो। अपन भाषा, अपन संस्कृति, अपन परंपरा ला बचाना जरूरी है। काबर की जेन आदमी अपन जड़ ला भूल जाते, वो हवा में उड़त पत्ता बन जाते।
0: सिर तो उनके है दुर्गा, मोर गांव, मोर माटी, मोर सुरता। आज घलो जब आखीला मून के सोचता हूँ ना, ता एकदम बचपन हाँ याद आ जाते, सुरता आ जाते। बचपन में जौन जगह गए हो, वो जगह आज घलो जाबे ना दुर्गा, तब मन हाँ कतका गदगद हो जाते।
1: एक मतलब है संगवारी हो कि गांव हाँ सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि गांव एक आत्मा है और यही सोनहा गांव के सुरता मन में बंधाए रही थे।

0: संगवारी हो अभी सुनत रहें माटी के गीत जिमा अपन शोर पिरो रहें खुशी दास मानिकपुरी और बिंदु देवांगन मन
1: औ संग में यहू संगी मन सुने बर चाहे रहीन बिलाई गढ़ले रोशनलाल देवांगन कौशल्या हेमलता डिंपल देवांगन मनहा रोहांसी ले डगेसर राम साहू नूतन साहू गौरव

0: घनश्याम जानवी साहू मनहा देवरी भाटापारा ले गन्नूलाल रजा के आर साहू अश्वनी वर्मा और गणेश मिस्त्री मनहा रुआ बांधा सनिचरी बाजार भिलाई ले सुशील जैन कल्पना सौरभ शुभम श्रेया और सौर्य जैन मनहा
1: मिस सीमा
2: जी
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है रुकिए वरना घर आ जाएंगे
2: क्यों लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो
2: डिजिटल अरेस्ट
1: 1,00,000 बन जाओगे
2: इतने पैसे
1: अच्छा ठीक है एक लिंक भेजिए अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा
2: जेल तो तुम जाओगे तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता ये सब फ्रॉड है इसीलिए पैनिक ना करें पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें
3: हेलो मम्मा
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए सतर्क रहिए
6: ऋषभ मैं हाँ कुछ सुरता करत रहा
0: का सुरता करत है दूर
6: गांव के सुरता करत रहा अभी पहली कुछ देर पहले
0: हाँ
6: सिर तो ना
0: हाँ
6: वैसे मैं कहा था तोला कहीं सुरता हवे
0: का सुरता
6: ले बता संगवारी मन हा पियर पियर पातिल पठो है और मैं ओलकत का बेले धरे हूँ कि मोल पूछी था कि मैं हाँ पढ़ूँ कही के
0: ऐसे
6: माने आज हरे संगवारी चिट्ठी पाती के दिन
0: मतलब आज हरे क्रम आप मन की चिट्ठी
6: सिरतोन त संगवारी मन तो अगोरा करत है कि अपन समीक्षा ला तो पठो डारे हैं ना मन फिर हमार समीक्षा ला कतका बेर हमार संगवारी मन हा हमार तीर पठो ही कही के अगोरा करत है त संगी हो आप मन के ये अगोरा ला दुरिहावत हन और चलो शुरू करते हैं आज के क्रम आप मन के चिट्ठी।

0: दुर्गा, आपके हाथ मा पियर पियर पाती है दिखा थे, त झटकुन पट दर भाई, कौन संगी मन हा पाती पठो है और कहाल पठो पठो।
1: मैं तो कब क्या गोरा करा था कि मैं कत का बेर पाती पढ़ू कही के। संगवारी हो अब सुनथन, मोर हाथ में ये पहलिया पाती कौन संगवारी मन के ढार ले भेजे गे हावे तेला जानथन। त संगवारी मन अपन समीक्षा पाती पठो हावे हमर तीर नान घाट कातल बोर्ड ले, भगत सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत मन हा। और संगवारी मन हा लिखे हवे कि 23 मई के संगवारी मन हा सकारात्मक सोच ले लेके फैसला सही होते, ये बात के चर्चा करत युवानी के शुरुआत करेस हमर दो संगवारी नीलेश साहू और दामिनी सेन मन हा। माटी के गीत मा सुघर सुघर गीत सुने बर मिलिस और आप मन के चिट्ठी मा बहुत अकन ईमेल पत्र शामिल करिस। ये दिन के सुघर प्रस्तुति खातिर हमर संगवारी नीलेश साहू और दामिनी सेनला बहुत बहुत बधाई। यही क्रम मा हमर ओ संगवारी मन हा पाती पठो हवे, गंडई पंडरिया ले शिवा यादव, चिंटू तरुण चोवा राम यादव, महासमुंद ले भीष्मदास नर्मदा हिरमानी दीपक लक्ष्यदास मनहा, धरसीमा बस स्टैंड ले छेदूलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा यादव, रानू खुशी प्रवीण साहू इकबाल कुरैशी, दुर्गा पारा संतोषी नगर रायपुर ले छनूलाल यादव, पुष्पलता अर्पिता अभिनव बलदाऊ राजेश्वरी आस्था यादव, अनुराग अभिषेक डुग्गू कान्हा यादव, कोयलारी कंवर्धा ले कैलाश चंद्राकर, मुकुंद चंद्राकर, पुणेन्द्र चंद्राकर, शाहिल चंद्राकर कर मना, परसा टोला अंबागढ़ चौकी ले ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुषारनी पुरेंद्र मसिया मना, सहसपुर ले संगी मन है वह मोहित राम दुलीचंद सतीबाई साहू मन।
0: संगवारी हो आपके पातीला सुन के मन हा गदगद हो जाते। संगवारी हो सकारात्मक सोच एक ऐसे सोच आए जेकर ले लोगन ला सही दिशा मा चले बर रद्दा दिखाते और उही सच्चाई के रद्दा मा चल के ही सफलता ला प्राप्त करे जाते। संगवारी हो 23 मई दिन शनिवार के युवानी ला सजा के लाने रही से हमर कंपेयर संगवारी नीलेश साहू और दामिनी सेन हा। अब वो दिन के जम्मो क्रम ला बने आप मन हा ध्यान लगा के सुने और अपन प्रतिक्रिया ला पाती के माध्यम ले भेजे, ओकर बर आप जम्मो मन ला अंतस ले धन्यवाद है। आपके बधाई ला ये कार्यक्रम के माध्यम ले दामिनी सेनऊ नीलेश साहू करा।

0: अमरावतन।
1: ऋषभ, मोर हाथ में औपाती हवे हमार संगवारी मन के। संगवारी मन है खैरागढ़ राज लालपुर ले मोतीलाल भीमटे सुशीला मेघा नेहा यशो भीमटे संगी मन हा। और संगी मन बड़ मया ले अपन भाव ला पिरो हवे और अपन चिट्ठी ला हमारे तीर अमराए हवे। लिखे हवे कि 26 मई के युवानी ला अपन अंतस के विचार संग नवा रंग में सजा धजा के संझौती के बेरा मा लेके इन हमार मयारू संगवारी सुमित तिवारी और दुर्गा साहू। ये दिन के जम्मो क्रम हमला बड़ पसंद आईस। अपन गोट के क्रम में युवा पीढ़ी और छत्तीसगढ़ी संस्कृति के बारे में बड़ सुघर ज्ञान के गोट बात सुने बर मिलिस। सिरतुन में कहे जाए तो हमार संस्कृति है हमार धरोहर है, गिला बचा के रखबोन तभी चवैया पीढ़ी ला कुछ दे के जाबो। गोट बात बड़ निकला गिस। उही दिन क्रम माटी के गीत में सुनवाए जम्मो माटी के गीत बड़ मन भावन रहीस, हमार मन ला मोहि डारिस। क्रम सवाल जवाब में पाछू अंग माने 231 के जवाब सुन के हमर ज्ञान में बढ़ोतरी होइस और आगू अंग खातिर पूछे सवाल के जवाब ला खोजे बर हमन धर लेन। कुछ कुल मिला के कहे जाए ता आपके ये आज के युवाणी माने 23 मई के युवाणी हमर मन पर बड़ उपयोगी होए, एके संग ज्ञान और सीख ले भरे रही से। सुघर प्रस्तुति खातिर सुमित तिवारी और दुर्गा साहू माने मोला गाड़ा गाड़ा बधाई देवा थे। संग में हमार औ संगवारी मन हा अपन पाती पठोए हावे महमाया चौक मेघापारा ले राम कुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु दिव्या दीपांजलि पटेल, टेकलाल पटेल मनहा तेंदुभाटा मगरलोड जिला धमतरी ले उमेंद्र कुमार निषाद, महेश्वरी देविका नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर किशन भूपेश दिव्यांश शिवा निषाद मनहा, सलोनी राजनांदगांव ले पुरानिक राम साहू, सीताबाई प्रियांशु गौरव साहू, मड़ौदा जालबांधा ले पारक दास साहू, किरण सोनू रेशमा गुनीता साहू, महीदेही साजा ले हेमलता साहू, देव विशु विभू साहू मनहा, पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे, गेंदाटोला बाजार चौक ले अंजलि गुप्ता योगेंद्र योगिता गजेंद्र गुप्ता मनहा, भड़गा कोदवा गोडान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी मनहा, कुई ग्राम भंगीटोला ले लनका रामधुर्वे जामुनबाई फिरत रामधुर्वे मालती ध्रुव मनहा, धुर्रा बांधा भाटापारा ले संगी मन है प्रमोद कुमार साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार युवराज साहू मनहा, धमनी राजिम ले समेलाल धीवर मुन्नी गोविंद ममता कुणाल युवांश धीवर मनहा, कोल्हापुरी ले संगवारी मन है हमार सूरज भान कमलाबाई साहू मनहा।
0: संगवारी हो हमर संस्कृति ही हमर धरोहर है और यही धरोहर ला हमन ला बचा के और संजो के रखना बहुत ही जरूरी है। दुर्गा कैसे दुर्गा और यही गोट बात के संग युवानी ला धर के लाने रही से कंपियर संगवारी सुमित तिवारी और दुर्गा साहू हा। संगवारी हो युवानी के कार्यक्रम एक ऐसे कार्यक्रम आए जेमा आप मल्ला शिक्षा संस्कृति मनोरंजन के गोट सुने बर मिलते और ऐसने शिक्षा ला बगराए बर ये दिन क्रम सवाल जवाब के सुघर प्रस्तुति करीस जेमा आप मन हा अपन सही उत्तर भेजे हो और नवा सवाल ला सुने हो। संगवारी हो जब आप मन हा युवानी के जम्मो क्रम ला सुनते हो और अपन प्रतिक्रिया ला चिट्ठी पाती के माध्यम ले भेजता हो ता हमरो मन हा गदगद हो जाते। संगी हो ये दिन के आपके बधाई ला दुर्गा साहू करा यही मेर अमरावत हन।
1: हाँ संगवारी आओ... मैं तो अमृत हूँ आपके बधाई पाती ला आपला अंतस ले बड़कन बधाई आपोला। आप अतिक मन लगा के हमार कार्यक्रम ला सुने हो समीक्षा पाती पठो एक बार आपला अंतसले धन्यवाद।
0: औ सुमित तिवारी करन आपके बधाई ला ये कार्यक्रम के माध्यम ले अमरावत हन।
1: ऋषभ मोर तीरा औ पाती हावे हमार संगी मन के फिर मैं कहत रहे हूँ संगवारी मन हा गाना सुने बर बड़ा सोचत हुई कि सुनात नहीं है कही के पाती तो पढ़बो संगवारी हो फिर चलो आवा सुनथन मनोरंजन खातिर ये सुंदर अकर माटी के गीत ला।

0: संगवारी हो अभी सुनते हैं माटी एक सुघर अकन गीत ल कोयली बोला थे। सुर पिरोहीन हमार संगवारी यशवंत कुमार तेलासी और साथी मन हा
1: औ संग में यहू संगी मन सुने पर चाहरहीन जुनवानी ले सुरित रमेश साहू तारा विद्या जितेंद्र हिरेंद्र नीलकन सुनीता ऋषिवन चंद्रहा संजीव त्रिलोक रंजीत सिंह और राजा साहू मन हा चरोदा बार नवा पारा ले संगी मन सुने पर चाहरहीन नंद कुमार ठाकुर प्रमिला प्रियंका दीपक खुशबू ज्योति ठाकुर मनहा।
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
3: आंखों के

0: सुने पर चाहरी नंद कुमार ठाकुर प्रमिला प्रियंका दीपक खुशबू ज्योति ठाकुर मनहा।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
2: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
1: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आए पूर्ण जांच करवाएं।
2: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
1: 47 सालों से निरंतर सेवा में
2: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: ऋषभ, संगवारी मन हा मनोरंजन खातिर गीत तो सुन डरी, फिर आवा संगी हो आओ पढ़थन ये क्रम आपन के चिट्ठी मा चिट्ठी। हमार संगवारी मन के भेजे है हजदा नंबर 2 ले कमलेश साहू, दिलीप, प्रवीण, पायल, लक्ष्मी, गीतांजलि, पार्वती, टिकेश्वरी, आकांक्षा, नामेश, नोमेश्वरी, तुलसाराम साहू मन है। और संगवारी मन लिखे आवा ऋषभ कि 28 मई दिन गुरुवार के युवानी ला सजा के लाए रहन हमार दो संगवारी सुमित तिवारी और दामिनी सिन्हा। अपन गोट माँ जिम्मेदारी संग बूता करके गोट बात करी, माने जिम्मेदारी के संग बूता कैसे करे जाते एकर बारे में हमला बताइन। उही क्रम में हेलो मितान माँ श्रोता संगी मन के संग सुमित हा गोट बात करीस। श्रोता संगी मन के पसंद के गीत ला सुनाए, ओखर बाद क्रम अंतस के आरोबर भेजे श्रोता संगी मन के चिट्ठी ला शामिल करीस, जिन हमला बड़ सुघर लागिस, जे खातिर बर सुमित तिवारी और दामिनी सेन ला गाढ़ा गाढ़ा बधाई। ई क्रम संग हमारा संगवारी मन पाती पठो रिहिन चिरमिरी कुरशिया कालरी ले इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ राम सहोदर नारायण प्रसाद लहरे दिनेश कालिंद्री लहरे मनहा रुद्री ले चंद्रकांत आर्यनगर कोहका भिलाई ले उत्तम सिंह जंघेल अनिल अजीत आयुष नंदनी जंघेल मनहा।
0: संगवारी हो आपके पाती ला सुनथो तो मन हा गदगद हो जाते भाई। संगवारी हो 28 मई दिन गुरुवार के युवानी ला धर के लाने रही से कंपियर संगवारी दामिनी सेन और सुमित तिवारी हा जौन हा अपन गोठ मा जिम्मेदारी संग बूता करन ए विषय ला धर के लाने रही से। संगी हो कुन्हो बूता मा जिम्मेदारी रही तो वो बूता हा सुगर ढंग ले होही। और ये दिन संगी हो आप मन हा क्रम हलो मितान अउ माटी के सुघर सुघर गीत घलो सुनियो। और संगवारी हो आप मन हा ऐसने बने मन लगा के ध्यान लगा के युवानी के क्रम ला सुनथो और अपन अंतस के गोट ला पाती के माध्यम ला पठोथो। ओकर बर आप जम्मो मन ला अंतस ले धन्यवाद है। आपके बधाई ला ये कार्यक्रम के माध्यम ले दामिनी सेन और सुमित तिवारी करा अमरावधन।
3: ये तो रही संगवारी हो आप मन के चिट्ठी पाती जे हमर करा सिरा गे हावे। अब आगो कार्यक्रम बर आप मन अपन पाती पठो हो, अब पाती ला कैसे पठो हो कैसे ऋषभ अभी कर बार हमला बता लगी पता। तो जे संगवारी मन हा पहली ले पद पाती पठुआ थे उस संगवारी मन ला तो पता है, फिर जे नवा संगवारी मन हा अमर रेडियो तीर सकला होई उस संगवारी मन ला बता देथन कि संगवारी हो अपन चिट्ठी पाती कार्यक्रम के समीक्षा खातिर आप मन हमार पता लिख लाओ। जे संगवारी मन हा पत्र के माध्यम ले अपन समीक्षा पठो उस संगवारी मन बर हमार पता है, क्रम आप मन के चिट्ठी युवानी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक पोस्ट बॉक्स नंबर 97 संगवारी हो आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ पिन कोड हवा 492001। अजय संगवारी मन हा आधुनिक बेरा में ईमेल के माध्यम ले अपन पाती पठो ही उस संगवारी मन हमार ईमेल आईडी लिख लो yout9@gmail.com। सब्जेक्ट कोड हावे संगवारी हो जिला लिखे बर आपन बिल्कुल झन भुला हो, अगर आपन भुला जहो तो आपके जो पाती है वो है शामिल नहीं हो पाही। सब्जेक्ट कोड हावे y8। तसंगी हो क्रम आप मन के चिट्ठी इहे तक।

0: तो संगवारी हो ए हर तो बतावत है कि आमा खाथ हो कहके फिर आप मन का खाथ हो एला तो आप मन मोला पातिम बताओ संगवारी हो अभी चलत है वाकई में आमा खाए के दिन सब जन मैं तो खाथ हो संगवारी ते खाथस कि नहीं
1: खाथो ना
0: खाथस वो तो मैं देखे हो मी ही ला रहे हो तेला खाई से बा अपन नहीं खाए रही से
1: हमरो घर रू खाए बड़े जाग
0: हाँ तेने पैक तो धर के लाए रहे तब मैं बड़े कन खाओ नहीं
1: हाँ हाँ
0: हाँ हाँ कहा थे संगी हो आमा के सीजन है चला थे माने आमा बड़ फरत है भाई साल और आप मन तो चटनी डारे छो अभी हवा गरे राय नहीं है तझरे घलो नहीं कैसे ऋषभ
1: हाँ।
0: माने तुम्हारे घर रोक है ते दरी आबे तह धर के आबे चटनी डार हूँ तो आगे दरी ला हूँ तुर बस चटनी धर के आऊँ ठीक है
1: ठीक है
0: तो संगवारी हो एक तो छोटे छोटे आमा आते चुस्की आमा का थे
1: वाला हाँ।
0: खाहस
1: खाए हो ना
0: अब भी मी खवाओ तो खाहस
1: ओकर पाछू घलो खाए
0: खा डरेस ना कैसे लागते बता
1: सुगर लागते मीठ लागते
0: आमा मीठ नहीं खट्टा लागते
1: नहीं मीठा घलो रही थे
0: तो मैं खट्टा वाले खवाओ ना संगवारी
1: अच्छा
0: तो संगवारी हो आमा के बेरा चला थे खूब आमा खाओ फिर सेहत के घलो ध्यान रखो और आवा यही आमा ला सुरता कर सुनथा ने सुघर अकर माटी के गीत ला

0: ऋषभ, अभी खाए पिए में काका जी नहीं सावत बाजार में?
1: काका जी नहीं सावत है? सबले पहले जिनिस तो ये दे आमा आवत है।
0: आओ
1: आओ ते बता भाई काका जिनिस आवत है तेन ला।
0: माने आमा खावत हस डट के तय।
1: हाँ वही सीजने चला थे।
0: हाँ।

0: संगवारी हो भी अपन सुनत रहे सुघर कन माटी के गीतला जेमा अपन स्वर दे रहीन अमचिरी बाई और राजकुमार अग्रवाल मन हा
1: और सुने बर चारिन हमर संगवारी मन हा नवागढ़ कटेले नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा शारदा मयंक वर्मा मन हा रानीगांव नगरी ले खिलेश कुमार साहू चित्ररेखा शुभम सेजल कुमारदा जिला राजनांदगांव ले ताराचंद साहू ओम साहू माही धर्मेंद्र साहू बठेना पटल ले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा प्रहलाद राजेंद्र उमेश प्रमिला बंछोर मनहा लोरमी चचेड़ी ले कमलकांत मरावी प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी मनहा पुतकी कला कवर्धा ले राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर नयन पांडे रोशुमांशु पांडे मनहा जवाहरनगर दुर्ग ले आरसी कांबड़े करुणा मीना अश्वनी विपुल कांबड़े मनहा भरगा कोदवा गोडान ले श्याम सिंह मरावी राजकुमारी रानी रजनी राहुल पूजा मरावी भंगी टोला ले ननका राम धुर्वे जामुन फिरत राम मालती धुर्वे गंदा टोला बाजार चौकले बीरेंद्र कुमार अंजनी योगिता गजेंद्र कुमार गुप्ता मनहा कोरासी भैसाले पवन कुमार साहू क्रांति देवी पंकज सुष्मिता दीपिका साहू अडार नांदघाटले माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश वर्मा बागबारा भदरसीले पन्नालाल सेन खुशबू तारा सेन कौशल सेन मनहा सालेभाटा महासमुंद ले जीत ध्रुव केवल ध्रुव किरण दिव्यांशी खेमू ध्रुमनहा
0: संगवारी हो गांव के वातावरण हा कतका सुघर रही थे ना बिहनिया बिहनिया चिरई चिरगुन मन के कलरव हा कतका मन ला भा लेते ना दुर्गा
1: सतन संगवारी भाई बचपन में हमू मन हा जब बिहनिया बिहनिया उठन ना त सबले पहली गांव में एक ठो एहे चले का पानी भर एक चलन बोरिंग रहा है पहली हाँ। नल तो रहीस नहीं है तसूत उठ के आंखी रम जात वो बर्तन खाली रहा है सब लधर और बोरिंग में जा पटक माने वो पानी भर बैठ जा और संग में है ता दाई मन हा गोबर कचरा करे तो मला करत देखन ता गोबर उबर था कैसे
0: सिर तो उनके दुर्गा ते है तो महुला बचपन के सुरता देवार डरे हमू मन हा बचपन मा हमार घर के ब्यारा मा बैला गाड़ी मा धान ला मिंजन और वो गाड़ी मा बैठ के बैला मन ला खेदे मा बहुते मजा आवे
1: सिरतन संगवारी गांव के सुरता करत हस त चल सुना था तुल माटी के सुघर अकन गीत ला

0: संगवारी हो अभी आप मन सुनत रहे सुघर कन माटी की गीतला जेम अपन स्वर देरिन भगत साहू और साथी मन हा
1: और सुने बर चारिन संगवारी मन हा पीपर पारा पालचुवाले मोंगली उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानु दिवाकर योगिता नितिन वंशिका दिवाकर मन हा नगर घोड़ा छत्तीसगढ़ी कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मीना देवी जागेशपुरी ट्विंकल डिम्पल मीनाक्षी गोस्वामी मन हा
0: धरती मैया के कोरा मा हमन सब हन खिलौना धरती मैया के कोरा मा हमन सब हन खिलौना आज हन त कल नहीं हन का कबरई का बिछौना
1: अपन मन के पीरा ला हाँसी मा उड़ा ले हाँस ले गोठिया ले दुख सुख के चार बात संगवारी संग बांट ले।

0: संगवारी हो भी आप मन सुनत रहे सुघरकन माटी के गीत ला जेम अपन स्वर दे रहीन सावित्री कहार औ नकुल जायसवाल मन हा
1: सिने पर चारिन संगी मन हा लोहारीडी जिला कवर्धा ले अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी ललिमा खुशान निशान मन हा रिंगनी

0: व्यक्तिगले दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, सर डोंगरी पिपरियाले, दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू मनहा, जय किशन कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू मनहा। संगवारी हो, अभी गाना सुनें सुंदर अकन हासले गोठियाले। ता आप मन घलो हासत रहो, गोठियावत रहो, और मस्त रहो, और सुनत रहो युवानी, और अपन समीक्षा पाती अपन अंतसले पठोवत रहो। हमला आपके पाती के अगोरा घलो रही। अहो बेरा कहा थे कि हमर जाए के बेरा हो गए के कैसे ऋषभ। तसंगी हो जाए के पहली जान लेथन काली के कार्यक्रम।
1: संगवारी हो, काली के कार्यक्रम रही हिंदी मा, जेमा क्रम रही आजकल और विशेष कार्यक्रम।
0: तसंगी हो अपन संगवारी
1: ऋषभ देव साहू और
0: दुर्गा साहूला देवा विदा। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6 बजने को हैं समाचार। अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: ये आकाशवाणी है। अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
2: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण

0: के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है। म्यांमा के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमा के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथक्वालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
2: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर सुनना।

0: अरे सुमित, तुमने बाइक इधर क्यों मोड़ दी?
1: अरे इसी रोड पर ही तो हमको जाना है यार। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: हेलो
0: सुमित, ये तुम क्या कर रहे हो?
1: हेलो, अरे बात कर रहा हूँ यार, मुझे बात तो करने दे।
0: सुमित, तुम Hello? गाड़ी रोक कर भी तो बात कर सकते हो।
1: अरे छोड़ ना यार, मैं तो चलती गाड़ी में ही कॉल अटेंड कर लेता हूँ। हेलो।
0: अरे सुमित।
1: कौन? संदीप।
0: सुमित देख के।
1: हाँ बोल यार।
0: सुमित
1: कब आना है?
0: अरे देख के सामने।
1: ठीक है, और कौन आएंगे?
2: सुमित आज इस दुनिया में नहीं है और उसका दोस्त घायल है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल ना करें। खुद के और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें।
3: मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट होने के बाद बीमा कंपनी वाले क्लेम देने में बहुत देर कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं?
4: अरे जो सामान मैंने खरीदा वो तो खराब निकला, बेचने वाला इसे वापस नहीं ले रहा है, अब मैं क्या करूं?
5: मेरी बहन के ससुराल वाले उसे रुपयों के लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। इस मुसीबत से मैं उसे कैसे बचा?

ऐसी कोई भी परिस्थिति कभी भी किसी के भी जीवन में आ सकती है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की जानकारी सबको होनी चाहिए। हमारे संविधान में क्या है, किसी भी विवाद या परिस्थिति में समाधान का प्रावधान, जानने के लिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर और प्रदेश के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर रविवार शाम 6:30 बजे समन्वित कार्यक्रम कानून की बात।

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग वसुधा सेन के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। नगरी निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रतिहा थम जही प्रचार। परंदिन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होय के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। अब समाचार विस्तार ले। प्रदेश में नगरी निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून के मतदान होही। ये चुनाव मनबर प्रचार के आज आखिरी दिन हरय। आज रतिहा 12 बजे ले प्रचार थम जही। एकर बाद प्रत्याशी मन घर घर जाके संपर्क करही। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग डहार ले देगे जानकारी के अनुसार नगरी निकाय मन में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायत मन में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी के प्रक्रिया पूरा होय के बाद पंच के 640 पद पर निर्विरोध निर्वाचन हो गए रहिस। उन्हें सरपंच के 15 पद पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न होए है। शेष 34 पद पर मतदान होही। ऐसने जनपद सदस्य के 10 पद पर 1 जून के मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थान पर मतदान होही। नगरी निकाय चुनाव पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम ले और पंचायत चुनाव पर मतपेटी के माध्यम ले मत डाले जाही। राज्य निर्वाचन आयोग मतदान पर सबो तैयारी पूरा कर ले है। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय। 1 मई ले शुरू होए जनगणना के पहलिया चरण में 92% ले ज्यादा काम पूरा हो गए है। प्रदेश में जनगणना पर 48,782 ब्लॉक बनाए गए रहिस। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल है। यही आधार में प्रदेश में 80 लाख ले ज्यादा मकान बन के आंकड़ा आगू आए है। ये मकान बन के पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड के हिस्सा बनत है। आज आखिरी दिन शेष बाचे घर मन में जाके प्रगणक मन आंकड़ा अपडेट करीन। जनगणना के दूसरिया चरण अवैया बच्छर 1 फरवरी ले शुरू होही। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। बच्छर 1826 में आज के दिन हिंदी भाषा के पहलिया समाचार पत्र उदंत मारतंड प्रकाशित हो रही। हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव के आयोजन करेगी। ये कार्यक्रम के शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय करीन। समारोह ला संबोधित करत हुए मुख्यमंत्री हकीन की मीडिया के सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति ला ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार लगलो आत्ममंथन और बेहतर कार्य

0: के दिशा प्रदान करथे। ओमन किहिन की पत्रकारिता ह राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाए हे। कार्यक्रम ला वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार के जी सुरेश घलो संबोधित करीन। अतिथि मन के स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ह करीन। ये मौका में मुख्यमंत्री ह पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देवैया वरिष्ठ पत्रकार मन ला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले सम्मानित करीन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई हा किहिन हे कि उखर पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून ले सक्रिय हो जही। आवेदन करे के इच्छुक विद्यार्थी मन के उत्तर पुस्तिका मन के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करे बर ए पोर्टल शुरू करे जाथे। एखर ले मूल्यांकन के सर्वोच्च मानदंड स्थापित होही। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा छठवीं में प्रवेश पर 26 जुलाई के आयोजित होवैया लिखित परीक्षा ला स्थगित कर दी गई है। सिख धर्म के पांचवा गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के मौका में गुरुद्वारा मां शबद कीर्तन के आयोजन करे जाते। एकरे संग राहगीर मल्ला भीषण गर्मी में शरबत पिला के गुरु के बलिदान के स्मरण करे जाते। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहादत दिवस में उनला भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हौ।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बाढ़ बाती समाचार को ती राज्य सरकार हा चालू वित्तीय बच्छर मा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सब्बो जिला मल्ला 2,670 करोड़ रुपया ले ज्यादा के केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी करे हे। ये राशि SNA स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम ले जिला मल्ला आबंटित करे गए हे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय किहिन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 ले ज्यादा पक्का आवास के निर्माण करे जाते। ओमन बतायन कि पाछू ढाई बच्छर में 1,60,000 ले ज्यादा आवास पूर्ण कराए जा चुके हैं। राज्यपाल रमन डेका आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिया गरियाबंद जिला के अधिकारी मन के बैठका लीन। बैठका में ओमन स्वास्थ्य शिक्षा स्वच्छता जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन समेत अलग अलग विषय मन ऊपर चर्चा करत हुए अधिकारी मल्ला जन प्रतिनिधि मन के सहयोग ले विकास कार्य मल्ला प्रभावी ढंग ले संपादित करे ऊपर जोर दीन। राज्यपाल हा रेत के अवैध खनन ऊपर रोक लगाए और वैज्ञानिक और व्यवस्थित खनन व्यवस्था सुनिश्चित करे बर घलो किहिन। ओमन किहिन कि किसान मल्ला प्राकृतिक खेती और हाइड्रोपोनिक्स खेती अपनाए बर प्रोत्साहित करे जाए। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण ले सम्मानित तिजन बाई के तबियत बिगड़े के बाद उनला हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराए गए हैं। चिकित्सक मन बतायन कि उखर स्वास्थ्य में सुधार हुआ थे। डॉक्टर मन के टीम लगातार उखर स्थिति ऊपर नजर रखे हुए है। तिजन बाई के अस्वस्थ होए के सूचना मिले के ऊपर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल दूरभाष में तिजन बाई के परिजन मल्ले बातचीत कर उखर हाल चल जानी। ये दौरान उमन भरोसा दिलाईन कि राज्य शासन तिजन बाई के चिकित्सा और जरूरी सहायता पर पूरा संवेदनशीलता के संग खड़े हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और NHM के अधिकारी और कर्मचारी मल्ला 6,00,000 रुपया के निशुल्क लाइफ टाइम इंश्योरेंस कवर मिली। स्वास्थ्य विभाग एक बारी में बैंक ऑफ इंडिया के संग MOU करे के अनुमति दे है। ये सुविधा उन NHM अधिकारी मल्ला मिली जिखर वेतन खाता बैंक ऑफ इंडिया में संचालित है। सामान्य मृत्यु के स्थिति में ये बीमा कवर प्रदान करे जाही। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हकीन है कि ये पहल ले NHM के हजारों कर्मचारी मल्ला सामाजिक सुरक्षा के अतिरिक्त लाभ मिली और उखर परिवार मल्ला आर्थिक संबल घलो मिली। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के आज दूसरा दिन हरे। महोत्सव के उद्घाटन काली राज्यपाल रमेन डेका करीन। ये मौका में मन किहीन कि छत्तीसगढ़ में

0: आम उत्पादन और मैंगो टूरिज्म के अपार संभावना हे। ओमन किसान मन ले पारंपरिक खेती के संगे संग आधुनिक तकनीक मन ला अपनाए और आम के वैल्यू एडिशन ऊपर ध्यान दे के आह्वान करें। ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है कहिन कि किसान मन के आय ला बढ़ाए में आम के खेती है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकत है। महोत्सव में देश भर के 250 ले ज्यादा किस्म के आम प्रदर्शित करेंगे है। ये महोत्सव काली इतवार तक चलही। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहा ले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाही। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र एके संग्रह रिले करही। ये बखत के अंक मा सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के संबंध में जानकारी दे जाही। आखिर मा प्रमुख समाचार एक घो फेर। नगरी निकाय और पंचायत चुनाव पर आज रथिया थम जही प्रचार, परंदिन 1 जून के हो ही मतदान। छत्तीसगढ़ में चलत जनगणना के पहलिया चरण के आज आखिरी दिन हरय और हिंदी पत्रकारिता के 200 बच्छर पूरा होय के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब डहर ले आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव के आयोजन करेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:20 होने को हैं। संस्कृत में समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
2: ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। म्यांमारस्य राष्ट्रपतिः मिन आंग लाइंग इत्यसौ अद्य 5 दिवसीय भारत यात्रायै बिहारस्य गयां संप्राप्तः। तेन महाबोधि मंदिरस्य दर्शनं कृतम्। ऋतु विज्ञान विभागेन उक्तं यत् वायुमंडलीय परिस्थितिभिः अनुमीयते यत् दक्षिण पश्चिम प्रावेट आगामिषु 4-5 दिनेषु केरलस्य तमिलनाडोः च कतिपय भागेषु आगमिष्यति। अमेरिकायाः रक्षामंत्री पीट हेक्सेत इत्यसौ अवोचत् यत् यदि संधेः प्रयासाः विफलाः भविष्यन्ति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्य कार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटके कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे विधायक दलस्य नेतुः चयनाय उपवेशनं प्रवर्तते। निवर्तमान मुख्यमंत्रिणः सिद्धारमैया वर्यस्य त्यागपत्रं राज्यपालेन थावरचंद गहलोतेन पूर्वमेव स्वीकृतम्। उपवेशनस्य अनन्तरं अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी इत्यस्य सचिवः रणदीप सिंह सुरजेवाला वार्ताहरान् संबोधयिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् अस्मिन् उपवेशने डीके शिवकुमारः औपचारिकरूपेण विधायकदलस्य नेता चयनितो भविष्यति। इतः पूर्वम् अपि डीके शिवकुमारः राज्यपालम् अमिलत्। उपवेशनस्य अनन्तरं प्रशासनस्य रचनायै अपि सः राज्यपालाय प्रतिवेदनं दास्यति। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अद्य नोएडायाः सूरजपुरस्थितस्य लोहम इति समवायस्य भ्रमणम् अकरोत्। अयम् समवायः महत्वपूर्ण खनिनाम् उन्नत सामग्रीणां च उत्पादनं विदधाति। अत्रावसरे श्री वैष्णवः अवोचत् यत् लिथियम बैटरी स्थायी चुंबक इत्येतौ आधुनिक प्रौद्योगिक्यां महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः परिकल्पना वर्तते यत् एतेषां निर्माणं भारते स्यात्, एतेषां प्रौद्योगिक्यः विकासः स्वदेशस्तरे भवेत्। श्रीवैष्णवेन उक्तं यत् अस्याः परिकल्पनायाः अनुरूपं लौहं नामकेन समवायेन सफलतापूर्वकं जटिल प्रौद्योगिकी विकसिता।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
2: म्यांमारस्य राष्ट्रपति

0: इति चेत् अमेरिकायाः सेना ईरानं विरुध्य सैन्यकार्याचरणं विधातुं पूर्णरूपेण सन्नद्धा वर्तते। अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू अद्य सूचितवान् यत् प्रथमवारं भारतीय हज मिशन संस्थया हज समन्वयस्य संचारस्य च उत्कृष्टतायै सऊदी हज उमराह मन्त्रालययोः प्रतिष्ठितौ लाबाट्यूम पुरस्कारौ प्राप्तौ। सामाजिक संचार माध्यमेन श्री रिजिजू अकथयत् यत् 26,000 हज यात्रायाः मुख्य चरणस्य सफलता अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालयस्य भारतीय हज समित्याः सऊदी अरब देशे भारतीय राजदूतस्य नेतृत्वे भारतीय हज मिशन इत्यस्य जेद्दाह नगरस्य महाव्यवस्थापकस्य च मध्ये अविच्छिन्न समन्वयं प्रतिबिम्बयति। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी चिराग सेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपांत्य चक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडायां अद्य भारत इंग्लैंड दलयोः द्वितीया 20-20 स्पर्धा भविष्यति। इयं स्पर्धा ब्रिस्टल नगरे भविष्यति। भारतीय समयानुसारेण सायं 7 स्पर्धा आरप्स्यते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:30 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज कलाकार हैं पीताम्बर यादव और साथी। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कमला देवदास के स्वर में पीताम्बर यादव की ये रचना।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं 6:27 से लेकर 6:30 तक विद्युत में अवरोध आ जाने के कारण आप हमारा प्रसारण नहीं सुन पाए, इसका हमें खेद है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। लीजिए आप सुनिए दीनदयाल कावड़े के स्वर में विष्णु यादव की ये रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार थे पीताम्बर यादव और साथी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
6: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
5: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
6: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
5: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
6: क्यों?
5: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
7: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
7: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
10: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
10: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
10: आकाशवाणी से।
7: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
11: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस

0: क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में नगरीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायतों के आम और उपचुनाव के तहत 1 जून को मतदान होगा। इन चुनावों के लिए प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज रात 12 बजे से प्रचार थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी घर घर जाकर संपर्क करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों में कुल 240 और त्रिस्तरीय पंचायतों में कुल 392 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंच के 640 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया था। इस तरह से 1 जून को 107 पदों के लिए मतदान कराया जाएगा। वहीं सरपंच के 15 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन सम्पन्न हुआ है। शेष 34 पदों पर मतदान होगा। इसी तरह जनपद सदस्य के 10 पदों के लिए 1 जून को मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के तहत पार्षद के कुल 71 और अध्यक्ष पद के 5 स्थानों के लिए मतदान होगा। नगरीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से और पंचायत चुनाव के लिए मतपेटी के माध्यम से मत डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। 1 मई से शुरू हुई जनगणना के पहले चरण का 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। प्रदेश में जनगणना के लिए 48,742 ब्लॉक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में औसतन 165 मकान शामिल हैं। इसी आधार पर प्रदेश में 80 लाख से अधिक मकानों का आंकड़ा सामने आया है। इन मकानों का पूरा विवरण पहली बार डिजिटल रूप में सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है। आज अंतिम दिन शेष बचे घरों तक जाकर प्रगणकों ने आंकड़े अपडेट किए। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 1 फरवरी से शुरू होगा। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। वर्ष 1826 में आज ही के दिन हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी रायपुर में पत्रकारिता गौरव मार्तंड उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मीडिया की सकारात्मक आलोचना केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार को भी आत्ममंथन तथा बेहतर कार्य की दिशा प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता ने राष्ट्र निर्माण और सामाजिक परिवर्तन में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।
1: वैसे तो रायपुर प्रेस क्लब का एक बहुत ही अच्छा इतिहास रहा है और पूरे छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता जगत में एक नया आयाम स्थापित करेगा ये उत्सव और हमारे पत्रकारों के और अनुभव बढ़ेंगे और पत्रकारों को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिनका हम लोगों को मार्गदर्शन मिलते रहता है।
0: कार्यक्रम को वित्त मंत्री ओपी चौधरी और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर केजी सुरेश ने भी संबोधित किया। अतिथियों का स्वागत रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश के सभी जिलों को 2,677 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय और राज्यांश राशि जारी की है। ये राशि एसएनए स्पर्श मॉड्यूल के माध्यम से जिलों को आवंटित की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में हर दिन 1600 से अधिक पक्के आवासों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा है कि यदि किसानों को खाद की कमी है और इस संबंध में शिकायत मिलती है तो केंद्र सरकार इस कमी को दूर करने का हर संभव प्रयास करेगी। आज भिलाई प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि टिकाऊ कृषि के लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतर विकल्प है। केंद्र सरकार इसे बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि जिन राज्यों ने अभी तक कृषि रोडमैप तैयार नहीं किया है वहां इसे प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इससे कृषि क्षेत्र के कमियों की पहचान कर उन्हें दूर करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया जा सकेगा।
2: हमारा तो प्रयास रहेगा कि यहाँ कृषि रोड मैप बने और यहाँ जो किसानों को असुविधा अगर है तो शिकायत करे, माने हम लोगों को खबर कर, और हम लोग प्रयास करेंगे किसानों को खाद की कमी न हो। हाँ, उसकी समस्याओं को दूर भगाने का भारत सरकार भरपूर प्रयास करेगी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की

0: पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। सिख धर्म के पांचवें श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस के अवसर पर गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही राहगीरों को भीषण गर्मी में शरबत पिलाकर गुरु के बलिदान का स्मरण किया जाता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री गुरु अर्जुन देव जी के शहादत दिवस पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है।
1: आज उनके शहादत दिवस के अवसर पर सत-सत नमन करते हैं, उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। और सिख समाज बहुत प्रारंभ से ही जिनका देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान है, बड़े वीर होते हैं, साहसी होते हैं, अनेकों उदाहरण हैं।
0: प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजनबाई की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हाल ही में एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने बताया कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखे हुए है। तीजनबाई के अस्वस्थ होने की सूचना मिलने पर संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने दूरभाष पर तीजनबाई के परिजनों से बातचीत कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य शासन तीजनबाई की चिकित्सा और आवश्यक सहायता के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अंबिकापुर, कोरबा, गौरेला, पिंडरा मरवाही और कोंडागांव सहित कुछ जिलों में आज तेज हवा और अंधड़ के साथ बारिश होने के समाचार मिले हैं। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में ओलावृष्टि भी हुई है। वहीं कई स्थानों पर पेड़ और खंभे भी गिर गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। वहीं कोंडागांव जिले में भी तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। चिपावंड गांव में 2 दर्जन से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा लखनपुरी, बड़े सिलाटी और बड़े कनेरा में भी कुछ मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव हो रहा है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने आज लोकभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरियाबंद जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने पर जोर दिया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के अधिकारियों और कर्मचारियों को 6 लाख रूपये का निःशुल्क लाइफ टर्म इंश्योरेंस कवर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU करने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी उत्कृष्ट योजना के तहत चालू शैक्षणिक सत्र में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए 26 जुलाई को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। जशपुर के खारीबहार गांव में कृषि विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई कर अवैध उर्वरक भंडारण का खुलासा किया है। जांच के दौरान एक मकान से 342 बोरी ऑर्गेनिक उर्वरक बरामद किया गया है। जांजगीर चांपा जिले के चांपा और पिसौद में कृषि विभाग ने खाद दुकानों से 2600 बोरी से अधिक खाद जब्त कर इन दुकानों को सील कर दिया है। और रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में इन दिनों राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के लिए आज रात थम जाएगा प्रचार, परसों 1 जून को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ में चल रही जनगणना के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रायपुर प्रेस क्लब द्वारा आज राजधानी में पत्रकारिता गौरव मारतंड उत्सव का आयोजन किया गया। और प्रदेश में कोरबा, अंबिकापुर, गौरेला, पेंड्रा सहित अनेक स्थानों में मौसम में आया बदलाव, तेज हवा के साथ हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही

0: यह आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7 बजे हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए विश्व रूपम फिल्म का ये गीत कमल हासन और शंकर महादेवन की आवाजों में। गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीतकार हैं शंकर एहसान लॉय।
1: देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना देना

0: व्याकुल व्याकुल राधे का मन है, राधे के मन में वो मोहन है, जिस मोहन का श्यामल तन है, मदिरा सागर नयन नयन है, गिरधारी बन कुंज पे रैया, किसन कन्हैया बंसी बजैया, गोकुल के वो है मुरलीधर, राधा झूमे जिनकी लय पर, कहती घूमे गिरधर गिरधर, राधा के गिरधर आए,
1: देखो राधा
0: आए, हाँ गिरधर आए।

देवदास। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, पंडित बिरजू महाराज, कविता सुब्रमण्यम और माधुरी दीक्षित की आवाज़ों में। गीतकार हैं नुसरत बद्र और संगीतकार हैं इस्माइल तरपार।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजों में लीजिए सुनिए बाजीराव मस्ताने फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा, संगीतकार हैं संजय लीला भंसाली।

0: ആകാശവാണി അറ്റ് 90.
1: कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए गदर, एक प्रेम कथा फिल्म का ये गीत प्रवीण सुल्ताना और अजय चक्रवर्ती की आवाज़ों में। आनंद बख्शी का लिखा गीत है, संगीत है उत्तम सिंह का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 7:21 हुए हैं। लीजिए सुनिए किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल।

0: रुकमणी दीदी राम राम।
1: राम राम लक्ष्मी का संगे संग हमारे कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगी मल्ला हमारे दोनों के राम राम, राम। लक्ष्मीकांत
0: हाँ
1: देखा भी गर्मी के बेरा चलत है और ये मौसम में कतकोन खेती किसानी ले जुड़े काम बूता होते जेला हम कर सकथन माने अवैया फसल ले के तैयारी कर सकथन कोनो भी काम के पहली ले तैयारी कर ले काम करे में आसानी होते अच्छा ढंग ले होते और नुकसान हो के संभावना कमती रही थे।
0: सिर तो उनको ठिया है दीदी और देख बहुत जरूरी होते कि हम तैयारी करन कोनो भी जिनिस के तैयारी करथन तो हमला ओकर करे के क्रम मालूम पड़ जाते कि पहली का करन फिर ओकर बाद का करन हाँ जैसे खेती किसानी के गोट करथन तो अभी हमर खेत खाली हवे ग्रीष्मकालीन गहरी जोताई के हमर गोट विशेषज्ञ मन बताते हैं हमला तो गहरी जोताई कर लेहन बीज बर बीज के जो उपचार है ओला करके रख लेहन हाँ कोनो संगवारी यह बोथे रोपा लगाते तो कोनो आओ कुछ है
1: हाँ ना और देख यही बेरा में हमन मेड़ वेड़ बना के काम तको कर सकते हैं नहीं
0: तो वैसने अब हम गोट करथन है ना तो एकर ले का होते हमारे मेहनत के जो हमला पूरा पूरा लाभ होते आर्थिक आमदनी के रूप में मिलते और हमला हम जब क्रम ले कोनो जिनिस के तैयारी कर रथन तो हमला नुकसान देखे ला नहीं मिले हम जब बहुत झन सुखी जिंदगी चाहथन हमार किसान भाई मन सुखी रहे आर्थिक मजबूती रहे मन में है तो एक बार जरूरी है कि हम खेती किसानी के संग संग एक जो जुड़े व्यवसाय हवे वहूल अपना मन
1: लक्ष्मीकांत सही कह देख हमार किसान भाई मन खेती किसानी के संगे संग अतिरिक्त आय कमाए बर अलग अलग तरीका अपनावत है इमा बैकयार्ड मुर्गी पालन एक बहुत ही लाभकारी कम जो है उमा लागत रही थे और काम है ये लाभकारी काम है हमारे किसान भाई मन अपन घर के पिछला हिस्सा में कम खर्चा में मुर्गी पालन करके बढ़िया आमदनी कमा सकते खासकर कड़कनाथ मुर्गी के मांग आजकल बहुत बढ़ गए है काबर एक

0: जौन मांस हो गया या अंडा है, बहुत ही लाभकारी और स्वास्थ्यदायक होते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा होते हैं।
1: कड़कनाथ मुर्गी हमर छत्तीसगढ़ में जोन पालते हैं हाँ, ये मुर्गी के रंग काला होते और एमा अबड़ गुड़ वाले माने जाते हैं है ना, एक कारण ले बाजार में एक दाम भी साधारण जोन मुर्गी हवा ओकर ले ज़्यादा ही रहते हैं इसे कहते हैं ना। और खेती के संग संग एकर जब पालन करथन हम कड़कनाथ जोन हवा एकर पालन करथन तो अपन आर्थिक मजबूती भी हमला एकर ले मिलते हाँ। और एला जब पालथन हम तो हमार विशेषज्ञ हमला दो चार बात के हमला ध्यान रखे के हमला सलाह देते हैं। तो जैसे स्थान चयन के गोट हो गए
0: हाँ।
1: मुर्गी पालन बर हम साफ सुथरा हाँ और सूखा जगह जो हवा वो जरूरी होते तो पानी के निकासी के व्यवस्था सुघर रहे हमार है ना, मुर्गी पालन में कोनो भी प्रकार के हमला समस्या झन देखे ला मिले।
0: इसने लक्ष्मीकांत देख सेट निर्माण के बात करें तो बांस है, लकड़ी है और टीन ले सस्ता हम सेट बना सकते हैं और एमा का है हवा और प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए। ऐसे चूजा चयन के बात करें तो स्वस्थ और टीका जेला लगे हुए वो वाले चूजा हम चूज करें।
1: टीका लगे रही चूजा माँ तो ओला बीमारी हो के जो संभावना है वो कम हो ही और बीमारी कम हो ही तो हमार जो ये मुर्गी पालक जो किसान हमें वो भाई ला नुकसान कम देखे ला मिली हैं। और इमन के आहार व्यवस्था गोट करथन ना दीदी तो कड़कनाथ मुर्गी ला अनाज मकई चावल के भूसी और दाना हम खिला सकथन।
0: ऐसे लक्ष्मीकांत टीकाकरण हो गया तो बीमारी लिए बचाव बर समय समय में टीका लगवाना चाहिए। अधिक लक्ष्मीकांत बैकयार्ड मुर्गी पालन के महत्व के कहूँ बात करें हमन तो खेसी के संगे संग मुर्गी पालन एक अतिरिक्त आय के साधन आए है नी, कहूँ कोनो भी कारण ले फसल खराब हो गए उमा नुकसान हुआ थे तो मुर्गी पालन ले आर्थिक सहायता हम ले सकते हैं है नी, और घर के महिला और युवा मन घलो ये काम ला आसानी ले कर सकते हैं।
1: ये तो बड़ सुघर कहे कि हम किसान हन खेती करथन संग संग भाई के आड़ मुर्गी पालन करथन, कहूँ किसानी में हमला नुकसान होइस तो हम एकर ले हम
0: ओकर भरपाई कर सकते
1: हैं। ये तो बड़ सुघर गोठियाए और महिला युवा मन बर रोजगार के तो बात आए है हाँ। तो सबले पहली बड़े बात यह है कि हम कम पूंजी में कम लागत में इला शुरू कर सकथन। और दूसरी है दीदी कि जैसे हम मुर्गी पालन करथन तो जैविक खाद है जोन हाँ, जैविक खाद है इकर जोन मल हावे हाँ, खेत बर उत्तम खाद माने जाते हैं इसे हमारे विशेषज्ञ बताते हैं। तो खेत में डाल के माटी हम उपजाऊ बना सकथन हाँ। और मुर्गी पालन के लाभ के गोट करथन तो हमार जो जैविक खाद है, कीट नियंत्रण है, परिवार के पोषण है, सब तो गोट है ही है, फिर हमार बर रोजगार भी कम होगी हाँ। और कीट नियंत्रण के जैसे गोट करथन
0: तो देख का होते कि मुर्गी खेत के कीड़ा मकोड़ा खा लेते हैं जेन ले फसल हमार सुरक्षित रहते हैं। जैसे अभी अपन बार गोट करो कि हमार परिवार ला पोषण मिलते हैं और रोजगार कम होते, बेरोजगारी कम होते हैं, रोजगार बढ़ते। और लक्ष्मी का तो गोट बात करबो फिर सुन लेते हैं ये संदेश।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आँखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
2: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 बच्चर ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: दीदी देख, गर्मी के दिन चला थे और गर्मी माँ हमार जोन किसान भाई हैं अपन स्वास्थ्य के हम ख्याल रखन तो हमार बड़ लाभ के होते। हम लोग कोनो ठंडा ठंडा जीनी समला कहीं रद्दा रेंगत हम लोग मिला थे हाँ, कहूँ जगह आम के पन्ना गन्ना रस थे सब ला हम लेवन तेकर ले हम लोग गर्मी झन लागे गए हैं। और
4: देख जी ये गर्मी के बेरा होते ना लक्ष्मीगान, ये सब बड़ नुकसान के होते तो है नहीं। अब हम तो अपन सुरक्षा कर सकते हैं, संगे संग हम हमला अपन पशुधन के तक सुरक्षा करना है नहीं।
3: ओकर जो रहे के ठौर है
4: ओला
3: सुघर बनावन, हवादार बनावन और ठंडा बनावन। बोरा हवा बोरा ले पानी में बढ़िया सुघर भिगा के ओकर जो रहे के ठौर है ओकर ऊपर ढाक देवन, ठंडा ठंडा हवा चलही तो हूँ गर्मी कम लागी। और गर्मी जैसे बाढ़ते हमार पशुधन मन के हमार विशेषज्ञ मन बताते कि जो दूध के क्षमता है प्रजनन क्षमता में बहुत
4: कमी आ जाते
3: हैं, समस्या थे, तो ये सब ल सुधारे खातिर हमारा पशुधन के ध्यान रखना है।

0: ओखरमन के आहार व्यवस्था के बात करें ता शुद्ध पानी के व्यवस्था करें और ऐसने खुला झन छोड़न है नी जैसे
1: सुते जाए के पहले जैसे रथिया हम सुते जाथन ता सुते के पहले हम ओकर मन बर ओकर जो कोटना हवे तेला पानी से ओकर चुन चारा है ओकर से भर देवन गर्मी दिन में प्यास हमन ला जैसे लगते वैसे पशुधन ला भी लागी। और दीदी हम यू संगवारी मन यू कहना चाहबो कि हमार जन पशु पक्षी है ओकरो खातिर दाना पानी की व्यवस्था अपन घर में करें सुघर। और अभी बरसात आवै है त पेड़ पौधा सुघर बाढ़ते बरसात में हाँ त हम जोन पेड़ लगाए के तैयारी है ओला पहले ले करके राखी गड्ढा खोद के राखी पेड़ पौधा कहाँ ले कौन सा पौधा कहाँ लगाना है कहाँ ले ओकर पेड़ या बीज हम पाबोन है ना या रखे होबो तो ओला कैसे कौन ढंग ले काम करना है कर बारे में सुघर देखन कि पेड़ पौधा के बड़ कटाव हुआ थे गर्मी हर बढ़ा थे दिनों दिन है ना
0: कह के मतलब जैसे हम शुरू में गोट बात करें तैयारी तो कोनो भी चीज के पहले लिए तैयारी हम कर लेवन तो अच्छा होते।
1: अब देख गोट बात करत हमारे किसानवाड़ी के बेरा हो गए है। आप प्रायोजक हैं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

और लक्ष्मीकांत गोट बात तो कर डालें खेती किसानी के में, है ना, खेती किसानी के संग हम कौन कैसे उपरहा ले सकते हैं। अब सुन लेते हैं एक सुघर गीत, तो संगी हो सुनते हैं सुघर गीत, जो लगा है कृष्ण कुमार पाटिल और साथी मन।

0: अभि सुनेन सुघ्घर गीत जलगाए रहन कृष्ण कुमार पाटिल और साथी मन।
1: संगवारी हो, हमार आज के जो सलाह क्रम हवे ओमा पशु मन खातिर वर्षभर हरा चारा के उपलब्धता और आवश्यक तैयारी लेके हमार गोट बात हो है डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक जी तीर। आप मन वरिष्ठ वैज्ञानिक हवे राष्ट्रीय तनाव जैविक प्रबंधन संस्थान बरौंडा रायपुर में। आप मन तीर हमार गोट बात हो है आवाय गोट ले सुनथन। किसान संगवारी हो, बेरा बेरा माँ हम आप मन खातिर सुघर जानकारी लेके आथन। ऐसने आज हम गोट करबो खरीफ के मौसम माँ उगाए जाने वाला प्रमुख हरा चारा फसल ऊपर। अब ये विषय माँ जानकारी दे खातिर हमार बीच विशेषज्ञ हवें डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक। आप मन वरिष्ठ वैज्ञानिक हवें राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान बरौंडा रायपुर माँ। त सबले पहली साहब आप मन के कार्यक्रम में स्वागत करत हन। राम राम।
2: राम राम
1: साहब, सबले पहली तो हम आप मन ले जानना चाहबो कि उन्नत चारा फसल सामान्य चारा फसल ले कैसे अलग होते और अच्छा होते। दूसर चीज, किसान मन ला उन्नत चारा फसल काबर उगाना चाहिए।
2: देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी उन्नत चारा फसलें वो किस प्रकार से जो सामान्य चारा फसलें से अलग होती हैं। एक तो ये है कि उन्नत चारा फसलों में प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं
1: जी।
2: और ये चारा फसलें बहुत रसीले और सुपाच्य होते हैं। जब पशु को खेत से ही पौष्टिक हरा चारा मिल जाता है तो बाजार से जो महंगे पशु आहार है उसको खरीदने की ज़रूरत भी कम हो जाती है, तो जिससे किसान है उसके पैसे की बचत होती है। इसके साथ साथ इसके उपयोग से पशुओं के स्वास्थ्य एवं प्रजनन क्षमता है उसमें भी सुधार होता है। और जो दुधारू पशुओं हैं अगर उनको हम यह उन्नत चारा फसल खिलाते हैं तो यह देखा गया है कि तुरंत ही उनके दूध में 15 से 20% की भी वृद्धि होती है।
1: जी, ये तो बड़ सुघर बताए।

0: आपमन खरीफ में मुख्य रूप ले कौन कौन से चारा फसल उगाए जा सकते छत्तीसगढ़ के प्रमुख जो उन्नत किस्म है यूल बता रहे थे।
1: मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्य रूप से तीन प्रकार की जो चारा फसलें हैं उनको हम खरीफ में उगा सकते हैं खरीफ के मौसम में। तो जो पहली श्रेणी है अदलहनी चारा फसलें, इसमें मक्का ज्वार एवं जो बाजरा है इसको किसान भाई उगा सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे दलहनी चारा फसलें की, तो इसमें मुख्य रूप से लोबिया एवं ग्वार आते हैं
0: जी।
1: तीसरी जो श्रेणी है चारा फसलों की वह है बारहमासी या बहुवर्षीय चारा फसलें। अगर किसान भाई इन चारा फसलों को उगाते हैं तो इनसे वर्ष भर उनको चारा मिलता है। तो इसमें दो फसल मुख्य है, पहला है संकर नेपियर और दूसरी है गिनी घास
0: जी।
1: अब यह तो हुई चारा फसलें जो हम उगाते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से जो किस्में किसान भाइयों को उगाना चाहिए, जैसे ज्वार, इसमें जो एक कटाई वाली किस्म है पीसी 6, पीसी 9,

0: बाजरा है इसको किसान भाई उगा सकते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे दलहनी चारा फसलें की, तो इसमें मुख्य रूप से लोबिया एवं ग्वार आते हैं
1: जी।
0: तीसरी जो श्रेणी है चारा फसलों की वह है बारहमासी या बहुवर्षीय चारा फसलें। अगर किसान भाई इन चारा फसलों को उगाते हैं तो इनसे वर्ष भर उनको चारा मिलता है। तो इसमें दो फसल मुख्य है, पहला है संकर नेपियर और दूसरी है गिनी घास
1: जी।
0: अब यह तो हुई चारा फसलें जो हम उगाते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्य रूप से जो किस्में किसान भाइयों को उगाना चाहिए, जैसे ज्वार, इसमें जो एक कटाई वाली किस्म है PC6, PC9, PC23, HC136, HC260, HC171, पूसाचरी एक। वहीं जो दूसरी श्रेणी है बहु कटाई वाली किस्मों की, इसमें मीठी सुधान KOFS 29, CSH 20 MF, हरा सोना है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको बाजरा की किस्मों के बारे में
1: जी।
0: तो इसमें जो एक कटाई वाली चारा किस्म है वह है राज बाजरा 2, और बहु कटाई वाली किस्मों में जायंट बाजरा PoEgro 9, मोती बाजरा CO8, APFB 2 है। मक्का की किस्मों के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे जो पुरानी किस्म है मक्का की जो बहुत पहले से उगाई जा रही वह है अफ्रीकन टाल, इसके बाद J1006, विजय, मोती, जवाहर, कंपोजिट, VL54, APM 8, प्रताप मक्का शरी। यह मुख्यतः मक्का की किस्में हैं जो छत्तीसगढ़ में उगाई जाती हैं। दलहनी कुल की फसलों में जो दूसरी फसल है पहले लोबिया, इसकी जो मुख्य किस्म है EC4216, FC8, बुंदे लोबिया 1 एवं बुंदे लोबिया 2, कोहिनूर जो कि भारतीय चरागाह एवं चरागाह अनुसंधान संस्थान झांसी से विकसित की गई है, किसान भाई इसको भी उगा सकते हैं। ग्वार में HFG 119, बुंदेल ग्वार 1, बुंदेल ग्वार 2 एवं बुंदेल ग्वार 3 आदि प्रमुख किस्में हैं। तीसरी जो श्रेणी है जैसे मैंने आपको बताया है बहुवर्षीय चारा फसलें, इसमें संकर नेपियर है, इसकी जो पहली किस्म है NB21, CO1, CO2, CO3, CO5, CO6, PBN 83, IGF 3, 6, 7 एवं 10, इन किस्मों को किसान भाई अपने यहाँ छत्तीसगढ़ में उगा सकते हैं। गिनी घास में हामिल, बुंदेल गिनी 1, बुंदेल गिनी 2, CO1, CO2, PGG 14, यह मुख्य किस्में हैं जो गिनी घास की हैं, जिनको किसान भाई अगर चारा फसल उगाना चाहते हैं तो अपने खेतों में लगा सकते हैं
1: जी। ये पूछना चाहत रहें कि चारा फसल उगाए खातिर प्रति हेक्टेयर किसान भाई मन ला कितना बीज की जरूरत होती
0: है? इसकी मात्रा ज्वार जो प्रमुख चारा फसल है, अगर बड़े दाने वाला बीज है तो इसकी 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं छोटे दाने वाला बीज है तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बाजरा के लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, वहीं मक्का के लिए 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: अब दूसरे नंबर पे जो हमारी दलहन कुल की फसल है लोबिया, इसके लिए 30 से 35 किलोग्राम और ग्वार के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है
1: जी।
0: बहुवर्षीय चारा फसलें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, पहली फसल है संकर नेपियर और दूसरा है गिनी घास, तो इनका मुख्य रूप से खेतों में लगाने के लिए बीज की नहीं उसके बदले में जड़युक्त कल्लों का प्रयोग किया जाता है
1: जी।
0: तो संकर नेपियर के लिए 35,000 और वहीं गिनी घास के लिए 40,000 प्रति हेक्टेयर जड़युक्त कल्लों को किसान भाई को आवश्यकता होगी एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए
1: जी। चारा फसल में खाद और उर्वरक डालथन जब तो उकर मात्रा कितना होना चाहिए और कब देवाना है?
0: यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि चारा फसलों को अच्छी खाद देने पे ही अच्छी पैदावार प्राप्त होती है
1: जी।
0: तो जो हमारी पहली फसल है ज्वार, चाहे वह एक कटाई वाली हो चाहे दो कटाई, सर्वप्रथम इसमें हम 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। एक कटाई किस्म में 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, एवं सिंचित दशा में अगर हमारे पास पानी की सुविधा है तो

0: बुआई के 30 दिनों बाद 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर हम फसल को देते हैं
1: जी।
0: दो कटाई या बहु कटाई वाली जो किस्में अगर हम लगाते हैं तो इसमें 60 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास हम बुआई के समय में देंगे एवं प्रत्येक कटाई के बाद में 50 किलोग्राम नत्रजन हम पर हेक्टेयर के हिसाब से फसल को देते हैं
1: जी।
0: अब बात आती है बाजरा की, इसमें भी हम सर्वप्रथम 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं और एक कटाई वाली किस्मों के लिए 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देते हैं बुआई के समय में एवं फिर से अगर सिंचित अवस्था हम फसल को लगाते हैं तो 30 किलोग्राम नत्रजन बुआई के एक महीने बाद फसल को देते हैं
1: जी।
0: अगर हमने दो कटाई वाली या बहु कटाई वाली किस्मों को लगाया है तो इसमें भी 50 किलोग्राम नत्रजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर बुआई के समय देते हैं एवं प्रत्येक कटाई के बाद में 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से फसल को देते हैं
1: जी।
0: मक्का में 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद की आवश्यकता होती है और 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन बुआई के समय हम देते हैं
1: जी।
0: और बुआई के एक महीने के बाद जब फसल की अवस्था फसल जब घुटने की हाइट तक आ जाती है तो उसमें भी हम 40 से 50 किलोग्राम नत्रजन देते हैं
1: जी।
0: दलहनी जो फसलें हैं लोबिया, जैसे कि यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नत्रजन को अपने जड़ों में स्थिर करती हैं तो इनमें जो अदलहनी फसलें हैं उनकी तुलना में कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है। तो लोबिया में हम 7 से 8 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस बुआई के समय देते हैं। वहीं ग्वार में 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, नत्रजन 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बुआई के समय देते हैं
1: जी।
0: बहुवर्षीय फसलें जैसे कि अगर हम इनको एक बार लगाते हैं तो यह 3 साल तक चलती हैं तो इनमें जो गोबर की खाद की मात्रा है वह थोड़ा ज़्यादा होती है। बुआई के समय में 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद रोपाई के समय देते हैं
1: जी।
0: यह चाहे गिनी हो या संकर नेपियर हो दोनों में एक समान इनकी मात्रा रहती है। वहीं 60 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटास बुआई के समय देते हैं एवं प्रत्येक कटाई के बाद में 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा के अनुसार नत्रजन को हम संकर नेपियर एवं गिनी घास में देते हैं।
1: ये बताते हो चारा फसल बोए हैं खरीफ में तो एकर कटाई कौन समय हमला करना सही होते?
0: यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका
1: जी।
0: कि अगर हम समय से कटाई नहीं करेंगे तो इससे चारा फसलों की गुणवत्ता में भी कमी आती है। तो ज्वार की जो एक कटाई वाली किस्म है जब इसमें 50% फूल आ जाते हैं
1: जी।
0: तब हम इसकी कटाई करते हैं। वहीं जो बहु कटाई वाली जो हमारी किस्में हैं इसकी भी कटाई हम 50% फूल आने या बुआई के 60 से 70 दिन के बाद में करते हैं एवं जो अन्य कटाई है पहली कटाई के बाद में 45 से 50 दिन के अंतर पर हम दूसरी कटाइयों को करते हैं। बाजरा में भी एक कटाई वाली किस्मों की कटाई जब फूल आना शुरू हो जाते हैं तब करते हैं। उसी प्रकार से जो बहु कटाई वाली किस्में हैं उनकी भी कटाई जो पहली कटाई है हम जब फूल आना शुरू होते हैं तभी करते हैं जो कि 50 से 60 दिन बाद फसल की बुआई करने के बाद आते हैं। वहीं अगली कटाइयाँ 35 से 40 दिन के अंतर पे हम करेंगे
1: जी।
0: मक्का यह बहुवर्षीय तो नहीं होता है, इसकी एक ही बार में कटाई की जाती है। जब मादा मंजरियाँ आने लगते हैं और यह मुख्य तौर पर बुआई के 65 से 70 दिन बाद आती है उस समय पे हम मक्का की कटाई करते हैं
1: जी।
0: लोबिया और जो हमारे ग्वार हैं ये दोनों दलहनी फसलें हैं तो इन दोनों फसलों की कटाई हम बुआई के 60 से 65 दिन बाद फलियां बनना शुरू हो जाते हैं तब हम करते हैं। घास कुल की जो बहुवर्षीय चारा फसलें जो मैंने बताया है आपको संकर नेपियर या गिनी घास है
1: जी।
0: इनकी पहली कटाई दोनों फसलों की हम बुआई या रोपाई के 60 से 65 दिन बाद पहली कटाई करते हैं। वहीं जो अगली जो कटाइयां हैं वह 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते हैं। यह देखा गया है

0: कि प्रतिवर्ष हम शंकर ने पियरा गेनी घास से 6 से 8 कटाइया करके चारा प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी ये तो बड़ सुगर बताया है आपमन कि कौन कौन से घास आवे वाला कब कब हम काटन हमारे पशुधन बा, ये जानना चाहत रहे हैं कि कटाई में देरी हो जाते या समय में चारा नहीं काट पाए तो ओकर का नुकसान हो सकते हैं हमला, या कोनो चारा विशेष में हमला कोनो नुकसान हो ही तो बताते।
0: जी मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसान भाई चारा फसलों की कटाई समय पर नहीं करते हैं
1: जी
0: तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं। एक तो यह होगा कि इन फसल का जो पोषण स्तर है वह कम हो जाएगा, इसके साथ साथ उत्पादन भी घट जाती है
1: जी।
0: और पशुओं को कम गुणवत्ता वाला चारा मिलता है जिसे जनरली यह देखा गया है सामान्य तौर पे पशु खाने में अरुचि दिखाते हैं
1: जी।
0: और उनका स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है तथा दूध उत्पादन में भी गिरावट आती है
1: जी।
0: इसके साथ में एक दूसरी फसल है ज्वार, अगर हम इसकी पहली कटाई कर लेंगे तो इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा रहता है क्योंकि ज्वार में धुरीन रसायन पाया जाता है। अगर इस फसल की कटाई समय से पहले की जाती है बुआई के 20 से 40 दिन के बीच में तो इसमें इस रसायन की मात्रा बढ़ जाती है। जब पशुओं को यह हरा चारा दिया जाता है तो पशुओं को सांस लेने में दिक्कत होती है एवं उल्टी होती है और यहाँ तक भी देखा गया है कि पशुओं को मृत्यु भी हो जाती है
1: जी।
0: तो इसलिए किसान भाइयों को चारा फसलों की कटाई के समय में विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि उनको उनके पशुओं को उत्तम चारा मिले एवं किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना होए।
1: ये बताता हूँ किसान भाई उगाए गए जो चारा फसल है ओकर लिए प्रति हेक्टेयर कितना चारा उपज, कौन कौन से चारा ला प्रति हेक्टेयर कितना कितना मात्रा उपज के रूप में पा सकते।
0: मैं आपको बताना चाहूँगा ज्वार में जो एक कटाई वाली किस्में हैं इनसे 350 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वहीं जो बहु कटाई वाली किस्में हैं इनसे 500 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा की प्राप्ति होती है
1: जी।
0: जो दूसरी फसल है बाजरा इसमें एक कटाई वाली किस्मों से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वहीं जो बहु कटाई वाली किस्में हैं उनसे 500 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाइयों को चारा मिलता है
1: जी।
0: दलहन वाली जो चारा फसलें हैं लोबिया से 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, वहीं ग्वार से 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा की प्राप्ति होती है
1: जी।
0: जो हमारी बहुवर्षीय फसलें मुख्य है शंकर नेपियर और जो गिनी घास हैं, शंकर नेपियर से 700 से 1700 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा उपज मिलता है 6 से 8 कटाई पे प्रतिवर्ष, और जो गिनी घास है उससे भी 600 से 1400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा की प्राप्ति होती है जो हम वर्ष भर में 6 से 8 कटाई करने पर हमें 600 से 1400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर चारा उपज की प्राप्ति होती है
1: जी। जी तो डॉक्टर साहब आप मन खरीफ के मौसम में उगाए जाने वाला प्रमुख हरा चारा फसल के ऊपर बड़ सुग्घर ढंग ले विस्तार ले आप मन जानकारी दे हो, आप मन के आए ले हमारे कार्यक्रम सुग्घर आते आप मन आए हो एक खातिर आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: आज की सलाहक्रम में अभी सुनें पशुओं के लिए वर्ष भर हरे चारे की व्यवस्था, ये विषय में जानकारी देवत रहे डॉक्टर विनोद कुमार वासनिक आप मन हो वरिष्ठ वैज्ञानिक राष्ट्रीय तनाव जैविक प्रबंधन संस्थान बरोड़ा रायपुर और गोट बात करते हैं लक्ष्मीकांत दुबे।

0: लक्ष्मीकांत
1: हाँ दीदी,
0: अब बेरा है कृषक प्रश्न मंच के, तो संगवारी मल्ला बता देथन आज के प्रश्न। संगवारी हो लिख ले रहो आज के प्रश्न। प्रश्न है, वर्ष भर उगाए जाने वाले चारा फसल कौन कौन से है।

0: प्रश्न सुनलेरो संगई हो, वर्षभर उगाए जाने वाले चारा फसल कौन कौन से हैं, और अब बता देते हैं पाछू हप्ता पूछे प्रश्न ओखर सही जवाब। पाछू हप्ता हमन प्रश्न पूछे रहन, गर्मी में मुर्गी मनला ज्यादा गर्मी ले बचाए खातिर का जिनिस ला अपनाना चाहिए। एक सही जवाब है बोरा ले छतला ढाकन बीच बीच में गीला करन, हवा खातिर पंखा कूलर के व्यवस्था करन। और सही जवाब भेजिए कौन संगवारी मन है।
1: सही जवाब भेजे हैं संगवारी मन बठेना पाटन जिला दुर्गले बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति वर्मा मुरली वर्मा अजीत अमित वर्मा मदनपुर कवाधा ले श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू सुलोचना साहू मानवेंद्र और राकेश साहू तेंदुभाठा मगरलोड जिला धमतरी ले हैं उमेन कुमार निषाद महेश्वरी देविका पोषण नूतन सुरेंद्र यशस्वी भास्कर और किशन निषाद संगवारी हो। सही जवाब खातिर गाढ़ा गाढ़ा बधाई।
0: लक्ष्मीकांत सुन लेते हैं एक ठन और सुघर गीत जिला गाए हैं पंचराम मिर्झा।

0: इस किसानवाणी प्रायोजक रहिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: संगवारी हो जाए के बेरा हुआ थे, जाए के पहले बता देथन काली के कार्यक्रम काली संझा बेरा आज के बाद के संग आज की सलाह क्रम में सुनू लागत और श्रम बचाव बर कृषि यंत्र के उपयोग और गीत संगीत घलो हो संगवारी हो तो देव विदा कार्यक्रम सुनिया जम्मो संगवारी मन ला लक्ष्मीकांत
0: और रुकमणी के राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम चौपाल, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में पहले सुनिए बाहर आने तक, इस फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और तलत अजीज की आवाजों में। इब्राहिम अश्क का लिखा गीत है, संगीत है राजेश रोशन का।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडेकर की आवाजों में संगीत फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं संतोष आनंद, संगीतकार हैं आनंद मिलिंद।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं सीताराम साहू और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए सीताराम साहू और साथियों के स्वरों में ये पारंपरिक विवाह गीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम, कलाकार थे सीताराम साहू और साथी। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8:30 होने को हैं। स्पोर्ट्स स्कैन कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शहनवाज खान और अर्जुनन रमन का शानदार प्रदर्शन, जीते स्वर्ण पदक। एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में गरिमा और दीक्षा ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड और भारत के बीच मुकाबला जारी। IPL क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का महामुकाबला गुजरात टाइटन से। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में, और भारत ने एशिया ओशोनिया चैंपियनशिप का खिताब तीसरी बार जीता। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स से, जहां कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी है। अलग अलग स्पर्धाओं में उन्होंने स्वर्ण तो किसी में रजत पदक अपने नाम किए। हांगकांग में चल रही एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में आज तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए कुल 3 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक शामिल है। पुरुषों के हाई जंप में भारत के बसंत 2.20 की ऊंची कूद लगाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं पुरुषों के लॉन्ग जंप में शहनवाज खान ने 7.84 मीटर की लंबी कूद के साथ स्वर्ण, और इसी वर्ग में जिथिन अर्जुनन रमन चंद्रशेखरन ने 7.66 की कूद के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इसी प्रतियोगिता में लगातार जो खिलाड़ी हैं उनका प्रदर्शन जारी है, अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहां हाई जंप पर पूजा ने कल राष्ट्रीय और मीट रिकॉर्ड को सुधार कर उसमें गोल्ड मेडल जीता था। वहीं उन्होंने सहाना कुमारी का नेशनल रिकॉर्ड भी कल अपने को तोड़ करके अपने नाम नया रिकॉर्ड कायम किया था। चलते हैं वियतनाम, जहां कुश्ती अंडर 17 का मुकाबला जारी है। वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के महिला वर्ग में गरिमा और दीक्षा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। सुनते हैं कैसा रहा कुश्ती खिलाड़ियों का प्रदर्शन।
1: एशियाई अंडर 17 कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अलग अलग श्रेणी में कई पदक अपने नाम किए। 73 किलोग्राम वर्ग में गरिमा ने मंगोलिया की नामुंत सेटसेक बेथबोल्ट को 18-6 से मात देकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं 43 किलोग्राम वर्ग में दीक्षा ने उज्बेकिस्तान की मुखलिसा मशारी पोवा को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर निशाना साधा। 40 किलोग्राम वर्ग में पलक ने चीन की मिन्या फांग को 6-2 से पटकनी देकर कांस्य पदक अपने नाम किया। वहीं 46 किलोग्राम वर्ग में अनामिका ने मंगोलिया की तनसर्मा बेटसूरी को 9-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। 53 किलोग्राम वर्ग में अक्षरा ने वियतनाम की थी होई थू बुई को 10-0 से हराया। वहीं साक्षी ने कजाकिस्तान की एरिना कोनी सोवा को 10-0 से हराकर पोडियम पर तीसरा स्थान हासिल किया। 61 किलोग्राम वर्ग में मान्या राजपूत ने कजाकिस्तान की ही एगेरिम पोलटोबे को 10-0 से हराकर एक और कांस्य पदक भारत के लिए जीता। उधर पुरुषों के 71 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अनुज ने तुर्कमेनिस्तान के मेकान हुदे बेरेन को 4-2 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। महिलाओं के टीम रैंकिंग में भारत पहले, वहीं पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में भारत दूसरे स्थान पर है। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन।
0: अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भी खिलाड़ियों का लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। वहीं अभी अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, जहां निकिता ने 39 किलो

0: किलोग्राम वर्ग में और अंतरा ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। सीधे लिए चलते हैं आपको इंग्लैंड के ब्रिस्टल में, जहां पर महिला क्रिकेट का T20 मुकाबला जारी है। ब्रिस्टल में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा महिला T20 क्रिकेट मुकाबला जारी है। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए हैं। भारत को इंग्लैंड ने 169 रन का लक्ष्य दिया है। भारत की ओर से अरुंधति रेड्डी ने 4 ओवर में 38 रन दिए। नंदनी शर्मा ने 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया। श्रेयंका पाटिल ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। श्री चरणी ने 4 ओवर में 6.2 की इकोनॉमी रेट से 25 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किया। इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर, श्रेयंका पाटिल ने वापसी भी की है और 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हराया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 60 विकेट पर 188 रन बनाए थे। जवाब में इंग्लैंड निर्धारित ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी थी। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 69 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप से पहले यह श्रृंखला बेहद महत्वपूर्ण है, जो कि ICC विश्व कप जो है 12 जून से इंग्लैंड में ही खेला जाना है और भारतीय टीम इस श्रृंखला में अपने कॉम्बिनेशन को आजमाना चाहेगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं IPL क्रिकेट की ओर, जहां IPL क्रिकेट के फाइनल में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में यह महामुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बेंगलुरु डिफेंडिंग चैंपियन है, वहीं गुजरात ने भी 2022 में ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं पूरे मैच का हाल।
1: टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान टीम की शुरुआत निराशाजनक रही। यशस्वी जायसवाल बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 1 रन बनाकर आउट हो गए। ध्रुव जुरेल भी 7 रन बनाकर कगिसो रबाडा का शिकार बने। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर बेहतरीन लय में दिखाई दिए और उन्होंने 47 गेंदों का सामना करते हुए 96 रनों की शानदार पारी खेली। वैभव ने अपनी इस पारी में 8 चौके और 7 छक्के लगाए। हालांकि रविंद्र जडेजा 35 गेंदों में 45 रन बनाकर नाबाद रहे। अंतिम ओवरों में डोनोवन फेरेरा ने आतिशी बल्लेबाजी का मुजाहिरा करते हुए 345 के स्ट्राइक रेट के साथ 11 गेंद में नाबाद 38 रन बनाए। राजस्थान रॉयल्स ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 214 रन लगाए। गुजरात टाइटंस की ओर से कगिसो रबाडा और जेसन होल्डर ने 2-2 विकेट लिए। 215 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की शुरुआत शानदार रही। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े। सुदर्शन 32 गेंदों का सामना करने के बाद 58 रन बनाकर आउट हुए। सुदर्शन लगातार दूसरी बार हिट विकेट होकर पवेलियन लौटे। वहीं गिल ने 53 गेंदों में 15 चौके और 3 छक्कों की मदद से 104 रन बनाए। गिल IPL प्लेऑफ में शतक लगाने वाले पहले कप्तान भी बने।
2: This is something else. It really is something else. What a 100. What a performance. Leadership at its absolute best.
1: जॉश बटलर 9 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि वॉशिंगटन सुंदर 9 गेंदों में 16 रन बनाकर नांद्रे बर्गर का शिकार बने। राहुल तेवतिया 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 17 रन बनाकर नाबाद रहे और टीम को जीत दिलाकर लौटे।
2: It's over now. Tapatia. And they'll march into Ahmedabad.
1: शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। IPL के प्लेऑफ मुकाबले में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी अब गुजरात टाइटंस के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंजाब किंग्स के नाम था, जिन्होंने IPL 2025 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ दूसरे क्वालिफायर में 204 रनों का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया था। IPL में महज तीसरा मौका रहा जब गुजरात टाइटंस ने 200 से ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफलतापूर्वक चेज किया। मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि फाइनल में हमारा पूरा ध्यान बेहतर क्रिकेट खेलने पर होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि अहमदाबाद में कल कौन सी टीम दूसरी बार ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी। एक तरफ जहां रजत पाटीदार के नेतृत्व वाली डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार दूसरी बार ट्रॉफी पाने के इरादे से उतरेगी, वहीं शुभमन गिल की लीडरशिप में गुजरात टाइटंस पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करना चाहेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: अब सीधे रुख कर लेते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर, जहां पर मेंस डबल्स जोड़ी ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन आज दिखाया। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में आज भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाए और किम वॉन हो को 21-19

0: 21-18 से हराया। वहीं मिक्स डबल सेमीफाइनल में भारत की जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो को जापान की साइका होबारा और युची शिमिगामी से हार का सामना करना पड़ा। इस जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 16-21, 21-17, 13-21 से हराया। पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और रजस प्रणय और आज तनिषा क्रेस्टो और कपिला के बाहर होने के बाद अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें मेंस डबल्स जोड़ी पर होंगी। अब सीधे रुख कर लेते हैं टेनिस की ओर, जहां फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में कल ब्राजील के जुआओ फोंसेका ने नोवाक जोकोविच को तीसरे दौर में हराकर प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। वहीं आज महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में अमांदा अनिसिमोवा और अरियाना सबालेंका अपने अपने मुकाबलों में चुनौती पेश करेंगी, जबकि इगा स्वायतिक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
1: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोंसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया।

0: जबकि ईगा स्वायतिक पहले ही चौथे दौर में प्रवेश कर चुकी हैं। आइए जानते हैं उलटफेर के इस दौर में कौन से नए खिलाड़ी उभर कर सामने आ रहे हैं।
1: फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट में ये दूसरा बड़ा उलटफेर है। नोवाक जोकोविच से पहले यानिक सिनर भी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। फोंसेका ने लगभग 4 घंटे 53 मिनट तक चले बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में जोकोविच को पराजित किया। शुरुआती दोनों सेट जीतकर जोकोविच मैच पर पूरी तरह से दबदबा बनाए हुए थे। इस दौरान जोकोविच कई बार थके हुए और शारीरिक रूप से परेशान नजर आए। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और निर्णायक 5वें सेट की शुरुआत में 3-1 की अच्छी बढ़त बना ली थी। फोंसेका ने फिर से वापसी की। उन्होंने आखिरी 8 में से 6 गेम अपने नाम करते हुए रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले जोकोविच को 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 से पराजित किया। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में एंड्री रूबेल को हराने के बाद ये किसी टॉप 10 खिलाड़ी के खिलाफ फोंसेका की दूसरी जीत है। जोकोविच के खिलाफ अपने पहले टूर लेवल मुकाबले में जीत हासिल करने वाले फोंसेका ने नया इतिहास रच दिया है। वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच को हराने वाले पहले युवा खिलाड़ी भी बन गए हैं। फोंसेका पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के चौथे दौर में पहुंचे हैं। अब क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए कल उनका मुकाबला 15वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूट से होगा। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: अभी हमें ताजा जानकारी मिली है, सबालिंका ने अपने मुकाबले में जीत दर्ज कर ली, वहीं अनिसिमोवा को हार का सामना करना पड़ा। भारत ने तीसरी बार जीता एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ने अल्ट्रा रनिंग में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए जापान के हिरोसाकी में हुई IAU एशिया और ओशिनिया चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की 24 घंटे दौड़ में भारत ने इतिहास रच दिया है। टीम ने न सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडल अपने नाम किए बल्कि पूरे व्यक्तिगत पोडियम पर कब्जा जमाया। अमर सिंह देवंदा ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। गिनो एंटनी ने रजत और सौरभ कुमार रंजन ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तीनों खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारतीय पुरुष टीम ने कुल 815.833 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये प्रदर्शन एशिया ओशिनिया स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर रहा और किसी भी एशियाई देश का IAU चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी माना जा रहा है। मुकाबले में जापान दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। महिला वर्ग में भारत ने कुल 667.722 किलोमीटर की दूरी तय कर टीम ब्रॉन्ज मेडल जीता। जापान ने गोल्ड और ऑस्ट्रेलिया ने सिल्वर मेडल हासिल किया। भारतीय महिला टीम की ओर से तेंजिन डोलमा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 228.939 किलोमीटर दौड़ लगाई और कुल मिलाकर चौथा स्थान हासिल किया। इसी के साथ उन्होंने नया भारतीय राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत ने 2022, 24 और अब 2026 में लगातार तीसरी बार 24 घंटे अल्ट्रा रनिंग एशिया ओशिनिया चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: बात कर लेते हैं महिला हॉकी पर। जापान के काकामिगाहारा में अंडर 18 महिला हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने मलेशिया को 2-1 से हराकर अपने अभियान का आगाज किया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज शिलोंग के JN स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एकीकृत आतिथ्य और खेल परिसर का उद्घाटन किया। बात कर लेते तीरंदाजी पर। स्लोवानिया के खामनिक में तीरंदाजी प्रतियोगिता के पुरुषों के रिकर्व वर्ग में भारत के सचिन गुप्ता फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में उनका सामना कल कजाकिस्तान के इल्फत अब्दुलन से होगा। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.aar@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार।

0: कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि डी के शिव कुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: जब मीटिंग आरंभ हुई तो सिद्धरमैया द्वारा एक लाइन का रेजोल्यूशन दिया गया कि CLP नेता का चयन का कार्य AICC को सौंप देना चाहिए। इसके बाद AICC जनरल सेक्रेटरी KC मेरोगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिद्धरमैया से अलग मुख्यमंत्री के कक्ष में बातचीत की। तब तक CLP मीटिंग रुकी रही। जब फिर से मीटिंग आरंभ हुई तो ये रेजोल्यूशन पारित किया गया कि डी के शिव कुमार नेता के रूप में चुने गए हैं। इसके बाद सभी विधायक राज्यपाल से मिले और डी के शिव कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाने के लिए वक्त मांगा। अब डी के शिव कुमार और अन्य मंत्रिमंडल के सदस्य June 3 को 4:05 पर शपथ ग्रहण करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी के सचेतक एग्री SS कृष्णमूर्ति ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और उनसे सत्तारूढ़ TVK द्वारा कथित तौर पर 4 विधायकों की खरीद फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि ये चारों विधायक ऑल इंडिया अन्ना DMK से इस्तीफा देने के तुरंत बाद TVK में शामिल हो गए। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि इन विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन करते हुए TVK सरकार के पक्ष में मतदान किया। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहाँ विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि AI और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है।
3: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2,00,000 शिकायतें दर्ज होती थी प्रतिवर्ष। आज उसकी बढ़कर के संख्या 25-30,00,000 होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव। और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश

0: के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
1: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहां से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें हैं जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें हैं जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसका प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज शाम श्री ऊ मिन से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को उनकी मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले दिन में म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि चिकित्सा वस्त्र, तकनीकी वस्त्र और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने की अपार क्षमता रखते हैं। विशाखापट्टनम में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत को वैश्विक विनिर्माण और नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। सरकार ने सोमवार से 31 अक्टूबर तक कपास के आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी रूप से छूट दी है। कपड़ा मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि ये निर्णय कपास किसानों और संपूर्ण कपास मूल्य श्रृंखला के हितों को सर्वोपरि रखते हुए लिया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान लागू किया गया ये उपाय कपड़ा उद्योग के लिए कपास की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है।
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है, ये अभियान अभी जारी है। इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है, इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.2 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बढ़ाने पर है। साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा था, आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है।

अपनी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। श्री सिंधिया ने कहा कि पत्रकारिता का इतिहास भारत का इतिहास भी है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय जागृति का एक आंदोलन है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने डिजी यात्रा ऐप के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक निर्बाध यात्राएं संपन्न कराने के लिए डिजी यात्रा टीम को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा है कि ये उपलब्धि निर्बाध और कागज तथा संपर्क रहित प्रक्रिया पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाती है। वर्तमान समय में डिजी यात्रा ऐप पर 38 हवाई अड्डे हैं और अगले वर्ष इनमें 27 और हवाई अड्डे जुड़ जाएंगे। पश्चिम बंगाल में स्वच्छता में सुधार और नागरिक समस्याओं का तेजी से समाधान करने के लिए एक नया स्वच्छ मोबाइल ऐप जारी किया गया है। आवासन और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने आज कोलकाता में इस ऐप को जारी किया। इस ऐप के जरिए नागरिक अपनी समस्याओं जैसे रुका हुआ पानी, कचरा या नालियों का फोटो अपलोड कर सकते हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निपोन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। अगले दो दिनों में ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने का अनुमान है। और अब बात खेलों की। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेउंग जाए और किम बॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गए। ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पांचवें ओवर में एक विकेट पर 34 रन बना लिए हैं। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहू मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लब्बैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। इस वर्ष लगभग 1,75,000 भारतीय हज के लिए गए थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कर्नाटक में डी के शिव कुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में बादल गरजने और बिजली चमकने के साथ ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के डबल्स फाइनल में पहुंचे और ब्रिस्टल में दूसरे महिला टी20 क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए काला बाजार फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत में पिरोया है SD बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इंदिवर का लिखा गीत है, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:30 होने को हैं। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम युवा भारती कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका आकाशवाणी की अखिल भारतीय युवा पत्रिका युवा भारती में। पत्रिका जो हर बार लेकर आती है नए विषय, नए स्वर, नई सोच और नई उड़ान। आज का अंक खास है कई मायनों में, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन लोगों की, उन विचारों की और उन रास्तों की जो युवा भारत को आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे जोश के साथ। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब न टीवी था, न इंटरनेट, न स्मार्टफोन, तो लोग सच कैसे जानते थे, अपनी बात कैसे कहते थे और अन्याय के खिलाफ आवाज कैसे उठाते थे? जवाब है एक अखबार से, एक छापाखाना, थोड़ी सी स्याही और बहुत सारा साहस। उदंत मारतंड। 30 मई 1826 को तत्कालीन कलकत्ता से शुरू हुए इस अखबार के संपादक और प्रकाशक थे कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कलकत्ते में वकालत करते थे। यही था हिंदी पत्रकारिता का पहला कदम। और हम इसी ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में हर साल 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। ये सफर आसान नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत थी, पाबंदियां थी, हर रोज खतरे से आंख मिलाना था। भारी आर्थिक तंगी और उच्च डाक दरों के कारण ये अखबार बहुत दिनों तक नहीं चल सका और 4 दिसंबर 1827 को इसका आखिरी अंक प्रकाशित हुआ। लेकिन जो बीज उदंत मारतंड ने बोया, वो पेड़ बनकर खड़ा हो गया। हिंदी पत्रकारिता को जैसे एक नई भाषा मिलती गई, एक नई धार मिलती गई और आजादी के बाद हिंदी पत्रकारिता और पकी और फैली। और फिर आया डिजिटल युग, जहां हर हाथ में स्क्रीन है और हर इंसान एक संभावित पत्रकार है। लेकिन आज सवाल ये है कि जब पत्रकारिता डिजिटल हो रही है, जब खबर रील बन रही है, तो इन 200 सालों की विरासत को आखिर आगे कौन ले जाएगा? युवा पत्रकार कैसे दें इस समय के सवालों का जवाब? इसी विषय पर आज हमारा संपादकीय लिखा है और स्वर दिया है वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हरेंद्र प्रताप सिंह ने। शीर्षक है समय के प्रश्न और युवा पत्रकारिता के उत्तर। तो सुनिए और सोचिए।
1: अगस्त 1947 के पहले जो हिंदी पत्रकारिता हुई, उसका मुख्य मकसद था देश को आजाद कराना और उस समय जो कुछ अंधविश्वास थे समाज में उसको दूर करना और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विकास पत्रकारिता को भी सहयोग करना। तो ये तीन मुख्य मकसद थे पराधीन भारत में। और जब देश आजाद हुआ तो जाहिर है कि एक नई शुरुआत थी, लोकतंत्र नया नया स्थापित हुआ, फिर हमारा संविधान सामने आया। तो हिंदी पत्रकारिता ने और भाषाई पत्रकारिता ने मुख्य रूप से देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। और मैं खास करके हिंदी पत्रकारिता में आजाद भारत में रेडियो का, आकाशवाणी का योगदान बहुत ज्यादा मानता हूं, क्योंकि खासकर जो हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति हुई, उसमें आकाशवाणी की बहुत बड़ी भूमिका रही। भारत की जो आजादी है उसमें पत्रकारिता का और पत्रकारों का तो बहुत बड़ा योगदान रहा ही, लेकिन उसमें भी विशेषकर जो युवा पत्रकार थे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। बल्कि आप शुरू से ही देखें, उदंत मारतंड हो या फिर दैनिक समाचार सुधा वर्षन, या फिर बाद में एक उर्दू का अखबार आया आपको प्याम आजादी, और कई भाषाई अखबार जैसे मराठी में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा शुरू किया, फिर बाद में महात्मा गांधी ने खुद अंग्रेजी में और गुजराती में, फिर बाद में हिंदी में पत्रकारिता की। तो उस पूरे दौर को यदि आप देखिए, यहाँ तक कि भगत सिंह तक ने भी जो है वो पत्रकारिता की, यशपाल ने पत्रकारिता की। पूरी आजादी की यदि यात्रा आप देखिए पत्रकारों की, तो उसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। बाल गंगाधर तिलक खुद 25-26 साल के थे जब उन्होंने अपना अखबार निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप निकला, तो उस समय वो मात्र 24 साल के थे। और भगत सिंह 23 साल की उम्र में 2-3 अखबारों के लिए लिखते थे और प्रताप के लिए तो वो नाम बदल के लिखते थे। तो इस तरह से जितने भी पत्रकार थे उसमें ज्यादातर यंग लोग ही रहे। और महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे और उन्होंने यंग इंडिया की शुरुआत की, नवजीवन की शुरुआत की, तो उन्होंने 30 से

0: 38 साल के युवाओं को ही अपनी संपादकीय टीम में रखा। मेरा यह मानना है कि समय चाहे जैसे भी बदला हो और आगे भी बदलता रहेगा, पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो वही रहते हैं। मूल्य है सत्य को सामने लाना, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, चाहे आप कलम से लिखिए, मोबाइल से लिखिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बीच में स्वतंत्र भारत में एक आंदोलन भी हुआ, वो कहलाता है छात्र आंदोलन, जिसको हम लोग जेपी मूवमेंट भी कहते हैं, 1974-75 का जो आंदोलन है। तो आप यदि देखिएगा तो उसमें भी युवा पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और स्वाधीन भारत में दो और खास किस्म की पत्रकारिता शुरू हुई, एक खोजी पत्रकारिता, जिसने कहीं न कहीं उन व्यवस्था पे भी जो है एक अंकुश लगाया जहां कुछ उसने देखा कि गलत हो रहा है। और दूसरी जो एक पत्रकारिता जो एक चरम रूप पे आई, वो है विकास पत्रकारिता। विकास से जो व्यक्ति छूट गया उसको सामने लाना और मानवाधिकार की बात करना, पर्यावरण की बात करना, पर्यावरण के हितों की बात करना, ये 20वीं सदी की पत्रकारिता की सबसे एक विकसित सोच थी। खबर को एक खबर के रूप के साथ साथ विचार के रूप में भी प्रस्तुत करना, जनसंचार का क्षेत्र, ये शुरू से युवाओं को आकर्षित करता रहा है, क्योंकि इसमें एक उनको कहीं ना कहीं ग्लैमर भी नजर आता है। मेरा यह मानना है कि पत्रकारिता आज की तारीख में भी एक लोक सेवा है। मुख्य मकसद वही है कि आपको कलम से या शब्दों से या अपने विचारों से आपको समाज की, देश की और मानवता की सेवा करनी है। पत्रकारिता चाहे 18वीं सदी की हो, 19वीं सदी की हो, 20वीं सदी की हो, 21वीं सदी की हो, पत्रकारिता आज भी एक बड़ा ही पवित्र प्रोफेशन है। मैं कहूंगा युवाओं को, आज भी युवाओं को अधिक से अधिक संख्या में इस क्षेत्र में आना चाहिए।
1: हरेंद्र प्रताप सिंह के विचारों ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि माध्यम बदलते हैं मगर जिम्मेदारी नहीं बदलती। और जब माध्यम की बात हो तो एक नाम जहन में हमेशा रहना चाहिए, आकाशवाणी। वो आवाज जो दशकों से घर घर तक पहुंचती रही, वो आवाज जो दूर दराज के गांवों में भी उम्मीद की किरण बनती रही। आकाशवाणी के 90 साल के ऐतिहासिक पड़ाव पर इस अंक में हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक, युवा साहित्य और संस्कृति कर्मी विशाल पांडे, जिन्होंने रेडियो को सिर्फ एक माध्यम के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक संस्था के रूप में देखा, समझा है और इसमें उनकी एक हिस्सेदारी भी रही है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि आकाशवाणी के 90 साल विरासत आज के युवाओं के लिए क्या मायने रखती है।
2: मेरे लिए आकाशवाणी केवल एक प्रसारण संस्था नहीं है बल्कि वह मेरे बचपन की ध्वनि है, मेरे संस्कारों की लय है और मेरी चेतना का एक स्थायी संगीत। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है, संचार के माध्यम बदल रहे हैं, आवाजें बदल रही हैं, तब भी मेरे भीतर कहीं एक रेडियो धीरे धीरे बजता रहता है। वही परिचित उद्घोष, वही शब्दों की गरिमा, वही ध्वनि का अनुशासन और वही आत्मीयता। शायद इसलिए मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ। टेलीविजन कब देखा था ये मुझे सचमुच याद नहीं। मेरा बचपन गोरखपुर में बीता, शुरुआती शिक्षा भी वहीं हुई। मेरी माँ शिक्षिका हैं, लेकिन मेरे लिए वे केवल शिक्षिका नहीं बल्कि साहित्य, भाषा और संस्कृति से भी मेरा पहला परिचय कराने वाली हैं। उनका आकाशवाणी गोरखपुर से गहरा संबंध है। वे वहाँ निशा निमंत्रण जैसे साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ी हैं। मैं अक्सर उनके साथ आकाशवाणी केंद्र भी जाया करता था। आज भी मुझे वह परिसर याद है, वहाँ का शांत वातावरण, स्टूडियो के बाहर लगी हुई लाल बत्ती, धीमी आवाज में होती बातचीत, स्क्रिप्ट के पन्नों की सरसराहट और प्रसारण शुरू होने से पहले का वह अद्भुत मौन। एक छोटे बच्चे के लिए वह संसार किसी जादुई लोक से कम नहीं था। आकाशवाणी गोरखपुर एक प्रतिष्ठित केंद्र रहा है, वहाँ अनेक बड़े साहित्यकारों, कलाकारों और संगीतज्ञों का आना जाना था। मुझे याद है जब कोई वरिष्ठ कवि या कलाकार स्टूडियो में आते तो वहाँ का वातावरण एकदम बदल जाता। शब्दों के प्रति आदर और कला के प्रति समर्पण मैंने वहीं देखा। शायद वही संस्कार बाद में मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन गए। बाल सभा के कई कार्यक्रमों में मुझे अवसर भी मिला। रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनना उस समय बहुत रोमांचक था। रिकॉर्डिंग के दौरान माइक के सामने बैठ

रटना, सही उच्चारण का ध्यान रखना, शब्दों को स्पष्ट बोलना, ये सब मेरे लिए गतिविधियां ही नहीं थी बल्कि भाषा के प्रति एक अनुशासन का प्रशिक्षण भी था। आज जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि आकाशवाणी ने मुझे बोलना ही नहीं सिखाया बल्कि सुनना भी सिखाया। और सुनना वास्तव में सबसे बड़ी कला है। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रोता की कल्पना को जीवित रखता है, आपको अपने भीतर दृश्य रचने की स्वतंत्रता देता है। रेडियो सुनते हुए हम केवल श्रोता नहीं रहते, हम सह रचनाकार बन जाते हैं। धीरे धीरे समय बदला, मैं उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय आया। एक नया शहर, नया वातावरण, नए संघर्ष, लेकिन इस परिवर्तन के बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने

0: बीच भी एक चीज स्थिर रही, आकाशवाणी से मेरा संबंध। दिल्ली आने के बाद मुझे युववाणी का हिस्सा बनने का अवसर मिला। ये मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अनुभव था। युववाणी केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं की अभिव्यक्ति का मंच था। वहाँ विचार थे, ऊर्जा थी, भाषा का उत्साह था और समाज को देखने की एक नई दृष्टि। बाद में मुझे हिंदी वार्ता और संस्कृत वार्ता से भी जुड़ने का अवसर मिला। ये मेरे लिए प्रसारण ही नहीं बल्कि भाषा और विचार की साधना भी रही। आज सोशल मीडिया के समय में सूचनाएं बहुत हैं, लेकिन विश्वसनीयता कम होती जा रही है। ऐसे समय में आकाशवाणी का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ शब्दों के पीछे उत्तरदायित्व है। कई बार मुझे लगता है कि रेडियो सुनना दरअसल अपने भीतर लौटना है, क्योंकि रेडियो हमें थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से बचाकर शब्दों और ध्वनियों की एक शांत दुनिया में ले जाता है। और शायद यही कारण है कि आकाशवाणी 90 वर्षों बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे इस परंपरा से जुड़ने का अवसर मिला। मैं अपनी माँ के प्रति भी कृतज्ञ हूँ, जिनके माध्यम से मेरा परिचय इस संसार से हुआ। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को मेरा विनम्र प्रणाम है।
1: तो जैसा अभी विशाल पांडे ने कहा, आकाशवाणी ने हमेशा ही नई पीढ़ी को अभिव्यक्ति का मंच दिया है, और आज की युवा पीढ़ी अभिव्यक्ति के नए नए रास्ते खोज रही है। कोई कैमरा उठाता है, कोई माइक थामता है, और कोई निकल पड़ता है अनजाने रास्तों पर, बस एक बैग, एक कैमरा और एक जज्बे के साथ। सफर को कंटेंट बनाना और कंटेंट को करियर बनाना, ये कमाल कर रहे हैं आज के ट्रेवल ब्लॉगर्स। जब घर की चार दीवारी को छोड़कर पहाड़, समंदर और अनजान शहर ही दफ्तर बन जाएं, तो जिंदगी कुछ और ही रंग ले लेती है। आज हम मिलने वाले हैं दो ऐसे ही युवाओं से, श्वेता राठौर और सौरभ परमार, जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं। इनके लिए रास्ता ही मंजिल है और हर मोड़ पर एक नई कहानी है। आइए सुनते हैं उनसे उनके रिस्क, उनकी रील्स और उनके रास्तों की बात, जो इन्होंने खुद चुने हैं। रास्ते, रिस्क और रील्स। श्वेता राठौर और सौरभ परमार से बातचीत की मैंने, यानी नवोदिता और प्रांजल ने।
2: आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जब हम एक AI और एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, यूथ के साथ कनेक्शन बहुत जरूरी है। आपका जो एक ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत क्वर्की स्पॉन्टेनियस कंटेंट से भरा हुआ है। आपके सोलो ट्रैवलिंग जर्नी में प्लानिंग से लेके उसका एग्जीक्यूशन कितना इम्पोर्टेंट है और आपका उसमें क्या प्रोसेस है?
3: जब हम ट्रैवलिंग शुरू करते हैं तो बिल्कुल अनप्लान करते हैं, हमारी कोई आइटिनरी नहीं होती, क्योंकि हमारे हिसाब से ट्रैवलिंग वैसे ही होती है। जब आप एक्सप्लोर करने जाते हो किसी जगह को और आप मन में बिठा के रखे हो, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो खत्म है वहां पे एक्सप्लोरेशन, क्योंकि आप टारगेटेड ट्रैवल कर रहे हो। तो हम जब भी प्लान करते हैं तो हम बस जगह को देखते हैं, ये हमें पसंद आ रही है जगह, चलो चलते हैं। कैसे जाना है वो उसी दिन डिसाइड होता है। आपको बस से जाना है, आपको फ्लाइट से जाना है, आपको ई रिक्शा लेके जाना है, इट्स अप टू यू। और आइटिनरी की बात तभी आई जब हम फॉरेन ट्रैवल करना शुरू किए, क्योंकि वहां पे नेसेसिटी बन जाती है। आपको दिखाना है वीजा ऑफिसर को कि आइटिनरी एक सर्टेन वे में होनी चाहिए। वहां पे भी हम कोशिश करते हैं कि जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो सके हमारे प्लान में हम उतना रखें। और ट्रैवलिंग करते समय आपको बहुत ही स्मार्टली चलना होता है, बेवजह रिस्क नहीं ले सकते हैं। जैसे यूथ जो है या सोलो ट्रैवलिंग वाली जब बात आती है तो मोस्टली ऐसी आती है कि इज इट सेफ, कैसे हम जाएं, कैसे बजट हैंडल करें। मान लीजिए आपका बजट 10,000 है, आप प्लान कीजिए आसपास की जगहों का, हो सकता है कि आपकी जो ट्रैवलिंग हो वो 1,000-2,000 में ही हो जाए। तो अगर आपको ट्रैवलिंग शुरू करनी है तो सबसे पहले तो आसपास की जगहों को घूमना शुरू कीजिए, देखिए कि आपको कितना मजा आ रहा है और क्या एक्सप्लोर करने में मजा आ रहा है। तो उससे आप ना लॉन्जेविटी ला सकते हैं। अगर आप आगे जाएंगे ना बड़े स्टेट्स में, किसी भी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो अनएक्सप्लोर्ड है और आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको हैंडल करने का तरीका आता होगा।
4: सौरभ, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितनी आसानी से श्वेता ने कहा कि हम एकदम उसी दिन प्लान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका पर्पस तो ये है कि उस चीज को आपको कवर करना है और आप उसको किसी भी तरीके से आपको देखने सुनने वालों के सामने रखना है, क्या वाकई ये इतना स्पॉन्टेनियस होता है या फिर?
2: मुझे लगता है श्वेता ने झूठ बोला है, इससे भी ज्यादा स्पॉन्टेनियस है।
4: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि हम लोग जो पूरा का पूरा कंटेंट है स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। हम लोगों ने जब इनिशियली ट्रेवल स्टार्ट किया था तो हम सिर्फ ये नहीं करना चाहते थे कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ, ये करना चाह रही हूँ। हम लोग सच

0: में एक बहुत ही ऐसी जगह पे फिक्स थे दोनों के दोनों अपने लाइफ में कि हम वहां से निकल नहीं पा रहे थे. शी वॉज वर्किंग इन कॉर्पोरेट ऑफिस और मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था. जब इसने जॉब छोड़ी श्वेता ने, तो हमने सोचा कि हम इसको ना एक आइडिया बेस लेके चलते हैं, कॉन्टिन्यूटी रखते हैं इसमें. तो इनिशियली ऐसा हुआ कि जब हमने स्टार्ट किया तो हमने एक स्टोरी जनरेट की. स्टोरी मतलब वो रियल लाइफ से ही जनरेटेड थी कि श्वेता ने अपनी जॉब छोड़ी है और जॉब छोड़ के उसने ट्रेवलिंग करना शुरू किया है. बट ट्रेवलिंग के लिए आपको पैसे चाहिए और स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ ऐसे 10-12 हजार रुपए थे दोनों के पास मिला के. ये हमारी सेविंग्स थी. तो हम लोगों ने एक हफ्ता ट्रेवल किया. एक हफ्ता जब हमने ट्रेवल किया तो हम लोगों ने सोचा कि मैं पूरा कंटेंट संभालूंगा और तुम पूरा फाइनेंस संभालो. तो ये हमारी स्टोरी चली. तो क्या हुआ कि विद इन 3 मंथ्स हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और सिर्फ 10 हजार से हमने शुरू किया था उस टाइम.
1: आपके जवाब में एक्चुअली 2-3 ऐसे पॉइंट आए जहां पर मेरे अंदर कुछ क्यूरियोसिटी है. एक तो ये कि जब आपने बोला कि श्वेता ने अपनी नौकरी छोड़ी, आई वुड होप कि आपके अंदर भी वो एक सेंस ऑफ नर्वसनेस, वो इनसिक्योरिटीज होंगी कि छोड़ तो दी, आगे कैसे होगा. और जो आपने एक जिक्र किया कि आपके पास 10 हजार फॉलोअर्स थे, वो 10 हजार भी कैसे आए. और दूसरा ये कि आपने ये कहा कि जो चीजें आप कह रहे हैं, आप स्टोरी सोचते हैं, हम लोग तुरंत इसको करना चाहते हैं. कभी कोई आपके आसपास कोई सोशल ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा इम्पैक्ट करी है, पॉलिटिकल है, या जानबूझ के आप ऐसे कंटेंट से दूर रहना चाहते हैं जहां पे किसी भी तरह के डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश हो.
0: हम लोग का जो मेन कॉन्सेप्ट है और जो कंटेंट का मेन कोर है वो ये है कि हम लोगों को ना दुखी नहीं करना चाहते. देयर इज अ लॉट ऑफ सैडनेस गोइंग ऑन और चीजें होती रहती हैं आसपास. अगर हम किसी भी चीज को टच करें तो आप कभी भी सही या गलत नहीं हो सकते पूरी तरह से. देखिए, हम थोड़ा सा ना हैप्पीनेस स्प्रेड करना चाहते हैं अपने आसपास, तो इसलिए हम उन टॉपिक से थोड़ा सा दूर रहते हैं. हमारा चैनल ऐसा नहीं था कि यहाँ सुपर पॉपुलर है और लोग वीडियोस देख रहे हैं. वो ये एक दो वीडियो पे व्यूज आ गए थे, इस वजह से हमारे फॉलोअर्स हो गए थे. हमने बेसिकली ये सोचा कि हम ऐसे वन ऑफ करके नहीं चल सकते हैं, हमें थोड़ा सा कमिट करना पड़ेगा क्योंकि हमें करना था ये.
1: श्वेता, एक सवाल और बनता है आपसे बीच में कि आप एक जॉब में थी, तो उस जॉब को छोड़ते वक्त कुछ तो आपने पैटर्न देखा होगा कि कुछ तो बेहतर कर सकते हैं.
2: सबसे बढ़िया बात मेरे अंदर मुझे यही लगती है कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ. जैसे कि आप बंजिंग जंपिंग करने जा रहे हो तो आप साथ में ये भी रखो कि आप बैकआउट भी बैकआउट नहीं करना मुझे. ये मेरे दिमाग में लेकिन बात कौनती रहती थी कि तू सर्वाइव कैसे करेगी, घर से पैसे नहीं लेने, सबको इंडिपेंडेंट तो हो गए अब. तब मैंने शुरू की फ्रीलांसिंग. पहले शुरू किया अपने आसपास के लोगों से. फ्रीलांसिंग के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी और कोई आसपास कर भी नहीं रहा होता. तो फिर मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट भी है मैडम. जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई. फ्रीलांसर्स की ना अलग दुनिया है.
1: कुछ जो अभी यूथ अभी हमारे इस प्रोग्राम से सुन रहे हैं तो उनके लिए आप क्या बता सकती हैं, जो कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहां पे उस हिसाब से मैं अपनी प्रोफाइल को चेंज करना पड़ा. कैन यू गिव सम एग्जांपल्स?
2: हाँ, जैसे एक वेबसाइट है फ्रीलांसर, अपवर्क है, एक फाइबर है. तो ये ना पॉपुलर वेबसाइट्स है.
3: तो जब हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कॉन्टेंट देखते हैं तो हर एक कॉन्टेंट का एक यूएसपी होता है. जब हम आपका कॉन्टेंट देखते हैं तो उसका एक यूएसपी है कि यूनिक वॉइस ओवर्स होते हैं. संस्कृत का यूज करते हैं, कभी शुद्ध हिंदी का यूज करते हैं. कुछ वर्ड्स हैं जैसे आप रेलवे को बहुत अलग प्रोनाउंस करते हैं,
2: लोपर गामिनी.
3: और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या है?
2: इंस्पिरेशन एक तो देखो, हिंदी ना बहुत सुंदर है. मतलब हिंदी बहुत ही प्यारी लगती है. हमने स्कूल में वैसे सीखा नहीं है जिस तरह से हमें सीखना चाहिए था. तो हम कोशिश करते हैं कि हम अपने माध्यम से हम खुद भी सीखें. हम हर बार जब स्टोरी लिख रहे हैं, जैसे ये स्टोरी लिखने बैठा है, जैसे अभी मैं बोलूंगी ना तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोल पाऊंगी. मुझे कुछ वर्ड्स, जैसे इंग्लिश वर्ड्स जो कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश होती है, तो उसमें जैसे अभी बोला मैंने तो नहीं आती. तो हम ना कोशिश करते हैं कि इसकी हिंदी लेके आते हैं क्योंकि लगता है हमें बेहतरीन हिंदी. और हमें ऐसा लगता है कि लोगों को ना बहुत मजा आता है हिंदी सुनने में, जैसे हमें मजा आता है. बाकी आधा हिस्सा इसका भी है इसमें.
0: मैं मुझे लिखने का बहुत पहले से शौक था. हमने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, भारत माता टेम्पल है. जब हम वहां पे गए तो मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ पे इतने सारे गॉड्स हैं, गॉडेसेस हैं, हमारा पहला टेम्पल विजिट था वो मेजर, तो हम उनको ऐसे साधारण भाषा में बोल नहीं सकते हैं. हमें थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल करना पड़ा. तो जब हमने किया तो हमें खुद अच्छा लगा. और दूसरा, हम एक तरह से हिंदी को थोड़ा सा ना प्रमोट भी करना चाहते थे कि हम ना मुहावरों का बहुत इस्तेमाल करते हैं.
3: आपने एक इंडिया सीरीज शुरू की थी जिसमें आपने 500 का चैलेंज लिया था, आपने पूरा इंडिया घूमा था. तो अगर उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, और लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक हर राज्य में अलग कल्चर है, अलग भाषा है, अलग खाना है, तो कुछ एक्सपीरियंस और कुछ ऐसी चीज जो जिससे आप एनकाउंटर हुई हो.
2: एक तो भारत कितना भी घूम लो खत्म नहीं होने का है. बहुत जगह कवर की, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे स्टेट्स में गए. लेकिन अब इस तक स्टिल ऐसे लगता है हमें जब कोई वीडियो आती है कि अरे यार यहाँ तो गए ही नहीं, ये तो एक्सप्लोर ही नहीं किया. और दूसरी बात यह है कि बहुत कुछ जानने को मिला. और बताए ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहां पे हमें लगा कि जब आप घूमना शुरू करते हो तो आपको

0: रियलाइज होता है कि ये हमारा जो भारत है ना सही में बहुत डाइवर्स है.
1: मतलब जो डाइवर्सिटी हम किताबों में पढ़ते हैं उसका जब वास्तविक रूप हमें देखने को मिलता है तो फिर वो डेफिनेटली वो हमें
0: बहुत ही मजेदार होता है. हाँ,
1: से एक क्रिएटर के तौर पर जो छोटी मोटी टेक्निकलिटीज होती है लाइक ट्राईपॉड है या छोटे मोटे और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, तो अगर डिफिकल्ट टेरेन में गए मान लीजिए आप, तो वो हैंडल करना कितना मुश्किल है, चैलेंजिंग होता है आपके लिए या इजी है?
2: इसमें जो टेक्निकल आप एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नए क्रिएटर्स के साथ आती है वो ना ओवरथिंक करते हैं चीजों को. हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था हमारे पास एक फोन था उसमें 4K वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी और हमारे चैनल 3 महीने में जो हमारा 8 मिलियन हुआ वो सिर्फ उस फोन से हुआ. उसके आप वीडियो क्वालिटी देख लीजिए, एकदम बेकार वीडियो क्वालिटी. मेन मकसद ये होता है कि जो स्टोरी है ना एक पूरा पैकेज आप कैसा दे रहे हैं, अब जो बताना चाह रहे हो पहुंच पा रहा है लोगों तक. आपको सुंदर नहीं दिखाना है, हर चीज सुंदर नहीं हो सकती है या फिर हर चीज आसान नहीं हो सकती है. तो जो हमारे पास है सबसे पहले में उससे ही स्टार्ट करना चाहिए, वो इस्तेमाल करना चाहिए. पहले हमारे पास कैमरा था, फिर हमने GoPro भी लिया, फिर हमने अलग अलग कैमराज खरीदे, लेकिन फिर हमें बाद में पता चला कि ये सब ना बस हिंड्रेंस है, ये सब हमारी उसमें काम में बाधा डाल रहा है. अगर मान लीजिए हम ट्रैक कर रहे हैं और कोई लाइक 5 घंटे का ट्रैक है और मैं बैग पैक करके बैग में सामान लेके चल रहा हूँ तो मेरे लिए आसान नहीं है. तो हमने ये रियलाइज किया कि एक अच्छा फोन लीजिए आप और उसी फोन से आप जितना हो सके उतना कीजिए.
1: और छोटे मोटे जो आपको उसकी एक्सेसरीज मतलब जैसे ट्राइपॉड,
2: यस यस, जितना छोटा हो सके मतलब
0: कॉम्पैक्ट रखो.
2: जो गोल है, गोल ये नहीं है कि दूसरों के लिए आसान बनाना है, गोल ये है कि मुझे अपने लिए काम आसान बनाना है.
1: लास्ट सवाल एक्चुअली मेरा आपसे यही होने वाला था कि क्या लगता है फॉलोअर्स और सक्सेस?
0: सक्सेस मेरे दिमाग में ये रहता है कि क्या मैं जो बना रही हूँ उससे मैं खुश हूँ, इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉलोअर्स. हमें ऐसा लगता है जो हमने इतने 4 सालों में एनालाइज किया है कि हमारी रीच बहुत ज्यादा है. हम जब लोगों से बात करते हैं बहुत मजेदार लगता है. ये है सक्सेस हमारे लिए कि हमारी बात जो है वो उस तरह तक पहुंची कि लोग मजे ले रहे हैं उसके और लोग उसको बहुत दिन तक याद रख रहे हैं. आपने जो वो वाली वीडियो बनाई थी ना उसमें जो आइसक्रीम खाई थी और बहुत मजा आया था, वो जो बच्चे, तो वो है सक्सेस हमारे लिए. फॉलोअर्स हमारे लगभग 700K है इंस्टाग्राम पे, जैसे 5 मिलियन उस पर यूट्यूब पे है, तो वो हमारे लिए नंबर है. बस जब तक हमें ऐसा नहीं लगता कि जो हम दे रहे हैं वो 100% हमारा है, हमको मजा आता है, हम उसमें कंटेंट बनाते हैं.
2: आपके पास जो है जैसा है वहां से स्टार्ट करो. पुट योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, डोंट एक्सपेक्ट एंड इट विल वर्क आउट अगर आपने इनफ मेहनत करी है तो.
3: श्वेता और सौरभ की बातें सुनकर एक बात साफ हो जाती है कि आज के युवा के लिए करियर का मतलब बदल चुका है. वो अपने लिए नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए और उससे अपने रोजगार के लिए. लेकिन हर युवा का सपना और हर युवा की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती. कोई घर से दूर पहाड़ों पर कंटेंट बना सकता है, तो कोई घर की जिम्मेदारियों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी करने का सपना देख रहा होता है, और पढ़ाई भी ऐसी जिससे भविष्य में रोजगार की कुछ उम्मीद हो. और ऐसे में एक नाम जहन में आता है भरोसे का, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू, जहां शिक्षा की कोई सीमा नहीं, ना उम्र की, ना दूरी की, ना परिस्थिति की. आज हमारे साथ हैं इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह, जिनसे हम जानेंगे कि रोजगार परक शिक्षा के क्षेत्र में इग्नू किस तरह नए आयाम छू रहा है और क्या युवाओं के लिए वाकई यहाँ आकाश जितनी संभावनाएं हैं. स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में.
4: जी धन्यवाद.
3: सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, हालांकि अब उस नीति को आए हुए भी समय हो गया है, और जो ओपन लर्निंग या दूरस्थ शिक्षा है, वर्तमान से इसके भविष्य की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं?
4: देखिए, अगर हम बात करें दूरस्थ शिक्षा की तो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है. ये एक ऐसी शिक्षा पद्धति है कि इसमें विद्यार्थी को केंद्र में रख के सारी मेथोडोलॉजी डिजाइन की जाती है. मतलब इसमें हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यार्थी को कुछ हम ऐसी सहूलियतें दें कि वो अन्य काम अगर कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ, मान लीजिए स्वरोजगार कर रहा है या किसी रोजगार में है, कोई गृहिणी है या कोई किसान है, तो उनको सहूलियतें मिलें कि वो अपने पेस के अनुरूप अपनी पढ़ाई कर सकें. मुझे लगता है कि ये समय की मांग है और यही प्रयास सरकार का भी है.
3: तो आपको क्या लगता है कि अभी
1: जो जन सामान्य में जो जागरूकता है इस तरह की पढ़ाई को लेकर, इस तरह के कोर्सेज को लेकर, पाठ्यक्रम को लेकर, वो किस स्तर पर है और उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
4: जागरूकता का स्तर तो काफी अच्छा है, खासतौर से कोविड के बाद जब लोगों ने देखा कि सारे वेज एंड मीन्स बंद हो गए हैं लर्निंग,

0: तो वहां पर दूरस्थ शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प के रूप में उभर के आया और अब ये युवाओं की एक तरह से चॉइस बन चुका है, खास तौर से ऐसे युवा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको एक उच्च कोटि की अध्ययन सामग्री मिलती है जिसको अगर वो पढ़ते हैं तो उनके कंपटीशन में सेलेक्ट होने के संभावनाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं। प्लस वो अध्ययन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जैसे उन्हें अगर मान लीजिए कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए कहीं पर कोई काउंसलिंग लेनी है या कॉलेजेस में जाना है या संस्थानों में जाना है तो वो उसको भी कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। प्लस जो दूरस्थ शिक्षा के कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद से जो डिजाइन किए जा रहे हैं उस पे ट्रेडिशनल कोर्सेज में भी स्किलिंग का कंपोनेंट है। जी, तो अगर आप सामान्य बीए बीकॉम बीएससी भी कर रहे हैं तो उसमें स्किलिंग के ऐसे कंपोनेंट हैं कि अगर आप जो सरकारी सेवा है उसकी ओर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाना चाहते हैं तब भी इन कोर्सेज को अगर आप करते हैं तो रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी रहती है। ऐसे ही जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं वो भी अगर स्किलिंग करना चाहते हैं तो उनके पास भी अवसर है। तो यहाँ पर सरकार ये प्रयास कर रही है कि हमारा जो युवा हो वो स्किल्ड हो और एजुकेटेड हो।
1: जिनकी पढ़ाई में कुछ ब्रेक लग गया किसी भी
0: बिल्कुल
1: कारण से,
0: जी,
1: वापस अगर एक ब्रेक के बाद उन्हें पढ़ाई शुरू करनी है तो किस तरह इस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं अगर इग्नू की बात करें
0: जी,
1: तो
0: देखिए ब्रेक के बाद अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इग्नू तो इसीलिए बना हुआ है, कोई माइग्रेशन कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। आपके मन में इच्छा जागी कि हमारी पढ़ाई छूट चुकी है या हमें अपने नॉलेज को इन्हांस करना है, आप विश्वविद्यालय के किसी पर्टिकुलर पाठ्यक्रम में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं, मिनिमम एज लिमिट है 10+2 आपने किया हो, ज्यादातर कोर्सेज में एलिजिबिलिटी है, तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इग्नू सपोर्ट करता है। एडमिशन की जो मेथोडोलॉजी है वो ऑनलाइन है, सिंपल इग्नू की वेबसाइट पे जाएंगे, एडमिशन का जो लिंक है उस पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करेंगे, फीस पे करेंगे और अगर वो सारी चीजें सही हैं तो उनको एडमिशन ग्रांट कर दिया जाएगा। देखिए हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट्स बट वी गेट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप आवर टैलेंट, यानी हम सभी के टैलेंट बराबर नहीं होते मगर हमें अवसर मिलता है अपने टैलेंट को बढ़ाने का, अपने स्किल्स को अपग्रेड करने का, अपने नॉलेज को अपडेट करने का। तो ये सारे ऑप्शंस इग्नू जनमानस के द्वार पर उनको उपलब्ध कराता है। अब लोगों को करना क्या है कि एक कदम आगे बढ़ाना है, इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रहण करना है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आज की इस पत्रिका में हमने की बेहद खास बातें। हरेंद्र प्रताप सिंह से हमने जाना कि पत्रकारिता की जिम्मेदारी कभी पुरानी नहीं पड़ती और युवाओं को तो इसमें एक खास भूमिका निभानी है। विशाल पांडे ने बताया कि आकाशवाणी की आवाज और 9 दशकों के इतिहास में युवाओं की भी एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। हमने सुना श्वेता और सौरभ से कि हिम्मत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और फिर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह से हमने जाना कि शिक्षा के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, आपको तय करना है कि किस शिक्षा के जरिए आपको कौन सा रोजगार चुनना है। तो फिर मिलेंगे युवा भारती के अगले अंक में। पत्रिका में हमारे सहयोगी रहे नेत्रा और प्रांजल के साथ। नवोदिता को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मुकाशी का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मुकाशी।
0: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार विदुषी स्मिता मुकाशी पंडित अजय पोहनकर जैसे दिग्गज गुरुओं के सानिध्य में तराशा गया स्वर है।
1: अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन विदुषी स्मिता मुकाशी हैज डेडिकेटेड हरसेल्फ टू द परस्यूट ऑफ नोट्स एंड थरोली एब्जॉर्ब द रिच ट्रेडिशन ऑफ क्लासिकल सिंगिंग। हर वॉइस हैज बीन ब्यूटिफुली नर्चर्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ लेजेंडरी गुरुज इंक्लूडिंग पंडित अजय पोहनकर।
0: तानसेन और अमीर खान जैसे प्रतिष्ठित समारोह की आप शोभा बढ़ा

0: चुकी हैं। प्रयाग महाकुंभ से लेकर लंदन के नेहरू सेंटर तक आपने अपनी गायकी की छाप छोड़ी है।
1: शी हैज ग्रेस्ड प्रेस्टिजियस म्यूजिक फेस्टिवल्स लाइक द तानसेन समारोह एंड उस्ताद आमिर खान समारोह, लिविंग एन इंडेलिबल मार्क विद हर सिंगिंग फ्रॉम द प्रयाग महाकुंभ टू द नेहरू सेंटर इन लंदन।
0: आपको कलाश्री और मोहम्मद रफी जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। आपकी प्रस्तुतियां न केवल तकनीकी रूप से सुदृढ़ है बल्कि उनमें भारतीय संगीत की गहरी रूहानियत भी झलकती है।
1: ऑनर्ड विद सेवरल एकोलेट्स इंक्लूडिंग द कलाश्री एंड मोहम्मद रफी अवार्ड्स, हर परफॉर्मेंसेस आर नॉट ओनली टेक्निकली फ्लॉलेस बट ऑल्सो डीपली रिफ्लेक्ट द सोल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक।
0: आज आप सर्वप्रथम प्रस्तुत कर रही हैं राग मारू बिहाग। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है मान तज देहो प्यारे। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना की बोल है मानो न जियरा मोरा, और एक ताल में निबद्ध द्रुत रचना की बोल है मानो ना ही तुमरी बात। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं गांधार राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: टू बिगिन हर रिसाइटल टुडे शी प्रेजेंट्स राग मारू बिहाग। द फर्स्ट इज विलंबित कंपोजिशन सेट टू एक ताल विद द लिरिक्स मान तज देहो प्यारे। दिस इज फॉलोड बाय अ मध्य लय कंपोजिशन सेट टू तीन ताल विद द लिरिक्स मानो ना जियरा मोरा। शी कंक्लूड्स दिस राग with a drut composition set to ektal with the lyrics manu nahi tumri baat. Accompanying her on the tabla is Gandhar Rajhans and on the harmonium is Pramod Borgaonkar.

0: ये था विदुषी स्मिता मोकाशी का गायन राग मारू बिहाग। स्मिता जी अब प्रस्तुत करने जा रही है राग रागेश्री। त्रिताल मध्यलय में निबद्ध रचना की बोल है साजन बिन सुनी एरी आली और द्रुत एकताल में निबद्ध बंदिश के बोल है राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।
1: ट्रांजिशन एंड राग रागेश्री, दैट वॉज विदुषी स्मिता मोकाशी रेंडरिंग राग मारू बिहाग। स्मिता जी विल नाउ प्रेजेंट राग रागेश्री। द फर्स्ट इज मध्य लय कंपोजिशन सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स साजन बिन सुनी एरी आली। दिस विल बी फॉलोड बाय अ द्रुत बंदिश सेट टू एकताल विद द लिरिक्स राग संग रागिनी मिल मंगल गाई।

0: विदुषी स्मिता मुकाशी द्वारा प्रस्तुत ये था राग रागेश्री। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे गांधार राज हंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर।
1: यू आर लिस्निंग टू राग रागेश्री प्रेजेंटेड बाय विदुषी स्मिता मुकाशी। अकंपनिंग हर ऑन द तबला वॉज गांधार राज हंस एंड ऑन हारमोनियम वॉज प्रमोद बोरगांवकर।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज ऑल इंडिया नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक कम्स टू एन एंड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की बैठक में पार्टी विधायकों ने उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना। इस संबंध में विधायकों ने सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें

0: अपनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जाँच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवाददात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करने में सक्षम है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित करेगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी ऑर्सिलर मित्तल निपॉन स्टील इंडिया की रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। ब्रिस्टल में दूसरे महिला T20 क्रिकेट मैच में मेजबान इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने भारत को 169 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में भारतीय टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।